कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी

FM बैंड 101.8 MHz पर ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आज रविवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि तदनुसार 31 मई सन 2026 सुबह के 10:53 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है। सुबह के 10:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे मन की बात। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
2: बोई बोले राम राम।
1: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
4: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए।
8: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
7: करेक्ट।
8: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
9: RBI कहता है
10: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
11: पर्सनल लोन ऑफर
12: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
11: फ्री ट्रिप टू दुबई
12: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
13: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
12: तो क्या करूं?
13: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
12: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
13: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
14: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
15: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन

0: की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी, उनका जो

0: सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई भी स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर भैया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं।

ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी
एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों,
जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ

एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवंत देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी, उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के

0: लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राँचीनगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रिय मानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देववीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वान् अपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शतमीटरमितधावनस्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शतमीटरमितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शतमीटरमिते धावनक्रमे राष्ट्रियमानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्रप्रदर्शनं कृतं तौ स्तः गुरिन्दरवीरसिंहः, अनिमेषकुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री, अनिमेषवर्य नमस्कारः। गुरिन्दरवीरः भवतेऽपि नमस्कारः। सत्श्री अकाल च। अनिमेष गुरिन्दरवीरौ नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री, साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति। भवद्युगलमपि विशेष प्रदर्शनमकरोत्। वयं सङ्गीते तु युगलप्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेऽपि अधुना युगलप्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमम् एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत् समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति। अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतुः। अहमिच्छामि मन की बात इत्यस्य श्रोतारः अपि एतस्मिन् विषये भवतोश्च विषये जानीयुः। भवद्भ्यां यः पराक्रमः कृतः तं विषयमभिजानीयुः। अनिमेषः, नमस्ते महोदय। मम नाम अनिमेष कुजूरः। अहं 200 मीटर 400 मीटर इत्यनयोः राष्ट्रीय कीर्तिमानाङ्कन धर्ता अस्मि। अथ च महोदय, अहं मूलतः छत्तीसगढ़तः अस्मि। अधुना च अहम् ओडिशा पक्षतः क्रीडामि। विगतवर्षे अहम् एशियन अथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स् इत्येताभ्यां पदकानि समर्जितवान्। अथ अहम् एथलेटिक्स् इत्येतां क्रीडाम् एकविंशत्यधिकविंशतिशततमे वर्षे समारब्धवान्, यदा अहं विद्यालयीयम् अध्ययनं पूर्णम्

नन्हे जैसलमेर कार्यक्रम सुन रहे मेरे सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों को मैं आपकी रेडियो दीदी ललिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ हैप्पी संडे। तो दोस्तों, आज का ये हमारा खास प्रोग्राम आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और आपके दिलों में ढेर सारा जोश भरने के लिए आया है। आज मैं एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनके पास कोई उड़ने वाला कैप या स्पाइडर वेब तो नहीं था, लेकिन उनके दिमाग की ताकत और दिल की अच्छाई इतनी बड़ी थी कि उन्होंने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सबके चहेते युवाओं और बच्चों के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का सफर बहुत मजेदार होने वाला है। नन्हे दोस्तों, आपके आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम जो था वो नरेन था। उनको नरेंद्र नाथ दत्त भी कहते थे। और हाँ, जैसे आप सब थोड़ों से या थोड़ों से ज्यादा शरारती हो ना, वैसे ही हमारे नरेन भी बचपन से बहुत शरारती वाले थे। इतने नटखट थे कि उनकी मम्मी हमेशा कहती थी, मैंने भगवान शिव से एक सीधा साधा बेटा मांगा था, उन्होंने तो मुझे एक भूत दे दिया जो हर वक्त उधम मचाता रहता है। तो चलो, नरेन के बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। नरेन को अपने दोस्तों के साथ पेड़ों पर लटकना और बंदरों की तरह कूदना बहुत पसंद था। उनके घर के पास एक चंपक का पेड़ था जिस पर नरेन रोज चढ़ते थे। एक दिन वहां एक बुजुर्ग दादी जी ने सोचा कि यहाँ ये बच्चा गिर जाएगा, इसे थोड़ा सा मैं डरा दूं तो ये रुक जाएगा। उन्होंने नरेन से कहा, बेटा इस पेड़ पर मत चढ़ो, इस पर ब्रह्मदेत यानी कि भूत रहता है, जो भी इस पर चढ़ता है वो उसकी गर्दन को मरोड़ देता है। नरेन चुपचाप उन्होंने दादाजी की बात सुन चुपचाप बात सुनी और दादाजी वहां से चले गए। नरेन फिर पेड़ पर चढ़ने लगे। उनके दोस्त डर गए और बोलने लगे कि नरेन पेड़ पर मत चढ़ो, भूत आ जाएगा। जानते हो नरेन ने हंसकर क्या कहा? नरेन बोले, अरे बुद्धू, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन कब की टूट चुकी होती। किसी की बात पर सिर्फ इसलिए भरोसा मत करो क्योंकि वो कोई बड़ा व्यक्ति कह रहा है, खुद अपनी बुद्धि लगाओ और सच का पता लगाओ। तो देखा, हमारे नरेन बचपन से ही एकदम निडर थे और स्मार्ट थे, बिल्कुल आप ही की तरह। तो नन्हे दोस्तों, नरेन सिर्फ शरारती ही नहीं थे, वो पढ़ाई खेलकूद इसमें भी नंबर वन थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सुपर पावर थी और वो सुपर पावर थी एकाग्रता यानी कि फोकस। एक बार नरेंद्र अपने घर के पास एक मैदान में बैठे थे। वहां एक बड़े आदमी बड़ी शादी की बारात जो है वहां से गुजरी। बारात में बैंड बाजा बज रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग थिरक रहे थे, नाच गा रहे थे, खूब शोर कर रहे थे और बारात आगे निकल गई। तभी क्या हुआ कि एक आदमी जो बारात से पीछे छूट गया नरेंद्र के पास आया और उन्होंने पूछा कि ए बच्चे, यहाँ से कोई बारात गुजरी है क्या? नरेंद्र ने हैरान होकर कहा, बारात? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो यहाँ किसी बारात की आवाज तो सुनी ही नहीं। सोचो दोस्तों, इतनी बड़ी बारात निकल गई और नरेंद्र को पता भी नहीं चला। जानते हो क्यों? क्योंकि उस समय नरेंद्र एक किताब पढ़ने में इतने खोए हुए थे कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ उस किताब में था। इसी को कहते हैं सच्ची एकाग्रता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप पढ़ाई करो तो ऐसे करो कि आपके आसपास अगर कार्टून चल रहा हो या कोई खेल खेल रहा हो तो आपका ध्यान सिर्फ आपकी पढ़ाई पर हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप भी एग्जाम में सुपर हीरो की तरह चमकोगे। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नरेंद्र बड़े हुए, उन्होंने बहुत ज्ञान हासिल किया और वो बन गए स्वामी विवेकानंद। साल 1893 में, आज से बहुत साल पहले, अमेरिका के शिकागो शहर में एक बड़ी सभा हुई। वहां दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान आए। सब कोट पैंट पहनकर, सूट बूट पहनकर आए थे और हमारे स्वामी जी वो साधारण भगवा कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधकर पहुंचे थे। कुछ लोग उन्हें देखकर हंस भी रहे थे। जब स्वामी जी बोलने लगे, उनकी बारी आई, तो उन्होंने स्टेज पर जाकर भारी भरकम बात नहीं की। उन्होंने बस अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाए और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, इन 5 शब्दों को सुनना था कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग अपनी सीटों पर से खड़े हो गए और 2 मिनट तक तालियां बजाते रहे। जानते हो क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग वहां खुद को बड़ा दिखाने आए थे।
लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने वहां बैठे हर अनजान इंसान को अपना भाई और अपनी बहन मान लिया था। उन्होंने सिखाया कि पूरी दुनिया हमारा एक बड़ा सा परिवार है, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए बल्कि सबसे प्यार करना चाहिए। तो स्वामी जी की बातें सुनकर आज आपने जो बातें सुनी आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे नन्हे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और वो कहते थे कि बच्चे इस देश का भविष्य है। तो आज मैं आपको स्वामी जी की तीन सबसे बड़े मंत्र बताने जा रही हूँ जिन्हें आपको अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना है। पहला मंत्र तो ये है कि निडर बनो। स्वामी जी कहते थे कि डरपोक मत बनो, भूत प्रेत अंधेरे में फेल होने से मत डरो, खुद पर भरोसा रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो। दूसरा मंत्र ये कि हमेशा सच बोलो और दयालु बनो, हमेशा सच का साथ दो और जानवरों पेड़ पौधों और गरीब लोगों की मदद करो, किसी को भी कमजोर तो बिल्कुल मत समझो। तीसरा और सबसे बड़ा मंत्र ये मंत्र है कि आपको अपनी स्टडी टेबल पर लिख लेना चाहिए जो स्वामी जी ने कहा था। जानते हो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य यानी कि गोल तुम्हें ना मिल जाए। इसका मतलब यह है कि आलस छोड़ो, सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो और तब तक हार मत मानो जब तक कि आप जो बनना चाहते हो, जैसे कि कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और कुछ एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो वो बन जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने स्वामी विवेकानंद जी की कहानी से क्या सीखा? यही कि हमें बचपन में खूब खेलना भी है, शरारतें भी करनी है, लेकिन अपनी पढ़ाई और अपने अच्छे संस्कारों को कभी भी नहीं भूलना। हमें एक मजबूत और अच्छा इंसान बनना है और मुझे पक्का यकीन है कि आज से आप सब भी स्वामी जी की तरह निडर और फोकस बनने की कोशिश करेंगे। तो आगे बातचीत जारी रहेगी, आपसे और ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन सुनते हैं आओ ये मधुर प्यारा सा गीत बिल्कुल आपके लिए।

के कुछ कुछ हो तो पे जल के तुम्हारी हंसी कुछ कुछ हो तो पे जल के अभी अभी आँखों से चल के अभी कुछ कुछ हो।

तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जादुई चीज लेकर आई हूँ। जानते हो वो क्या है? मेरे हाथ में इस वक्त एक छोटी सी रंग बिरंगी डायरी है और इस पर

बड़े अक्षरों में लिखा है माय फन ट्रिप डायरी, यानी जब हम कहीं घूमने जाते हैं, चाहे वो नानी का घर हो, कोई पिकनिक हो, या पहाड़ों और रेतीले धोरों की सैर हो, तो हम वहां पर कितनी सारी मस्ती करते हैं, है ना। लेकिन ट्रिप खत्म होने के बाद हम अक्सर उन बातों को भूल जाते हैं, इसीलिए एक ट्रिप डायरी लिखना सबसे बेस्ट आइडिया है। तो आज इस डायरी के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे कि आप भी अपनी अगली यात्रा में इस डायरी को कैसे हमेशा के लिए कैद कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारी डायरी का पहला पन्ना खुल चुका है। इस पन्ने पर सबसे ऊपर लिखी जाती है तारीख, दिन और उस जगह का नाम जहां पर हम जा रहे हैं। सोचो, सुबह के 6 बजे हैं, सूरज दादा अभी अभी नींद से जागे हैं और हम सब अपनी गाड़ी की खिड़की वाली सीट पर बैठ चुके हैं। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और रास्ते में हरे भरे पेड़, दूर दौड़ते हुए बिजली के खंभे और छोटे छोटे घर ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे साथ रेस लगा रहे हो। तो डायरी लिखने के लिए ये बातें कितनी मजेदार है ना। जब आप सफर में हो तो मोबाइल में गेम खेलने की बजाय बाहर की दुनिया देखिए। आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि रास्ते में आपने कितने ऊंट देखे, कितनी रंग बिरंगी गाड़ियां देखी, या फिर पापा ने रास्ते के ढाबे पर जो गर्मा गर्म कचौड़ी और चाय पिलाई है उसका स्वाद कैसा था। तो जो बच्चे लिख नहीं सकते हैं वो डायरी में छोटे छोटे चित्र बना सकते हैं, जैसे कि एक छोटा सा सूरज, एक सुंदर सा पेड़ और अपनी मुस्कुराती हुई फैमिली। अब भाई, सफर लंबा हो तो गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ी सी बोरियत भी होने लगती है। तब हमारी ट्रिप डायरी में एंट्री होती है मजेदार खेलों की। याद है ना, जब हम सब मिलकर गाड़ी में अंताक्षरी खेलते हैं, मम्मी पुराना सा गाना गाती है और पापा नया गाना गाते हैं, और हम बच्चे अपनी कोई धुन बना लेते हैं। अपनी डायरी में जरूर लिखिए कि अंताक्षरी में सबसे ज्यादा गाने किसने गाए और कौन पहले आउट हो गया। इसके अलावा सफर को मजेदार बनाने के लिए आप अपनी डायरी में एक और गेम जोड़ सकते हैं, खोजो तो जाने, यानी जिसे हम आई स्पाई कहते हैं। जैसे डायरी में पहले से ही लिख लिया, मुझे रास्ते में एक सफेद गाय, एक पीली टोपी वाला आदमी और एक लाल रंग की कार ढूंढनी है। जो सबसे पहले इन तीनों चीजों को ढूंढेगा वो इस खेल का विनर होगा। तो ऐसे खेल खेलने से हमारा सफर जो है ना, हंसते खेलते कट जाता है और डायरी का पन्ना जो है वो खुशियों से भर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है हमारी मंजिल पर, तो मान लीजिए कि हमने किसी ऐतिहासिक किले को देखने गए हैं, तो या दूर से फैले सुनहरे रेतीले मैदानों में घूम रहे हैं। तो जब हम नई जगह पर जाते हैं तो वहां की हर चीज अनोखी होती है। वहाँ के लोगों का पहनावा, उनकी भाषा, उनका खाना, सब कुछ कितना अलग होता है ना। तो अपनी फन डायरी में आप इस पन्ने में हमें वो बातें लिखनी चाहिए जो हमें सबसे अनोखी लगी। जैसे कि अगर आप जैसलमेर के किले देख रहे हैं तो सोचिए कि इतने साल पहले राजा महाराजाओं ने पत्थरों को आपस में कैसे जोड़कर इतना बड़ा महल बनाया होगा। जब आप रेत के धोरों पर ऊंट की सवारी करते हैं तो वो अनुभव कैसा था? क्या आपको थोड़ा सा डर लगा था या आप खूब ठहाके लगाकर हंसे थे? ये छोटी छोटी बातें आप अपनी डायरी पर लिखेंगे तो सालों बाद भी जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आज भी वहीं घूम रहे हैं। तो है ना कितने मजेदार कि जब हम इस तरह से डायरी लिखते हैं तो कितना अच्छा लगता है और हमारी यादें जो है वो वापस ताजा हो जाती है। तो नन्हे मुन्हे दोस्तों, आप भी अगली बार कहीं घूमने जाए तो फन ट्रिप डायरी जरूर बनाए। तो समय हो चला है एक और गीत गुनगुनाने का, आओ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

and with that all is well. Yes, one mic is check how I gel. And which season all will be well. Yes, the clock start to the back. You can tell me that all is well. Scholarship keep me out. तो नन्हे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, एक सच्ची फन ट्रिप डायरी तब तक पूरी नहीं होती है जब तक उसमें एक अच्छे नागरिक और अच्छे बच्चे की बात ना लिखी हो। डायरी के आखिरी पन्ने पर हमें खुद से एक वादा लिखना चाहिए कि हम जहां भी घूमने जाएंगे वहां कचरा और प्लास्टिक की बोतलें यहां वहां नहीं फेंकेंगे और हम अपनी सुंदर ऐतिहासिक धरोहरों और दीवारों पर पेन या पेंसिल से कुछ भी नहीं लिखेंगे। और हाँ, घूमते समय हमेशा अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ कर रखेंगे, कभी उनसे अकेले नहीं दूर भागेंगे। तो अगर हमारी डायरी में ये बातें होंगी तो हमारी ट्रिप जो है सचमुच फन ट्रिप के साथ साथ एक गुड ट्रिप भी बन जाएगी। तो मेरे नन्हे दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगली चर्चा में ढेर सारी कहानियों के साथ, ढेर सारे किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, अपने मम्मी पापा का और बड़ों का कहना मानिए और पशु पक्षियों से प्यार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। फिर मिलने के वादे के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नन्हे जैसलमेर। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गुल्टन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई को, फिल्म का नाम था चक दे इंडिया। अगला गीत आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में, फिल्म का नाम है देवदास।

तेरे बड़े चाहने वाले आशिक ऐसा कहा। होंगे तेरे बड़े चाहने वाले आशिक।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

श्रोता हूँ, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण को। फिल्म का नाम था डुप्लीकेट। अगला गीत आइए सुनते हैं अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

अभी आप सुन रहे थे अभिजीत सिंह और सुनिधि चौहान को। फिल्म का नाम था गैंगस्टर। इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की 134वीं कड़ी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेज धूप और गर्म हवाओं के इस मौसम में अपना ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए सरकारी विभागों ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसे नहीं भूलें।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आम की विभिन्न किस्मों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गर्मियों के आते ही आम हर घर में चर्चा का विषय होता है। श्री मोदी ने कहा कि देश के परंपरागत पेय पदार्थों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना झलकती है। राजस्थान में छाछ हर खाने की साथी होती है। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में देश की उपलब्धि से की। उन्होंने 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूरकी से भी बातचीत की। अपनी हाल ही की नीदरलैंड यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां आयोजित एक समारोह में चोला काल की ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। केरलम में चलने वाले स्विमिंग क्लब के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमें बड़ी सीख देता है कि सेवा करने के लिए अच्छा इरादा और लगातार प्रयास जरूरी है।
2: साजिद बलासेरी जी का जीवन हमें बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर युवाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इसके बाद उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेत बचाओ अभियान कल से शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एक महीने के इस राष्ट्रीय अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जन जागरूकता से जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि ये अभियान उर्वरकों के प्रयोग और मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी और गांवों को सीधे योजनाओं का लाभ दिए जाने पर केंद्रित होगा। अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई है। उदयपुर जिले में 2 स्थानों पर खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई कर 18,000 लीटर मिलावटी घी जब्त किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभ मंगला ने बताया कि ये मिलावटी घी टैंकों और विभिन्न कंटेनरों में पाया गया। कार्रवाई के दौरान फूड कलर की बोतलें भी बरामद की गई। टीम ने सबीना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान से मिलावटी घी और अन्य दुग्ध उत्पादों का करीब 42,000 किलो से अधिक का स्टॉक भी पकड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज, वहीं 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट बताया है। मौसम का ये बदलाव 3 जून तक बना रह सकता है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अलवर सहित कुछ स्थानों पर धूल भरी तेज आंधी चली। इससे दिन में ही रात सा अंधेरा छा गया। कई जगह आसमान धूल के गुबार से ढक गया जिससे कुछ मीटर दूरी तक देखना भी मुश्किल हो गया। जयपुर में भी कल शाम आंधी चली, वहीं जोबनेर इलाके में झमाझम बरसात के साथ ओले गिरे। आंधी बारिश से तापमान में 9 से 12 डिग्री तक की गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम मोमल।

नमस्कार सखियों, मैं हूँ सोनल और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मूमल। सखियों, अगर हम बात करें हमारे आजकल के लाइफस्टाइल की, तो बहुत भागती दौड़ती सी जिंदगी में सुकून को दौड़ पाना और असली सादगी को, सिंप्लिसिटी को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम लोग बस भागते जा रहे हैं और ऐसे में जीवन जो है थोड़ा सा मुश्किल कई बार हमें लग सकता है, लेकिन अपने जीवन को सिंपल बनाए रखना, सादा बनाए रखना सखियों बहुत जरूरी है। जितनी सिंपल लाइफ आप जीते हैं उतना ही आप बेटर फील करते हैं। हालांकि आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा चकाचौंध भरी, या यूँ कहें कि भागा दौड़ी वाली और इस तरीके की लाइफ आजकल होती है, लेकिन उसमें अपने आप को किस तरीके से आप सिंपल रख सकते हैं, सादा जीवन जी सकते हैं, ये सखियों बहुत ज़रूरी है। अब सादगी सिर्फ हमारे तैयार होने का या मेकअप का ही एक पैमाना नहीं है, सादगी जीवन से भी जुड़ा हुआ है कि आपका जो जीवन है वो कितना सिंपल है। बहनों, कहते हैं ना, लाइफ जितनी सिंपल होगी उतनी ही अच्छी और आनंदमय होगी। हर इंसान सुंदर और आकर्षक दिखना चाहता है, और खास करके अगर हम महिलाओं की बात करें तो हम महिलाएं तो हमेशा से ही सुंदरता की होड़ में एक कदम आगे होती हैं, और दिखने में बनावटीपन कहीं ना कहीं होता ही है कि आप किसी से होड़ लगा रहे हैं कि मुझे उससे सुंदर लगना है या मुझे उससे अच्छा दिखना है। इसमें प्रदर्शन है, अनुकरण है, जबकि जो वास्तविक सौंदर्य है वो सादगी में है। सबसे सुंदर दिखने की चाह में एक इंसान दूसरे इंसान तक को छोड़ता नहीं है। संतुलित, शांत, आनंदमय और सार्थक जिंदगी के लिए सादगी का सखियों बहुत महत्व है, क्योंकि हम जिस तरीके का जीवन जीते हैं उसका हमारी जो यूं कहें माइंड सेट पर बहुत फर्क पड़ता है। आप किस तरीके से जैसे जैसे आप जीवन को सरल बनाते जाते हैं, ब्रह्मांड के जितने भी नियम हैं वो सरल होते जाते हैं। इसीलिए अपनी सिंप्लिसिटी बिल्कुल भी कम ना करिए, क्योंकि सिंप्लिसिटी जीवन में बहुत जरूरी है। ये हम किस तरीके से अपना लोगों के साथ भी व्यवहार बना के रखते हैं उससे भी जुड़ा हुआ है। और जैसे कि अगर छोटी सी छोटी अगर बातें हम करें कि आप सुबह समय पर उठने की आदत डालें, आप व्यायाम करें, थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकालें, कुछ भी योगा करें, घूमें या फिर मेडिटेशन करें, इसकी आदतें डालना अपने जीवन में, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सिंपल छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये आपके जीवन को बदल के रख सकती हैं। योगा मेडिटेशन के लिए आप 10 मिनट से इसे करने की आदत डालें, फिर धीरे धीरे इसको आप बढ़ाते जाएं। सखियों, हम सुनते हैं कि कई बहनें ये बोलती हैं कि हम मेडिटेशन कर नहीं पाते, ध्यान लगा नहीं पाते। तो सखियों, क्योंकि इसका कारण है कि आपकी भागा दौड़ी वाली जिंदगी, स्ट्रेस वाली आपकी लाइफ, क्योंकि हमारे जो रूटीन वाली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि आजकल सारी जो सखियाँ हैं, बहनें हैं, वो वर्किंग भी हैं, तो कुछ ना कुछ वो काम कर रही हैं, तो उनके जो वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करती हैं उसका भी कुछ टेंशन रहता है। और अगर बात करें हम गृहस्थी की, तो उसका तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जिनका स्ट्रेस हम लेके रोज़ उनके स्ट्रेस का बोझा ढोते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन हैं, हर रिलेशन की अपनी एक अलग प्रॉब्लम होती है, तो उन सबको निभाना बहनों के लिए चुनौतीपूर्ण कई बार होता है, और ऐसे में बहुत सारा स्ट्रेस हम ले लेते हैं और लाइफ को बहुत ही उलझावा बना देते हैं। तो लाइफ को जितना हो सके सखियों सिंपल रखिए, सादगी भरा रखिए, टेंशन जितना हो कम से कम करिए। इसके लिए आप जैसे कि मेडिटेशन कर सकते हैं, तो मेडिटेशन के लिए आप शुरुआत में 5 से 10 मिनट निकालें, ध्यान लगाएं, ध्यान लगाने की कोशिश करें, और उसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं। एक और चीज़ है बहनों, वो है पढ़ना। पढ़ने की आदत हर बहन को या हर महिला को डालनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो आपका जो सारा फोकस होता है वो उसी में ही होता है। तो पढ़ना जो है वो आपके जीवन से तनाव को मुक्त करता है। आप बहुत सारी चीज़ें इससे सीखते भी हैं, क्योंकि जितना हम चीज़ें देखने से नहीं सीख पाते उतना आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो जो सारा आपका जो माइंड का फोकस है उसी पर केंद्रित होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको वो सीखने को मिलती है। दूसरी बातें आजकल ये हो गई है सखियों कि हम कहीं भी जा रहे हैं या इवन हम खाना

खा रहे हैं बहनों, तो हम मोबाइल को लेके बैठते हैं, सोशल मीडिया को लेके बैठते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। जब आप खाना खा रहे हैं तो अपना पूरा टाइम अपने परिवार को दीजिए, उनसे बैठकर बातें करिए और मोबाइल से थोड़ा सा आप दूर रहें। मोबाइल ना देखें, टीवी ना देखें, पूरी तरीके से आप खाने पे ध्यान लगाएं। फोन की अपनी ये जो आदत है सखियों, उसको धीरे धीरे कम करें, क्योंकि आजकल की जो तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर खुद को ज्यादा की जरूरत में फंसा हुआ पाते हैं। लेकिन अब जो समय है सखियों, खास करके वो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो समय ये है कि हम अपनी जो बुनियादी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उस पे वापस लौटे। जीवन को सरल बनाने का मतलब सिर्फ कम चीजें रखना ही सखियों नहीं होता है। जरूरी है कि आप किस तरीके से उन चीजों का यूज करते हैं, और ये उन चीजों के लिए जगह खोलता है जो हमें वास्तव में खुशी देती है। सखियों, ये हमारी एक जो धुंध है हमारे आंखों के आगे, उसको दूर करता है, और जो अब हमारी रोज की अव्यवस्था होती है, अस्त व्यवस्था होती है, उसको कम करता है, तनाव को कम करता है, आपकी खुशी को बढ़ाता है। इसीलिए जरूरी है आनंद को खोजने के लिए, सादगी को खोजने के लिए, अपनी जरूरतों पे और इच्छाओं पे सखियों पुनर्विचार करने के लिए आप सोचें उस चीज को कि मुझे किस चीज की वाकई में जरूरत है, मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, किस चीज से मुझे सिंपल सा जीवन, सिंपल सी चीजें मिल सकती हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जीवन के सरल सुखों का आनंद लेने के लिए एक कदम पीछे हटाने का भी बहुत जरूरी होता है। लोग तकनीक से दूर रह के प्रकृति का आनंद लेते हुए अपने घरों को साफ करके जश्न मनाते हैं। इसका लक्ष्य उस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती है और हमारी शांति और संतुष्टि को बढ़ाने में हमारा सहयोग करती है। आजकल तो अगर हम बात करें बहनों, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, सारी चीजें ही हमें ऑनलाइन मिल जाती है। मोबाइल में आप सारी चीजें, सारे ऐप ऐसे देखते हैं जिसमें काफी सारी जो चीजों पे छूट आती रहती है, और आपको उसके लिए कहीं जाना भी नहीं है, घर बैठे बैठे चीजें आपको मिल जाती है। तो ये चीजें भी कई बार हमारे लिए नुकसान वाली साबित हो सकती है, क्योंकि एक से एक अच्छी छूट का विज्ञापन देख के हमारा जो मन है बहनों, वो चीजें खरीदने को आतुर हो उठता है। जरूरत हो या ना हो, बस सस्ती और ऐसी चीजें जो सेल में आ जाती हैं अक्सर, और हमें उन चीजों की कभी जरूरत ही नहीं है, ना अभी है ना आने वाले टाइम में होगी, लेकिन फिर भी वो हम चीजें खरीद लेते हैं क्योंकि वो सेल में है। और नतीजा क्या होता है इसका, फालतू चीजों का ढेर लगा देते हैं घर पे। तो आप कुछ भी खरीदें, पूरी गंभीरता से सखियों खरीदें। कम खरीदना, कम उपयोग करना और खुद को उन चीजों के प्रति समर्पित करना ही सखियों सादगी है। तो आप सादा जीवन जिए, सिंपल जीवन जिए, आनंद लें, किसी भी जो भी चीज आप कर रहे हैं उसमें आनंद लें। सादा जीवन यानी आजाद जीवन, वो जीवन जो आपको उस ओर बढ़ने की राह दिखाता है बहनों, जहां जुनून और उपलब्धियां हैं, जहां ऐसा कोई शोर शराबा और ऐसी अव्यवस्था नहीं होती जो आपके रास्ते की बाधा बन जाए। तब आप केवल वही साथ रखते हैं जो बेहद जरूरी चीजें हैं। कुछ लोगों के लिए सखियों सादा जीवन बिताना बहुत ही कठिन हो सकता है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि चीजों को इकट्ठा करके रखें और उसी में ही सफलता है। लेकिन इससे जब आप चीजों को इकट्ठा करते जाते हैं, चीजों के प्रति बहुत ज्यादा मोह आपका हो जाता है, तो ऐसे में भी आप बहुत चीजों में फंस जाते हैं और बहुत ज्यादा तनाव और अपने जीवन को बहुत ही बोझ सा फील करते हैं। इसीलिए सादगी भरा जीवन आपको वैसा गढ़ने में मदद कर सकता है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए आपको संतोष देता हो, जरूरी है। बात चाहे किसी चीज की हो या आध्यात्म की हो, जरूरी है कि आपका जो जीवन है उसमें आपका एक लक्ष्य हो और संकल्प हो। और सादगीपूर्ण जीवन आपको अपने लक्ष्य, आपको आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनको पहचानने में मदद करता है। इसीलिए जरूरी है कि सिंपल रहे, दिखावा बिल्कुल भी ना करें। अब सादगी का मतलब जो है वो जीवन से भी है सखियों, और आपका जो रूटीन है, जिस तरीके से आपका जो लाइफस्टाइल चल रहा है, उससे भी हो सकता है। तो सादगी के मायने हर दिशा में सखियों अलग अलग हैं। ये तो था कि आप किस तरीके से अपने जीवन को सिंपल बना सकते हैं, चीजों को इजी बना सकते हैं। तो आप अपने जीवन में बढ़ते जाएं आगे और अपने जीवन को सिंपल और सुंदर बनाएं। सखियों, बातें आपसे यूं ही जारी रहेंगी, चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और सुजाता की आवाजों में हलचल मूवी से ये प्यारा सा गीत। तो सखियों, आपसे बातें हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन कुछ संदेश भी जरूरी है, तो चलिए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: देखा, हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: Saving करने की भी यही उम्र है।
5: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: I know na, na.
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
7: चलिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गली गली

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दादा कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, ये तो थी हमने आपसे जो बात की कि आप अपने जीवन को किस तरीके से सादगी भरा और सिंप्लिसिटी से आप रह सकते हैं, अपने जीवन को किस तरीके से बहुत ही इजी बना सकते हैं। लेकिन बात आती है जब सखियों की, और उसमें हर कोई हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो सुंदर लगना चाहती हैं। मैंने लेकिन अगर हम अभी बात करें मौसम की, तो गर्मियाँ बहुत जोरों पर है और इस मौसम में सबकी हर वुमेंस की या हर महिला की जो चाहत होती है कि वो स्टाइलिश दिखे और कूल दिखे, लेकिन इतनी गर्मी में खुद को ऐसा बनाए रखने के लिए आराम जो फील होना है वो भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसा हो जिसमें आप आरामदायक फील करें, अच्छा फील कर सकते हैं। तो ऐसे में गर्मियों से बचने के लिए आप हल्के और आरामदायक जो अपने कपड़े हैं वो चूज़ कर सकते हैं। कॉटन के फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, लिनन ले सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है। और कोशिश करें जो कलर आप चूज़ कर रही हैं गर्मी में वो कलर बहुत ही लाइट हो, तो लाइट जो कलर होते हैं उसमें आपको अच्छा फील होता है, ठंडा फील होता है। कहीं भी गर्मी में अगर आप सखियों बाहर जा रही हैं तो अपने सनग्लासेस ज़रूर लगा के जाएं, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको आपकी आँखों को बहुत ही ज़्यादा गर्मी से बचाता है। तो कभी कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आप सनग्लासेस का यूज़ ज़रूर करें। अगर बात करें हम पैरों की, तो पैरों को भी सखियों आराम देना बहुत ज़रूरी है। तो गर्मी के दिनों में पैरों को भी ठंडक और आराम चाहिए होता है, इसीलिए हल्की और हवादार स्लीपर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हों या आप घर पे ही हों, पैरों को आराम देना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए

या आप हल्के स्लीपर्स यूज करें। एसेसरी की बात अगर करें तो आप कहीं घूमने गए हैं गर्मियों में, तो जरूरी है कि आप हल्के कपड़े पहने और साथ ही साथ जो एसेसरी आप यूज कर रहे हैं वो बहुत ही हल्की हो, मिनिमल हो और बहुत ही अच्छी हो। और मेकअप की जहाँ बात आती है सखियों, तो अभी ऐसी गर्मी के मौसम में मेकअप पे बहुत ज़्यादा फोकस करना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप अपनी स्किन को, जो स्किन केयर का आपका जो रूटीन है वो किस तरीके से आप अच्छा फॉलो करती हैं। स्किन केयर का जो रूटीन है एक फॉलो करना बहुत जरूरी है हमारी अच्छी और हेल्दी स्किन के लिए। गर्मियों में अगर बात करें तो आप अपना जो क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग है वो प्रॉपर अच्छे से करें। सनस्क्रीन जो एक बहुत जरूरी चीज है सखियों, सनस्क्रीन को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि हमें कई बार पिगमेंटेशन की और रिंकल्स की, फाइन लाइंस की हम देखते हैं बहुत अर्ली एज में शिकायत होने लगती है। उसका कारण ही यही होता है कि हम जो यूवी रेज हैं उन उनसे क्योर नहीं करते हैं अपने आप को, और सनस्क्रीन जो है वो बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं। तो आप रोज अच्छा सा एक अपने स्किन के हिसाब से सनस्क्रीन आप जरूर लगाएं, और मेकअप के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका कम से कम यूज करें। ये तो थी आप बहनों, क्या आप लगा सकते हैं, किस तरीके से आप बाहरी अपनी सुंदरता को उभार सकते हैं, लेकिन अगर बात करें हम अंदर की अपनी बॉडी की, तो अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखना सकियो बहुत जरूरी है। तो जरूरी है कि आपकी एक गर्मी में प्रॉपर डाइट हो, आप अच्छी डाइट को फॉलो करिए। बाहर का खाना जितना भी है, जंक फूड है या बाहर का खाना है, उसको आप गर्मियों में जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। और साथ ही साथ बात करें अगर हम लिक्विड की, तो लिक्विड आपकी बॉडी को कितना चाहिए ये बहुत ज़्यादा मैटर होता है। तो आप पूरा दिन अच्छी मात्रा में आप लिक्विड लेते रहें, पानी लेते रहें, या फिर जूस ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी है वो हाइड्रेट रहेगी और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हमें पानी की कमी की वजह से होती हैं वो नहीं होगी, खास करके गर्मियों में। तो बहुत सारे जूस ऐसे होते हैं, आप जूस भी ले सकते हैं। छाछ बहुत एक अच्छा ऑप्शन है गर्मियों में, आप छाछ ले सकते हैं जिससे आपकी बॉडी ठंडी भी रहेगी और हाइड्रेटेड भी रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं अगर हेल्दी और चीज़ों की, हेल्दी ऑप्शंस की, तो आप इसके अलावा अपनी डाइट में नींबू पानी शामिल कर सकते हैं। सवेरे उठ के अपने दिन की जो शुरुआत है सखियों वो गुनगुने पानी के साथ में नींबू के साथ कर सकते हैं। नींबू में विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में, जो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी वो गट हेल्थ जो है आपकी उसको भी इम्प्रूव करता है। वेट लॉस में भी आपका बहुत ही आपके लिए मददगार हो सकता है। तो नींबू के बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा आप हरी सब्जियां जितनी हैं वो ले सकते हैं, अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि आप जितना हो सके डाइट को बैलेंस करके चलिए गर्मी में। बहुत ज़्यादा खाना या तला हुआ खाना आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है, आपकी स्किन को खराब कर सकता है। इसीलिए जरूरी है कि अपने खाने में बैलेंस बना के रखिए। खास करके बात करें अगर हम रात के डिनर की, तो रात का जो आपका खाना है वो बहुत ही हल्का होना चाहिए और टाइम से होना चाहिए। जब हम एक टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं या फिर रात को खाना जल्दी आप खा लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी है वो यूं ही सॉल्व हो जाती हैं। तो जरूरी है कि खाना आप अपना टाइम से खाइए और अपनी बॉडी के लिए कुछ समय आप योगा के लिए निकालिए, या फिर आप जिम जाते हैं तो आप जिम जा सकते हैं, कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। आधे से एक घंटा अपनी बॉडी को फिजिकली देना बहुत जरूरी है। तो आप फिजिकली फिट रहने के लिए योगा या इन सब चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मेंटली फिटनेस की बात करें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आपको ध्यान लगाने में मदद मिलती है। तो शुरुआत करिए थोड़े थोड़े से समय के साथ में, 10 मिनट पहले अपने लिए निकालिए, अच्छा सा आप सवेरे उठ के प्राणायाम से स्टार्ट करिए, और पहले 10 मिनट से 15 मिनट ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने समय को बढ़ा सकते हैं, जिससे ध्यान लगाने में आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अपनी भागा दौड़ी भरी लाइफ को, स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करिए, अपने ऊपर समय दीजिए। मेंटली जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी इजी होती चली जाएगी। इसका कारण यही होता है कि हम खुद को समय नहीं देते हैं। बहुत सारा जो समय है अपने परिवार को तो हम सखियां देते ही हैं, बच्चों के लिए करते हैं या फैमिली के लिए करते हैं, बट ऐसे में उलझ जाते हैं और मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से अनफिट हो जाते हैं।
तो फिटनेस बहुत जरूरी है और इस पे हर किसी महिला का काम करना बहुत जरूरी है। अपनी फिटनेस को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए और अपने

कहीं तो हम देखते हैं कि हम कई फील्ड में महिलाएं जो पुरुषों से भी बहुत ज्यादा आगे हैं। लेकिन अगर बात करें हम अपने सखियों घर की सुरक्षा की, तो घर की सुरक्षा में महिलाओं की सजगता और उनकी जो सक्रिय भागीदारी है वो सबसे मजबूत ढाल है। क्योंकि अगर हम एक घर की बात करते हैं, जो घर का बुनियादा ढांचा जो होता है, घर का जो बेसिक है, नींव जो है, वो महिला ही होती है। महिलाओं से ही पूरे घर का जो है वो संचालन होता है, या हर चीज जो भी है वो महिलाओं से ही जुड़ी हुई है। तो ऐसे में ये केवल बाहरी खतरों से बचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि घर की जो अंदर की सुरक्षा है, घर के अंदर भी सुरक्षित माहौल जो है वो बनाने और परिवार को बहुत जागरूक रखने या फिर सजग रखने के लिए महिलाओं का जो रोल है वो हर फील्ड में ही अपना एक अलग रोल है। अगर बात करें घर के भौतिक सुरक्षा की, तो ये जो फिजिकल सेफ्टी है ये तो सबसे पहले बहुत जरूरी है। सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं सखियों, तो ऐसे में घर की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाती है कि किस तरीके से हम अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। और जैसे कि बात करें अगर फिजिकली सेफ्टी की, तो खिड़कियों और दरवाजों और ताले की जो है वो नियमित जांच करना, क्योंकि आप घर में रहते हैं और घर में इन चीजों की जांच रोज जांच करना बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले या बाहर जाते समय सुरक्षा अलार्म जो है वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ऐसी सिटी में सरवाइव कर रही हैं जहाँ ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो ऐसे में घर की भौतिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। अनजान जो लोग हैं, वो जैसे कि आपके घर पे अभी हम देखते हैं कि कई बार हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो किसी भी डिलीवरी बॉय या फिर कोई भी जो ऐसा अननोन पर्सन है, उसको घर में एंट्री देने से पहले उसकी पहचान होना सखियों बहुत जरूरी है। क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, तो उनकी सेफ्टी भी सखियों कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाती है। ये तो थी कि आप किसी किसी से मतलब फिजिकल सेफ्टी किस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, घरेलू हिंसा से बचाव और जागरूकता, तो अपने अधिकारों को जानना, अधिकारों की जानकारी रखना हर महिला को बहुत जरूरी है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छे कानून है, मजबूत कानून है, तो उन कानूनों का हमें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, वो 2005 के तहत महिलाओं को साझी गृहस्थी में रहने का पूरा अधिकार देता है। तो जो अधिकार हमारी सरकार हमारे लिए बनाती है, तो उनको जानना भी हम सखी हर सखी महिला का जो महत्वपूर्ण अधिकार है, और हमें इन चीजों के बारे में जानकारी होनी ही होनी चाहिए। इसके बाद अगर बहनों बात करें, तो आती है कि साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन बचाव। ये जो मुद्दा है आजकल बहुत ज्यादा एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है बहनों, क्योंकि ये इससे सुरक्षा कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि कई सखियों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, और ऐसे में हम बहुत सारे साइबर फ्रॉड में भी फंस जाते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का सखियों जमाना है, और सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, या फिर आप कुछ शॉपिंग करते हैं उसमें भी ऐसी बहुत सारी धोखाधड़ी होने की काफी हद तक संभावनाएं होती है। तो गोपनीयता को बनाए रखना अपनी बहुत जरूरी है। ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या किसी भी अनजान लिंक पे आप क्लिक करते समय बहुत ही ज्यादा सतर्क रहिए। अपने बैंक से जुड़े हुए जितने भी जरूरी चीजें होती है या पासवर्ड होती है, वो भी आप किसी के साथ में शेयर ना करें, क्योंकि साइबर सुरक्षा से अपने आप को सुरक्षित रखना अभी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और बात करें बच्चों की निगरानी की, तो घर पे जो आप आपके जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे कितना टाइम बिता रहे हैं, अपना क्या क्या चीजें वो देख रहे हैं, ये भी इस पे भी निगरानी रखना सखियों आपका ही काम है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, अपने आप को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, ये बहुत जानना जरूरी है। इसके बाद अगर बात करें मैनू आपातकालीन हेल्पलाइन और डिजिटल टूल्स की, तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है कि हमें आपातकालीन नंबरों की जानकारी होना हर महिला को जरूरी है। अगर आपके साथ में कुछ भी क्राइम होता है, या कुछ भी आपके साथ में दिक्कतें आती है, तो हर महिला को ये पता होना चाहिए कि हमें किस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करना है, या किससे हमें सुरक्षा मिल सकती है। बहुत सारे सुरक्षा ऐप होते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस का राजस्थान पुलिस फेसबुक पेज है, या बहुत सारी ऐसे ऐप हैं जिससे आपको महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार ये जो ऐप है ये काम करते हैं। और ऐसे ऐप्स जो हैं वो स्थानीय पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा सखी जैसी योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो चीजें हमें छोटी छोटी दिखती हैं, लेकिन ये बहुत ही कई बार बड़ी हो जाती हैं आपके लिए। तो ये इन चीजों का ज्ञान होना
हर महिला को जरूरी है। तो घर की सुरक्षा, अपने आप की सुरक्षा

मैनू, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी दिशा में, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। हर फील्ड में हम आगे हैं और कहीं

या परिवार वालों की सुरक्षा, ये करना सखियों को बहुत जरूरी है। और वैसे भी महिलाएं आगे हैं, सशक्त हैं, अपना अच्छा पहचानती हैं, और आजकल की जो महिलाएं हैं वो तो पढ़ी लिखी हैं, तो वैसे भी हमें हर चीज़ का नॉलेज होता है। तो जरूरी है कि बस इस और एक कदम बढ़ाने की। तो सखियों, बातें आपसे यूं ही जारी रहेंगी, चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, हम बात करें महिलाओं के हेल्थ के बारे में या आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो सखियों, आज के दिन ही हर साल विश्व तंबाकू दिवस पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और इसके बावजूद भी अगर हम देखें अभी का आंकड़ा तो युवाओं में सिगरेट पीना या तंबाकू का अन्य रूपों में सेवन करना बहुत ही ज़्यादा एक हमारे लिए चिंताजनक विषय बनता जा रहा है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल किस तरीके से रखते हैं। हमारा जो स्वास्थ्य है वो ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होता है, तो ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ को आप किस तरीके से अच्छा बना के रखते हैं, मेंटेन बना के रखते हैं। बात करें अगर महिलाओं की भी तो सखियों, महिलाओं के लिए भी तंबाकू का सेवन अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाला है। इससे फेफड़ों के कैंसर के अलावा आपकी जो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं वो भी आपके बॉडी में प्रभावित होती है। इसमें अगर बात करें तो गर्भपात का भी खतरा होता है, और अगर हम बात करते हैं पीरियड्स की तो उसमें भी अनियमितता होती है, जल्दी से मेनोपॉज के डर भी रहता है, इसमें हड्डियों का कमज़ोर होना भी होता है। बहुत सारे जो हमारे बॉडी में बदलाव हैं वो तंबाकू के और इस तरीके की चीज़ों के सेवन से हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इसको इससे क्योर करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकता है। महिलाओं को लेके तो हेल्थ पे वैसे भी बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं हमें टाइम के साथ देखने को मिलते हैं। तो तंबाकू के जो प्रयोग से, अगर आप तंबाकू का यूज़ रोज़ ले रही हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि आपकी जो कंसीव करने की जो क्षमता है उस पर भी असर पड़े, और अगर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में भी ये जो धूम्रपान है, तंबाकू है, इनका बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि इससे आपके आने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है या आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान सखियों हो सकता है। तो ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं इनका जो आप यूज़ हैं उसको बिल्कुल ही बंद करें। और कैंसर की अगर बात करें तो आजकल कैंसर वैसे भी बहुत ज़्यादा हमें सुनने में मिलता है, तो ऐसे में फेफड़ों के और अन्य अंगों के कैंसर भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप धूम्रपान करते हैं या आप तंबाकू ले रहे हैं। तो ऐसे में फेफड़ों का जो कैंसर होने का खतरा जो है वो 20 गुना तक बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का जोखिम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है जब आप इस तरीके की चीज़ें कंज्यूम करते हैं। और अगर बात करते हैं पीरियड्स की और मेनोपॉज की, तो पीरियड्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं को देखने को मिलती हैं जो महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं, तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियां उनको फेस करनी पड़ती है। जल्दी मेनोपॉज हो जाते हैं जो महिलाएं तंबाकू का यूज़ रोज़ ले रही हैं, उनमें नॉर्मल एज से पहले ही जो मेनोपॉज जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको फेस करनी पड़ती हैं। आपकी हड्डियों पर फ़र्क पड़ता है, आपको आपकी स्किन पर फ़र्क पड़ता है। एक टाइम जब आप लंबे टाइम से तंबाकू का सेवन करते हैं तो हड्डियों का जो घनत्व है वो बहुत ही तेज़ी से कम होता है, और ऐसे में फ्रैक्चर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा स्किन जो है आपकी वो समय से पहले ही उन पे रिंकल्स आने लगते हैं, आप जिस समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं, ज़्यादा झुर्रियाँ आ जाती है, और आपकी जो स्किन है वो बहुत ही बेजान सी फील होती है। और बात करें अगर हमारे हार्ट की और हमारे मेंटल हेल्थ की, तो उसका भी तंबाकू के सेवन से बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ता है। दिल की बीमारियां बहुत सारी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि तंबाकू की वजह से जो हमारी ब्लड जो वेव्स होती हैं वो संकरी हो जाती हैं, जिससे जो हाई बीपी है और जो दिल का दौरा पड़ने का जोखिम है वो बहुत हद तक सखियों बढ़ जाता है। मानसिक तनाव की अगर हम बात करें तो तंबाकू के सेवन में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरो की जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। ये आपका जो एंजाइटी लेवल है उसको बूस्ट करता है, इससे आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ऐसे में जो मेंटल जो स्थिति है आपकी वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है, और आपको बहुत सारी मेंटल कंडीशन को फेस करना पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल बनाएं, सादगी भरा बनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें जितनी हैं, हेल्दी चीज़ें हैं वो अपने

लाइफ स्टाइल में शामिल करिए, अपने डाइट में शामिल करिए, और ये जैसे तंबाकू जैसी जो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब करती हैं, और हमारे आने वाली जो लाइफ है उसको भी, उस पर भी इसका बहुत लॉन्ग टर्म जो है वो असर पड़ता है। तो तंबाकू के सेवन को अपने जीवन से कट करना बहुत ज़रूरी है। तो सखियों, इस और आपको बहुत ही ध्यान देना है, अपने आप को जागरूक करना है, और अपने आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी सखियां हैं, उनको भी इस बारे में आपको जागरूक करना है। तो सखियों, बातें आपसे हम यूं ही जारी रखेंगे, चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: जोर दिल ले गई, है रबा ले गई।
1: सखियों, अगर हम बात करें अपने जीवन की, तो जीवन में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी दिखती है, कई बातें ऐसी होती हैं लेकिन वो बहुत ही अनमोल होती हैं। बहुत चीज़ें इजी दिखती हैं लाइफ में, लेकिन वो आपके रोज़ की मानसिक जो शांति है उससे जुड़ी हुई होती है। तो पहली बात, तो अगर आप जीवन में किसी के साथ में हैं आप, तो उन लोगों का आभार व्यक्त करें।

हमेशा उन चीजों के लिए जो चीजें आपके लिए लोग करते हैं उनका आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ अपने मुस्कान का जो एक जादू होता है वो बिखेरना भी रोज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हल्की सी मुस्कान आपके तनाव को कम कर सकती है। जब आप किसी से मिलते हैं तो चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान आपके रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा मजबूत और आपकी बातचीत को बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा बनाती है। बात करें अगर अपनी विनम्रता की, तो दूसरों की बात ध्यान से सुने और उनको सम्मान दें, क्योंकि सुनना भी बहुत एक अच्छी कला है। इसलिए हमेशा बोलना ही जरूरी नहीं होता, सामने वाले को सुनने से भी आप बहुत सारी चीजें जीवन में सीखते हैं। सुनिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, रोजाना 30 मिनट तक व्यायाम करें, रोज अच्छी से नींद लें। शरीर स्वस्थ होगा आपका तो आपको ऊर्जा मिलेगी और आपका जो मन है वो अच्छे से काम में लग पाएगा। कोशिश करिए कि एक समय में सखियों एक ही काम करिए, मल्टीटास्किंग की बजाय जो काम कर रही हैं उस पर पूरा ध्यान दीजिए। दिन भर के छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने से बड़े बड़े जो आपके लक्ष्य हैं जीवन के वो इजीली हासिल हो जाते हैं। तो ये थी सखियों आपके जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी मगर अनमोल बातें, जिन्हें आप अपने जीवन में रोज अपना सकते हैं और अपने आप के जीवन, अपने जीवन को और अपने आसपास के लोगों के जीवन को आप खुशनुमा और अच्छा बना सकते हैं। तो सखियों, अभी बातें तो बहुत सारी करनी थी लेकिन अब समय हो चला है आपको अलविदा कहने का। हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव बने रहे जीवन में और अपनी मुस्कान यूं ही बिखेरते रहिए। अपनी रेडियो सखी सोनल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM एंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 2 बजे हैं। अब आप सुनेंगे पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी

0: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का

0: क्या है?
1: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
2: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
3: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
2: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
3: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
2: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
3: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
2: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
2: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरु मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्ते।
0: हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर के
6: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
7: हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना, आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल विश्वास ने। अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी।

0: यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जो शहीद हुए हैं
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।
1: जमाने का दस्तूर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास की संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

మంచుమయ్యా డోల జాన నెక్కు పవన్ హో సంతల్ ధారా

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

अनिल बिस्वास की संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: हम विविध भारती से बोल रही हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की जरूरी धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
0: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
0: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
1: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहे गीत,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है।
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम।
4: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ, अगर कोई लड़की सुहाल में, किसी लड़की से साल में, साल में जा कहती है वो मुझे कहना है।
3: अक्सर कोई लड़का इस हाल में, किसी लड़की से सोलवे साल में जो कहना है वो मुझे कहना है।
2: अक्सर कोई लड़की

0: नहीं पर अरे कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं पर अब मुश्किल चुप रहना है मुझे कुछ कहना है
1: मुझे भी कुछ कहना है
0: पहले तुम
1: पहले तुम
0: पहले तुम
1: तुम
0: तुम
1: तुम

0: की लड़के की सोलवे साल में जो कहती
1: जो कहता है वो मुझे
2: कहना। फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशिला देवांगन, हिमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

Sini.

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी, दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने की बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एम जी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

हरी सूरज चांद तारे कब से घूमे हरी सूरज चांद।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आपसे भी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदीअली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोवल गुप्ता और ये है सपना। संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मनचाही गीत।
0: मन चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इसे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे बहुत शांत बना देता है।
1: डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो, इधर देखो, देखो ना, हाँ, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं दो हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुलारा सा नन्ना मुन्ना। हाँ,

0: हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
1: ईश्वर की कृपा हुई तो
0: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
1: क्यों तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
0: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा। डिजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस? क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की। ओह
0: डेजी माय गॉड।

0: उस दिन मैं सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: है। पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई, उसे दवा दी जा रही है।
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में
2: तेजी।
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक देवी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूँ मैं? आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है?
2: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता के दृष्टि से नहीं। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं सह सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
2: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
2: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
3: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप। रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों नहीं जी?
0: जी
3: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
3: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
2: अरे भाई, वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
3: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे?
3: हाँ?
0: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छाटे होंगे।
3: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
0: वो
3: सो रहा है।
0: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है।

0: हंसना खेलना सब बंद।
1: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
2: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
1: दैट डजंट मैटर डॉक्टर, स्लाइट फीवर ओनली, मैंने दवा दे दी है वैसे।
2: अच्छा मैं चलता हूं, मेरे को जरूरी काम है। चलो डेजी।
0: ओके अच्छा
1: बाय डॉक्टर। बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
3: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता, कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिरी नाटक क्यों?
3: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त बाहर है। ये
3: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
1: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
1: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
3: डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द ही नहीं कहा।
3: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
0: बंद भी करो ये सब, बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
3: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
0: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
1: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
0: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
1: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी के साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
0: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
1: अपने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
0: क्या हो गया है?
1: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करते हो, तुम इसकी पूजा करते हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब याद नहीं रहेगी।
0: मिल गया संतोष। मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
2: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
0: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
2: कैसी शंका?
0: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
2: डेजी तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
2: नहीं।
0: मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
2: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: कभी हुआ कैसे डॉक्टर?
2: डेजी इसके कई कारण हो सकते हैं, पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आपकी ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
2: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है, ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
0: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
2: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
2: क्या?
0: लेकिन वास्तव में डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
2: बोलो
0: डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
2: मैं?
0: डॉक्टर मेरे बच्चे के लिए, डॉक्टर उसकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए।
2: नहीं नहीं डेजी नहीं, ये ठीक नहीं है, बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। I'm sorry.
0: Please, doctor, please, मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
2: नहीं डेजी ये ठीक नहीं है,
0: प्लीज डॉक्टर।
2: अच्छा चलो मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
0: हाँ। मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
2: डॉक्टर लॉरेंस?
3: हो डॉक्टर रामदास,
2: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
4: बैठ जाइए
2: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
4: जी,
2: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: वही तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
2: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
2: कोई कुछ समझ न सके इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: यू मीन डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
2: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
2: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
3: नहीं नहीं पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं
2: डॉक्टर लॉरेंस। काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं, रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
3: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
2: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
3: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
2: नहीं, नहीं, नहीं। तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका
3: ना डॉक्टर। डॉक्टर दैट वाज मेयर डेथ, एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
2: नॉट मेयर डेथ, इट वॉज ए क्लियर मर्डर
3: डॉक्टर। नो डॉक्टर,
2: तुमने

0: एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है, और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं। डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
1: नो नो,
0: क्यों डॉक्टर, सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से पूर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया, क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाथ क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
1: डॉक्टर, डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
1: सच है, सच है डॉक्टर, लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया, भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
1: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से नहीं कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू।
0: नहीं कहूंगा
1: डॉक्टर,
0: क्योंकि ना कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर रॉबिन्स, मैं अब चलता हूं।
1: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक ना एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस, तुम अचानक,
1: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
1: हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
2: मैं भी तुम्हें,
1: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
2: भुला दूंगी।
1: हाँ,
2: हमेशा के लिए भुला
1: दूंगी। मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
2: हाँ हाँ, मैं अभी लाती
1: हूँ। हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ किएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के यहां रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उससे गिटार तोड़ दिया। मैं एक नया गिटार ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हाँ, ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
2: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
1: डेजी
2: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
1: ये क्या कर रही हो तुम डेजी?
2: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
1: डेजी,
2: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ली।
1: नहीं, डेजी सुनो तो।
2: सुनो।

0: डॉक्टर, ये क्षणिक सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह
1: सकते। सच नहीं है, मैं कहता हूँ
0: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
1: ओह माय गॉड,
0: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
1: नो,
0: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
1: विदा?
0: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
1: था। डेजी, डेजी,
0: मैं कुछ ही पड़ती मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। अरे, ये आपको क्या हो रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
1: डेजी, ये मेरी नसें टूट रही है। डेजी, डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी,
0: नहीं लॉरेंस, नहीं, नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो, करो बेटा। मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाती? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाती? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाती?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बंजो तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लंगारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: तो कभी छाऊं।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिली मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम

0: गंगा जमुनी तहजीब पर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तक हमें महान कवि प्रदीप जी को उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
0: जी,
1: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
0: जी,
1: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
0: जी।
1: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
0: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्र कवि प्रदीप जी के बारे में
1: जी।
0: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं?
1: मैं तो अच्छी हूँ
0: मितुल जी। आप राष्ट्र कवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे?
1: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे इलाहाबाद में पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हिंदी भाषा के, मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
0: जी,
1: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
0: अच्छा जी।
1: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
0: ही हैं।
1: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
0: अच्छा।
1: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी
0: जी, बिल्कुल।
1: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
0: जी,
1: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
0: अच्छा जी।
1: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनके मैनेजर वो वहां पर थे
0: जी,
1: रावल जी।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
0: जी।
1: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
0: अच्छा।
1: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए।

0: प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
1: बन गए। थी कौन तो सी सन की बात है और किस फिल्म के लिए
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए। उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए, उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी, एक्टर।
0: तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए, प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मितुल जी आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार,
1: हेमंत कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती थी।
0: जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी,
1: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
0: जी,
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना के दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
0: जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा, तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
1: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
0: अच्छा।
1: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
0: वो गर्म है,
1: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
0: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
1: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल प्रेरित नहीं करूंगा।
0: अच्छा
1: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना

0: मैंने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफकोर्स दो तीन साड़ियां हाँ, तो दी होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू
1: जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ।
1: अच्छा।
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने बोल दिया वहां पर मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को लेके। तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं
1: जी।
0: ना, तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी जी।
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं नहीं घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी।
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए। और वैसे मतलब ये जो यूनियन था
1: वो संबंध
0: विवाह का, तो वो खुशी खुशी उसकी समापन हुआ।
1: जी जी। तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही।
0: पानी बन के रही। हाँ एक्चुअली वो भी आग थी। लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी ये सबसे बड़ी बात है।
0: जी। क्योंकि मेरी माँ को अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी।
1: मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल में की गई। हाँ, नाना नानी की द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी।
2: गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में।

0: है जिंदगी हर तरफ बहार में इसलिए
1: चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में इसलिए।
2: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
3: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
2: बिल्कुल
3: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं। लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे नितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था या उनकी क्या हाइट थी और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
2: जी।
3: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
2: घर में एक आम पिता की तरह
3: वो रहे
2: जी।
3: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
2: जी, बिल्कुल,
3: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण।
2: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया
3: जी, जी।
2: तो मिथुन जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
3: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहां पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहां पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहां पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहां पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे और बड़े बड़े जो वहां के नेता थे वो वहां पर रोज ही उनके वहां कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
2: जी,
3: वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
2: एक कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
3: और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
2: जी,
3: इलाहाबाद में। तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
2: अच्छा।
3: हाँ, तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।

0: हाँ,
1: और
0: तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे मुंबई।
0: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त।
0: हाँ जी,
1: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
0: जी, क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने?
1: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई थी,
0: जी,
1: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
0: बहुत
1: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
0: क्या बात, बहुत खूब।
1: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन यही कविता है जो उन्होंने
0: लिखी
1: उसी वक्त, लिखी
0: उसी दौरान, उनके भीतर ये अंकुर पैदा
1: हुआ
0: और वहां से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
1: हाँ
0: जी, तो मित्र जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
1: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
0: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।

0: जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनार है,
1: जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनार है,
0: जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है,
1: जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा

हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी।
1: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया। अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत।
1: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं नहीं देखिए, ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
0: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
1: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
1: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात।
1: सही बात है
0: ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
1: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे।

0: तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि बच्चों की भाषा में लिखा है,
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में, आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली, रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई। और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है, इस गाने के सिवाय वो
1: कोई
0: पूरी नहीं
1: गाना
0: होती।
1: जी बचता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
0: जी,
1: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लीजिए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही गीत
1: साबरमती के संत।
0: साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल।

0: मित्तल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना। लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं,
0: भील जाति,
1: तो भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहां क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की हुई नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है। तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
0: जी।
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है,
0: बिल्कुल।
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं,
0: बिल्कुल। वो दर्शन,
1: छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
0: दर्पण में
1: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीरीज, कैसेट्स, और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास, हाँ, आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद करते हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
1: पिंजरे के पंछी सुनिए,
0: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बिल्कुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था, शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे। तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत है जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है मित्र जी। तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेब चा गाना आला साहेब चा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सरवा लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।

0: उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
1: अच्छा
0: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं,
1: हाँ।
0: और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, सब लोग तुम क्यों रो रही हो,
1: हाँ।
0: मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।
2: जो हम आपस में न झगड़ते बने।

0: हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
1: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा।
2: जी,
1: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है, कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
2: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आ रहा है और अपने मन को हम समझा लेते हैं कि अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में
1: कुछ आ गए तो। और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि अब दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
2: बिल्कुल,
1: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम, हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण उपलब्ध है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी।

युवा साथी सुन रहे हैं युववाणी। मैं अर्चना, आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस, फैशन की दौड़ से बचे, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना और संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को जानने का स्रोत पर्यटन। तो हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर साल 31 मई को, यानी कि आज के दिन, पूरी दुनिया में यह दिन मनाया जाता है। और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों और इससे होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम तंबाकू छोड़ देते हैं तो उसके हमें क्या-क्या फायदे हैं, तो तंबाकू छोड़ने से ब्लड प्रेशर और पल्स रेट है वो सामान्य होने लगती है, और खून में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर है वो भी लगभग 12 घंटे में सामान्य हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन और फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है। और अगर हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल तक अगर हम तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं तो दिल की बीमारी का खतरा है वो लगभग आधा हो जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल एक खास थीम के साथ मनाई जाती है। अगर हम बात करें 2026 की थीम के बारे में, तो इस वर्ष की थीम है आकर्षक का पर्दाफाश करना, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। तो इस साल का जो अभियान है वो तंबाकू कंपनियों के उन नए और आकर्षक तरीकों को उजागर करता है जिनका इस्तेमाल वे युवाओं को रिझाने के लिए करते हैं। और कंपनियां अलग अलग फ्लेवर यानी कि स्वाद में आकर्षक डिजाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए बच्चों और किशोरों को निकोटीन का आदि बना रही है। इस थीम का मकसद इसी धोखे को इन सबके सामने लाना है। बात करते हैं इस दिन के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में एक प्रस्ताव पारित किया था, और पहली बार 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में इसे चिन्हित किया गया था। इसके बाद उसी वर्ष एक और प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 31 मई को आधिकारिक रूप से विश्व तंबाकू निषेध दिवस घोषित कर दिया गया। तब से हर साल इसी तारीख को यह मनाया जाता है। बात करते हैं इसको मनाया क्यों जाता है, तो इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि आज के जो युवा हैं उनको और पूरी दुनिया के सामने है वो जो तंबाकू है उसके हानिकारक जो प्रभाव है और उससे होने वाली बीमारियों के प्रति है वो जागरूकता फैलाना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य के नुकसान को, तो WHO की आंकड़ों के अनुसार हर साल दुनिया में लगभग 80 लाख से अधिक लोगों को जो तंबाकू के सेवन के कारण है वो उनकी मौत हो रही है। तो ऐसे में जो खुद धूम्रपान नहीं करते हैं बल्कि दूसरों के धुएं के संपर्क में आने से ही भी अपनी जान गंवा देते हैं, तो ऐसे लोगों की भी संख्या है वो इसमें शामिल है। साथ ही साथ जो तंबाकू के सेवन से, साथ ही साथ तंबाकू की खेती से, उसके उत्पादन से और उससे होने वाले कचरे से हमारे पर्यावरण और फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंचता है। तो तंबाकू के बहुत सारे हानिकारक प्रभाव है, ना तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ना हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है, और ना ही जो दूसरे लोग हैं जो इसके संपर्क में आ रहे हैं उनके लिए लाभदायक है। इसलिए इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया में है वो तंबाकू के प्रति जो जागरूकता फैलाना कि इसकी जो लत है उस लत को क्यों छोड़ना है वो जरूरी है। तो हम कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपनाकर जो ये तंबाकू की जो लत है उसको छोड़ सकते हैं। जैसे तंबाकू छोड़ने के लिए एक दिन निश्चित करें, उस पर अडिग रहे और उन वजहों या समय को पहचाने जब आपको इसकी सबसे ज्यादा है वो तलब लगती है, और उस समय आप खुद को व्यस्त रख सकते हैं या और कहीं आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। और डॉक्टर की सलाह पर आप निकोटिन गम्स या पैच का उपयोग करें जिससे कि शुरुआत में होने वाली जो बेचैनी है वो कम होने लग जाती है। और जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपको है वो तंबाकू खाने की, यानी कि जब तलब महसूस होती है, तो उस समय आपको
गहरी सांस लेनी चाहिए, पानी पिए, और सौंफ इलायची है वो भी आप विकल्प के तौर पर ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर व्यायाम करते हैं तो आप में तनाव भी कम होता है और आपके फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं। तो ऐसे कई उपाय हैं जिसको हम अपनाकर ये जो तंबाकू है उसकी लत को छोड़ सकते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चुप चुपके से, माफ कीजिएगा, फिल्म बंटी और बबली से। महालक्ष्मी अय्यर और सोनू निगम की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे फैशन की दौड़ से बचे। जी हाँ दोस्तों, फैशन की अंधी दौड़ आजकल हमें दिखाई देती है, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। ये जो फैशन की अंधी दौड़ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है वो चला जाता है। आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या हमारे आसपास लोगों को देखते हैं कि हर कोई है वो फैशन की ओर भागता है। तो इसका जो कह सकते हैं कि रीज़न क्या है या कारण क्या है, इसका कारण हम देखते हैं तो कई ऐसे जो कंपनियां हैं जो ऐसे आकर्षक जो विज्ञापन है वो दिखाती है, या कई ऐसे जो फेमस फेस होते हैं, चेहरे होते हैं, वो फैशन की ओर है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को है वो आकर्षित करते हैं। तो ये जो फैशन की अंधी दौड़ है,

इससे बचना आसान भी है और कठिन भी है। अगर हम कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपनाते हैं, तो हम ये जो फैशन की अंधी दौड़ है इससे बच सकते हैं और अपने पैसों को सही जगह लगा सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोगों की जो बचत करने की आदत है वो खत्म सी हो गई है, क्योंकि वो अपना जो पैसा है वो कहीं ना कहीं फैशन में है, वो जो कह सकते हैं कि लगा देते हैं, चाहे वो मोबाइल एक्सेसरीज हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे जो हम कपड़ों को लेकर है वो बात करते हैं, तो हर चीज में है जो फैशन का जो एक अंधी दौड़ है, जो एक फास्ट फैशन जिसे हम कह सकते हैं वो दौर है, वो अभी चल रहा है। तो इस दौर से हम कैसे है वो बच सकते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी जो पर्सनल स्टाइल यानी अपनी शैली है उसको पहचानना होगा कि हम ये देखिए कि ट्रेंड्स है वो बदलते रहते हैं, लेकिन आपका जो कंफर्ट है और आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके साथ हमेशा रहता है। ऐसे में आपको ऐसे कपड़े चुनने चाहिए जो आपके शरीर के आकार हो, आपकी पसंद के अनुकूल हो, ना कि सिर्फ इसलिए कि वे किसी सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पहनी है। तो सबसे पहले इसका जब आप चुनाव कर लेते हैं कि आपको क्या सूटेबल है, आपकी क्या पसंद है, आपकी पर्सनैलिटी पर क्या है वो सूट करता है, तो अगर आपने पहचान लिया तो आपका जो आधा काम है यानी कि जो फैशन की दौड़ है उससे आप आधे तो वहीं बच जाते हैं। दूसरी बात, आपको हमेशा नए कपड़े खरीदने के बजाय कुछ बेसिक और कुछ सदाबहार कपड़े हैं वो पहन सकते हैं, जैसे कुछ टॉप्स है, बॉटम्स है, कुछ आप कुछ ही जोड़ी जो जूते हैं उनका कलेक्शन बनाए, जिससे कि आसानी से एक दूसरे के साथ वो आपका मिक्स और मैच करे, ताकि आपका जो लुक है वो भी अलग अलग हो जाए और आपका जो कह सकते हैं कि स्टाइल है वो भी बदल जाता है। इससे आपको अनावश्यक जो खर्च है वो करना नहीं पड़ेगा। और आपको कपड़ों की जो गुणवत्ता है यानी कि क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जब सस्ते और जल्दी खराब होने वाले जो फास्ट फैशन और कपड़ों के पीछे भागते हैं वो ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है ना वो लंबे समय तक चलते हैं। तो इससे बेहतरीन ये है कि आप वहां निवेश करें जहां कपड़े की क्वालिटी अच्छी हो और लंबे समय के लिए चले, जिससे कि आपके पैसे भी बचते हैं और वो जो कपड़ा है जो आपके जो लुक है उस पर सूट भी करता हो। और ट्रेंड से एक कदम आपको पीछे रहना चाहिए, यानी कि हर हफ्ते फैशन बदलता रहता है, यदि आप हर नए ट्रेंड के पीछे भागेंगे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसके बजाय अच्छा है कि एवरग्रीन यानी कि सदाबहार डिजाइन, जैसे प्लेन शर्ट्स है, स्ट्रेट कट जीन्स है, बेसिक रंग जैसे काला, सफेद, नेवी ब्लू है, जो बेसिक कलर्स होते हैं उनको आप प्राथमिकता दें। और खरीदारी करने से पहले आप एक नियम है वो अपना लें, यानी कि जब भी आपको कोई नया कपड़ा बहुत पसंद आता है तो उसे तुरंत ना खरीदें, उसके लिए आप इंतजार करें कि मैं आज तुरंत नहीं खरीदूंगी, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद खरीदूंगी। अक्सर जो शुरुआती क्रेज होता है वो आपका इन 2-3 दिन में खत्म हो जाता है और आपको एहसास होता है कि आपको उस कपड़े की असल में जरूरत थी ही नहीं। तो ये जब आप अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो अनावश्यक खर्च है वो भी कंट्रोल में हो जाएगा और किसी भी कपड़े की जो असली कीमत है वो उसके टैग से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने उसे कितनी बार पहना है, यानी कि आप बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है वो कपड़ा लेके आ रहे हो, जो भी आप पहनते हो चाहे वो साड़ी हो या जीन्स टॉप जो भी हो उसको आप लेके आ रहे हो, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आप उसको कितनी बार पहनोगे, यानी कि आपकी कितनी बार वो यूज आने वाला है, तो उसको आप तय करके फिर ही आपको है वो खरीदना चाहिए। यदि आप 5,000 की जैकेट ले रहे हो, आप उसे 50 बार पहनते हो तो हर बार की लागत सिर्फ 100 रुपये आती है, यानी कि आपको ऐसा जो क्लोथ है या कपड़ा खरीदना चाहिए जो आपको रीयूज हो, बार बार यूज आए, ऐसा नहीं कि आपने 1 या 2 बार पहना और आपने उसको अंदर रख दिया, यानी कि आप ओकेजनली उसको पहन रहे हो, आप नॉर्मल में नहीं अगर उसको वियर कर पाते हो तो उस कपड़े की कीमत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और जो शॉपिंग ट्रिगर्स है उसको आपको पहचानना जरूरी है, यानी कि सोशल मीडिया डिटॉक्स, उन इन्फ्लुएंसर्स है जो फैशन ब्रांड्स है उनको अनफॉलो करें जो आपको लगातार नई चीजें खरीदने के लिए उकसाते हैं, जो आपको है वो डिटॉक्स कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको है वो अपनी जो अपने मूड है या अपने मूड खराब होने या बोर हो रहे हो तो ऐसे में आप मॉल जा रहे हो, ऑनलाइन ऐप स्क्रॉल कर रहे हो, तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। और आपको सिर्फ ये देखना है महीने में एक बार कि आपकी अलमारी है वो पूरी

तरह उसको आपको खाली करना है और ऐसे कपड़ों को सामने लाए जिन्हें आप भूल चुके हो, तो आप उनको पहन सकते हो। आपको नयापन लगेगा कि मैंने बहुत पहले इनको पहना था। तो ऐसे करने से जो आपकी जो बचत है वो बचत भी हो जाएगी और आपकी जो ये फैशन की जो अंधाधुंध दौड़ है उसमें जो आप भी है वो किसी को या दूसरों को देखकर जो भागते हैं इस दौड़ में, तो वो भी आपकी है वो कम हो जाएगी। और साथ ही साथ अभी हमने बात की, बचत भी होगी जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, हम अपनी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 सितंबर 2017 को की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी घरों का 100% विद्युतीकरण करना था। इस योजना के तहत 2.86 करोड़ से अधिक घरों में बिजली कनेक्शन सफलतापूर्वक पहुंचाए गए। और बात करते हैं इस योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ के बारे में, तो मुफ्त कनेक्शन यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए और इसकी जो पात्रता की पहचान है वो गरीब लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर की गई और जो परिवार SECC डेटा में शामिल नहीं थे उनसे 500 का मामूली शुल्क लिया गया और गैर गरीब परिवारों से लिया गया 500 का यह शुल्क बिजली के बिलों के माध्यम से 10 आसान मासिक किस्तों में वसूला गया। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन यानी कि गांवों में शिविर लगाकर सौभाग्य वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए मौके पर ही पंजीकरण और सत्यापन किया गया और इस योजना को पूरे देश में लागू करने की जिम्मेदारी REC लिमिटेड पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सौंपी गई थी और जिन सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में ग्रिड यानी कि तारों के जरिए बिजली पहुंचाना संभव नहीं था वहां स्टैंड अलोन सोलर फोटोवोल्टिक आधारित सिस्टम दिए गए और इन सोलर पैक्स यानी कि 200 से 300 WP के साथ 5 LED लाइट, 1 DC पंखा, 1 DC पावर प्लग और 5 साल के लिए मरम्मत की सुविधा भी दी गई। तो यह जो योजना है यह योजना भारत सरकार की बेहतरीन योजनाओं में से एक है जो कि ग्रामीण और शहरी जो गरीब परिवार हैं उनको मुफ्त बिजली है वो प्रदान करती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं अब आप सुनेंगे रेडियो रिपोर्ट जैसलमेर में आयोजित स्काउट की ग्रीष्मकालीन शिविर की, जिसमें वाचक स्वर है क्षितिज शंकर शर्मा और निर्देशन है रामजी लाल मीना।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज हम मौजूद हैं राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय जैसलमेर के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन अभिरुचि एवं कौशल विकास शिविर में। ये शिविर गांधी बाल मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधी कॉलोनी में दिनांक 17 मई से 20 जून तक आयोजित किया जा रहा है। गर्मी की छुट्टियों को रचनात्मक और उपयोगी बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में बच्चों छात्र छात्राओं एवं महिलाओं को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में

0: वेज टू बेस्ट पेंटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट योगा सिलाई पार्लर मेहंदी डांस संगीत स्पोकन इंग्लिश और स्काउटिंग जैसी गतिविधियों का प्रशिक्षण विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस अनोखे शिविर की खास बातें, प्रतिभागियों के अनुभव और इस शिविर को आयोजित करने के पीछे इसके आयोजकों की सोच के बारे में। तो श्रोताओं आइए सबसे पहले बात करते हैं स्काउट एंड गाइड की सीईओ कृतिका पारासर से। नमस्कार मैम, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। अपने इस शिविर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: नमस्कार सर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जयपुर राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार राजस्थान जिला मुख्यालय जैसलमेर के तत्वाधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन कौशल विकास अभिरुचि शिविर जो हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें स्काउट गाइड कौशल एवं विकास अभिरुचि शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों और युवाओं महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। और इस कैंप में प्रतिभागियों को ब्यूटिशियन, सिलाई, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, संगीत, नृत्य कला, क्राफ्ट, मेहंदी, पेंटिंग, क्राफ्ट मेकिंग जैसे व्यावसायिक कौशल विकास सिखाया जाता है। और इसमें साथ ही साथ कौशल के साथ आत्मरक्षा, योग, पर्यावरण जागरूकता और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और बच्चों को सुबह सुबह सभी को योग भी करवाया जाता है। इस कैंप के उद्देश्य से ये होता है कि छात्रों को छिपी हुई योग्यताओं, प्रतिभाओं को निखारना होता है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में समय का सदुपयोग के साथ साथ बच्चों को रचनात्मक उपयोग करना और उन्हें भावी जीवन में स्वरोजगार के लिए तैयार करना होता है। इस कैंप में जब बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, तो उनकी 80% उपस्थिति के आधार पर सभी को एक राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जो व्यवसाय में उनके रोजगार में उनका सहायक होता है।
0: जी मैम, मैम आपको क्या लगता है समाज में ऐसे शिविरों की क्या आवश्यकता है?
1: सर, गर्मियों में बच्चे महिलाएं सभी आजकल तो मोबाइल की आदत सी हो गई है, सबको लत लग गई है। इसको दूर करने के लिए हम लोग समर कैंप का आयोजन करते हैं, तो उसमें बच्चे मोबाइल से दूर होते हैं और खेल में और अपने रोजगार में और अपने अभिरुचि के अकॉर्डिंग, अपनी जो हॉबी है उनकी, उसके अकॉर्डिंग वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनको मंच मिलता है उनकी प्रतिभाओं को आगे निखारने के लिए।
0: बिल्कुल, तो अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया रही है इस शिविर को लेकर?
1: अभिभावक वास्तव में बहुत ही रुचि ले रहे हैं, बहुत अच्छा सक्सेसफुल चलता है ये कैंप। हर वर्ष आयोजित होता है और हर वर्ष वही बच्चे और उससे भी अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और उसके साथ साथ बच्चे अभिभावक भी बहुत इंटरेस्टेड हैं कि हमारे बच्चे जा रहे हैं मोबाइल से, एटलीस्ट दूर हो रहे हैं वो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। सर
0: जी मैम, जैसे बच्चे तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी आए हुए हैं, तो क्या कोई अभिभावक भी हैं जो इस शिविर में भाग ले रहे हैं? क्योंकि जैसा मैंने देखा यहाँ पे सिलाई का काम है या म्यूजिक है, तो कई सारे ऐसे अभिभावक भी हैं, महिलाएं हैं जिनको भी ऐसी रुचि है लेकिन शायद अपने समय में वो नहीं कर पाए, तो उनको भी एक मौका है कि वो अपनी रुचि के अनुसार कोर्स कर रहे, तो ऐसे कोई अभिभावक भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं?
1: बिल्कुल सर, यहाँ पे अभिभावक या महिलाएं हैं, 60 वर्ष तक की महिलाएं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हैं इस कैंप में। ये इससे विशेषतर ये होता है जो बच्चियां ड्रॉप आउट कर देती हैं बीच क्लास में, जैसे 9-10 पढ़ के छोड़ देती हैं या फिर पढ़ती नहीं है, उन बच्चियों के लिए बहुत अच्छा रोजगार के लिए है कि वो घर पे बैठ कर कुछ कर सकती हैं। जैसे कसीदाकारी हम लोग सिखा रहे हैं, सिलाई सिखा रहे हैं, तो वो उनको एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और बच्चे सीख रहे हैं, महिलाएं सीख रही हैं, तो उनके घर पे बैठे बैठे वो कुछ कर सकती हैं रोजगार के लिए, कौशल विकास के लिए, तो ये महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी है।
0: धन्यवाद। श्रोताओं अभी हमारे साथ हैं कवरा राम जी बामनिया जो इस शिविर के आयोजक हैं, तो आइए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं इस शिविर के बारे में। नमस्कार कवरा राम जी।
2: जी नमस्ते जी।
0: कवरा राम जी, ये शिविर आपने आयोजित किया है, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच थी उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए और शिविर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
2: ये शिविर है राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की तरफ से किया जा रहा है और हमारे सीईओ मैडम है जो कृतिका पारासर जी, उन्होंने स्काउट की तरफ से है तो उनकी पहल है। और इसमें जो बच्चे है इनकी जो हॉबीज है, अभिरुचि है, उनको समर ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां है अवकाश है, इसमें बच्चों का अवकाश का टाइम है उसका सदुपयोग हो, इसके लिए इसमें म्यूजिक है, डांस है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, सिलाई है, कुकिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, ड्राइंग है, मेहंदी है, कसीदाकारी है। ये बच्चों को छुट्टियों में बच्चे ये सारी चीजें सीखते हैं। बच्चे नहीं तो ज्यादातर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो मोबाइल की दुनिया से उनको बाहर ले जाकर ये सारी जो उनकी हॉबीज है उनमें बच्चे इंटरेस्ट लें और वो कार्य करें छुट्टियों में, ताकि उनकी छुट्टियों का सदुपयोग हो। इसलिए हमारे यहाँ पर कई सारे दक्ष प्रशिक्षक भी लगे हुए हैं जो सिखा रहे हैं, जैसे ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट है मांगीलाल जी सोनी है जो पेपर मेसी भी बनाना सिखा रहे हैं, ड्राइंग भी सिखा रहे हैं, रंग करना भी सिखा रहे हैं। विनोद जी वैष्णव है जो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं और साडिया मैडम है वो कसीदाकारी की लेती है। योगिता बनर्जी जो जसमेरपुरी में डांस क्लासेस लगाती है वो यहाँ पर भी डांस की क्लासेस ले रही है। और जयश्री है जो मेहंदी की क्लास ले रही है। हमारे एक मैडम है प्रीति जी, वो कुकिंग और मेहंदी की भी क्लास वो लेती है साथ। साथ में। योगा के लिए श्याम सिंह जी है जो योगा क्लास सुबह आते ही प्रार्थना होती है और उसके बाद में योगा करवाते हैं, और इसके बाद में हमारे एक म्यूजिक के भी सर घनश्याम जी जो म्यूजिक सिखाते हैं, राजाराम जी है और एक दीन दयाल जी प्रवीत है, वो इस शिविर में व्यवस्था और संचालन का काम भी मेरे साथ में देखते हैं।
0: तो शिविर में बच्चों क्या क्या लाभ हो जाते हैं?
2: बच्चों को यहाँ कई तरीके से लाभ, एक उनका समय का सदुपयोग हो जाता है, मोबाइल की दुनिया से वो बाहर निकलते हैं, काम करके सीखते हैं, अनुपयोगी चीजों से उपयोगी चीजें बनाना सीखते हैं, ड्राइंग सीखते हैं, उनकी अभिरुचियों का जो है यहाँ पर विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। योगा भी करते हैं, म्यूजिक भी सीखते हैं, डांस भी सीखते हैं, तो एक तरह से उनका पूरा सर्वांगीण विकास है बच्चे का समर वेकेशन के अंदर होता है। और पेरेंट्स भी बड़े जागरूक है, इंटरेस्टेड है, बच्चे अपने आप भी आ रहे हैं और पेरेंट्स भी बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवा रहे हैं।
0: बिल्कुल, बच्चे तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, क्या कुछ महिलाएं भी इस कैंप को अटेंड कर रही है?
2: बिल्कुल, महिलाएं जैसे सिलाई का काम है, इसमें महिलाएं हमारे निर्मला जी घर के वो सिलाई सिखा रहे हैं, तो कई बच्चियां हैं, बड़ी महिलाएं वो भी ये सीख रहे, कसीदाकारी भी सीख रही है, तो महिलाओं के लिए बड़े महिलाओं के लिए सिलाई है और कसीदाकारी भी है। और स्काउट के जो रोवर्स है, रेंजर्स है, बच्चे हैं, वो भी हमारे शिविर में सहयोग कर रहे हैं और मैं उनकी इंग्लिश की क्लास भी ले रहा हूँ ताकि वो एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, उनमें उनके लिए सहयोगी है।
0: बिल्कुल, बच्चों का उत्साह कैसा है इसमें?
2: बच्चे हैं बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं, हमारे यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, बच्चे अपना सुबह लंच बॉक्स साथ में लाते हैं, टिफिन वगैरह यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं उनके, बच्चों के झूलने वगैरह के लिए भी है, बैडमिंटन की भी व्यवस्था है, राजाराम जी है जो बैडमिंटन भी खिलाते हैं, सारी व्यवस्था है।
0: बिल्कुल, कौराम जी को क्या लगता है यहाँ पे बच्चों के लिए क्या चुनौतियाँ हैं को आप इस शिविर में दूर करने का प्रयास करते हैं?
2: कुछ बच्चे हैं जैसे जो पहले कभी मोबाइल की दुनिया से बाहर निकले नहीं है, खेल खेल रहे हैं, जब दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो उनका भी इंटरेस्ट है, कई बच्चे ऐसे जो शुरुआत में वैसे ही बैठे रहते थे लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा यहाँ पर योग करते हुए, योग गीत के साथ करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, प्रार्थना का कार्यक्रम, तो कई बच्चे ऐसे जो उन्होंने देखा तो करने लग गए, मोबाइल की दुनिया से वो बाहर आ गए, नहीं तो मोबाइल में ही रहते व्यस्त रहते हैं, मोबाइल पर ही खेल खेलते हैं, यहाँ पर फिसल पट्टी झूला है, बैडमिंटन है, कई सारे मेहंदी प्रतियोगिता वगैरह कई सारे प्रोग्राम है, बच्चे को जो अच्छा लगता है वो बच्चा इस यहाँ पर करके सीखता है।
0: बिल्कुल, अच्छा इस कार्यक्रम के बाद जैसे जब शिविर समाप्त होगा तो बच्चों को कोई प्रमाण पत्र वगैरह भी आपकी तरफ से दिया जाता है?
2: जी बिल्कुल, जो बच्चे मिनिमम कम से कम उसको दो चीज में हॉबी में अपना यहाँ पर नाम लिखवाना होता है, जैसे डांस है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, कोई भी दो, और ज्यादा क्लास में अगर वो रुचि रखता है तो इंटरेस्ट ले सकता है। क्लासें यहाँ से 7:30 से लेकर 11 बजे तक चलती रहती है और बच्चों को लास्ट में ये हम एक प्रमाण पत्र देंगे कि उन्होंने ये चीज सीखी है।
0: ठीक है, अच्छा एक मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे इतने बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों की सुरक्षा को लेके और अनुशासन को लेके क्या कोई इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं?
2: बिल्कुल, हमारे जो 10 प्रशिक्षक हैं यहाँ पर व्यवस्था का संचालन जो कर रहे हैं, गेट में स्काउट के बच्चे भी हमारे सहयोग में रहते हैं, तो ये बाउंड्री बंद है, बाहर गेट बंद रहता है, बच्चे इसके अंदर रहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हम बच्चों को जैसे पेरेंट्स आते हैं, ग्रुप एक बना हुआ है जिसमें मैसेज डालते हैं और पेरेंट्स उनके आते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं पहुंच पाते तो हम उन बच्चों को घर तक छोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे किसी बच्चों को अकेला हम छोड़ते नहीं, और इसके अंदर हमारे जो 10 प्रशिक्षक भी है और स्काउट वाले बच्चे भी बच्चों का पूरा ध्यान रखते रहते हैं।
0: जी बिल्कुल, जो बच्चों के अभिभावक है उनकी प्रतिक्रिया इस पूरे शिविर को लेकर?
2: बच्चों के जो अभिभावक है वो बड़े ही रुचि से बच्चों को छोड़ने आते हैं और उनका भी इंटरेस्ट है, वो भी चाहते हैं कि बच्चे हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छा सीख रहे हैं, कई सारी चीजें सीख रहे हैं, नहीं तो वो कहते हैं कि घर में बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं या कुछ करते हैं, यहाँ जो आते हैं काम देखते हैं तो अभिभावक भी बड़े खुश है, कई तो अभिभावक साथ में आ रहे हैं बच्चों को सीख रहे हैं, वो भी कई चीजें सीख रहे हैं।
0: तो ये शिविर आप कब से आयोजित कर रहे हैं, मतलब कितने वर्षों से कर रहे हैं और क्या अगले साल भी ये शिविर आप लगाएंगे यहाँ पे?
2: बिल्कुल, काफी वर्षों से चल रहा है, हर बार ग्रीष्म अवकाश में लगता है और आगे भी लगता रहेगा, बच्चे रुचि से आते हैं, हम पहले विज्ञापन वगैरह कर देते हैं और फिर बच्चे आते हैं और सीखते रहते हैं, बहुत अच्छा है, अभिभावक भी चाहते हैं भी कहीं कहीं समर कैंप लगे तो हम ऐसे बच्चों को वहाँ पर एडमिशन दिलवाए ताकि वो बच्चे भी ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग कर सके।
0: बिल्कुल कौराम जी, क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल के पीछे बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं और ये उनके लिए नुकसानदायक भी है, ऐसे समय में इस प्रकार के समर कैंप का जो आयोजन आपकी तरफ से किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय कदम है, बच्चों को काफी कुछ इसमें सीखने को मिलता है और थोड़ा सा वो मोबाइल से भी दूर रहते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा गतिविधि वो सीख सकें।
2: आप यहाँ हमारे शिविर में पधारे और हमारे इस शिविर का जो आपने देख लिए, आपकी पूरी टीम का शिविर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो ज्यादा बच्चे आएंगे, अभिभावक भी जुड़ेंगे तो हमारा कैंप और भी बढ़िया होगा, और कोई सुझाव होंगे तो हम इसमें और बेहतर करने का प्रयास करेंगे।
0: धन्यवाद कौराम राम जी। तो आइए श्रोताओं कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है?
3: तो मेरा नाम ध्रुविका है।
0: ध्रुविका, आप क्या सीखते हो यहाँ पे?
3: सर, यहाँ पे मैं मेहंदी और ड्राइंग सीखने आई।
0: क्या क्या सीखा अभी तक आपने यहाँ पे?
3: ड्राइंग में मैंने वैसे काफी सारी चीजें सीखी, लेकिन मेहंदी में मैं काफी सारी डिजाइन सीख रही हूँ, जैसे स्ट्रेट लाइंस बनाना, चेक्स बनाना और भी बहुत कुछ।
0: कैसा सिखाते हैं यहाँ पे सब?
3: जयश्री दीदी बहुत अच्छे से सिखाती है, वो बहुत हेल्पफुल है, सपोर्टिव है, हमारी काफी हेल्प करती है, और नहीं समझ आए तो एटलीस्ट 10 टाइम समझाती है।

0: एक पूरा हाथ भर सकती हूँ।
1: आपने जैसे ही मेहंदी और इसी को ही क्यों चुना, यहाँ पे और भी कार्यक्रम थे तो आपने मेहंदी को चुना, ड्राइंग को चुना है, तो इसमें आपका खास इंटरेस्ट था या और कोई कारण से आपने इसको चुना?
0: मेरे को सिलाई में इंटरेस्ट नहीं था और बाकी सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, और ड्राइंग मेरी हॉबी है और मेहंदी सीखने की मेरी काफी इच्छा थी।
1: अभी आपके टीचर से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका?
0: मेरा नाम जयश्री।
1: जयश्री, क्या सिखाते हैं बच्चों को आप?
0: मेहंदी के टीचर।
1: जयश्री, कितने बच्चे सीख रहे हैं अभी आपसे?
0: अभी 25-30 हैं।
1: आप कब से सिखा रही हैं यहाँ पे? पिछले साल भी आप इस कैंप में थी या इसी साल से?
0: पिछली बार भी मैं थी और इस साल भी मैं।
1: ठीक है जयश्री, धन्यवाद। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम वंशिका है।
1: अच्छा वंशिका, यहाँ पे आप कब से आ रहे हो?
2: मैं 18 मई से आ रही
1: हूँ। यहाँ पे क्या क्या सीख रहे हो आप?
2: मैं एम्ब्रॉयडरी सीख रही हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रही हूँ और स्पोकन इंग्लिश सीख रही हूँ।
1: अभी तक क्या क्या सीखा इंग्लिश में?
2: स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस सीखे जो कि हमें सर ने सिखाए हैं।
1: यहाँ आने से पहले आपको लगता था कि आपको इंग्लिश बोल पाओगे, और यहाँ आने के बाद आपको कितना इम्प्रूवमेंट लग रहा है अपने अंदर?
2: जितना अभी तक सर ने सिखाया है उसमें बहुत सारी चीजें मुझे न्यू भी लगी है, और थोड़ी बहुत बोलने तो आती है इंग्लिश, और बाकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह आर्ट में भी बहुत कुछ सीखा अभी तक।
1: यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? छुट्टियों का फायदा लग रहा है यहाँ पे आके?
2: हाँ, मैं पिछले साल भी इस कैंप में आई थी इसलिए अब मुझे ये मतलब अच्छा लगने लगा है।
1: तो आप अपने दोस्तों को भी यहाँ आने के लिए बोलोगे, अगले साल उनको भी यहाँ पे लाओगे?
2: हाँ, मैंने इस साल भी बोला था लेकिन वो कुछ कंडीशन से नहीं आ पाए।
1: और इंग्लिश के अलावा आपने जो कोर्स किए हैं उसमें क्या क्या सीखा है?
2: अभी तक एम्ब्रॉयडरी में भी सीखा है और आर्ट में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है और बर्ड्स बनाए हैं 3D, और एम्ब्रॉयडरी में बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी भी की है।
1: क्या नाम है आपका?
3: अनन्या चौहान।
1: क्या सीखते हो आप?
3: मैं ड्राइंग सीखती हूँ। ड्राइंग
1: कब से आ रहे हो आप यहाँ पे?
3: मैं 19 मई से।
1: अभी तक क्या क्या सीखा आपने?
3: मैंने डांस सीखा और ड्राइंग सीखी।
1: कौन कौन सा डांस सीखा, जैसे वेस्टर्न वाला या इंडियन वाला, कौन सा डांस फॉर्म आप सीख रहे हो यहाँ पे?
3: इंडियन डांस।
1: और डांस के अलावा क्या क्या सीखते हो?
3: ड्राइंग।
1: ड्राइंग में क्या क्या सीखा है?
3: सर बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे ड्राइंग में मतलब पहले तो इजी सिखाते हैं, उसके बाद में थोड़ा डिफिकल्ट सिखाते हैं।
1: तो आपको अच्छा लग रहा है इस शिविर में आके?
3: हाँ।
1: तो अगले साल आप फिर आओगे यहाँ पे?
3: हाँ।
1: क्या नाम है आपका?
4: सादिया बानो।
1: अच्छा सादिया जी, क्या सिखा रही है आप यहाँ पे?
4: मैं कसीदाकारी सिखा रही
1: हूँ। कब से सिखा रही है आप यहाँ पे?
4: 18 मई से।
1: मतलब जब से ये कैंप शुरू हुआ है तब से आप यहाँ पे सिखा रही है। कितने बच्चे अभी सीख रहे हैं आपसे टोटल?
4: 15-20 बच्चे।
1: तो कसीदा के बारे में आप बताइए, कैसे होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को भी आप थोड़ी जानकारी दीजिए।
4: जी, कसीदे में पहले बैक स्टिच होती है, रनिंग स्टिच होती है, फ्लावर में लेजी डेजी फ्लावर होते हैं, वुमेन रोज होते हैं जो जैसे अपने फैब्रिक पे भी बना सकते हैं, कुर्ती पे, शर्ट पे।
1: आपका क्या नाम है?
5: कांता दैया।
1: क्या सीख रहे हो आप यहाँ पे?
5: कसीदा।
1: ये आपने बनाया?
5: हाँ मैंने बनाया।
1: क्या चीज है ये?
5: ये कसीदा है, इससे ना पेड़ बनाया मैंने, फूल का।
1: अच्छा, फूलों का पेड़, बहुत ही बढ़िया आपने बनाया है। कब से आ रहे हो आप यहाँ पे और क्या क्या सीख लिया अभी तक आपने?
5: मैंने फूल वगैरह बहुत सारे सीखे हैं, लाइने वगैरह ऐसे बनाने के लिए, स्टेज वगैरह लाइने वगैरह सब बनाने सीखी है।
1: और कसीदे के अलावा और भी कुछ सीख रहे हैं आप इस शिविर में?
5: हाँ, मैं मेहंदी भी सीख रही हूँ साथ में।
1: जब यहाँ पे आए थे उससे पहले आपको ये दोनों आते थे या यहीं पे आके सीखे?
5: कसीदा तो मेरे को नहीं आती थी, मेहंदी थोड़ी बहुत आती थी, कसीदा भी मैं आके सीखी हूँ, सादिया दीदी सिखाती है हमें।
1: कैसा लग रहा है आपको ये शिविर?
5: बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सीख के, और ये कैंप भी बहुत अच्छा है।
1: छुट्टियों का भरपूर फायदा है आपको यहाँ पे मिल रहा है?
5: हाँ, मुझे बहुत फायदा मिल रहा है।
1: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
6: निर्मला नाम है मेरा।
1: निर्मला जी, आप शिविर में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं?
6: मैं यहाँ सब कुछ सिखाती हूँ, सलवार सूट, कोट, कुर्ती, ब्लाउज, सब तरीके सिखा रही हूँ, 17 तारीख से मैं यहाँ आ रही हूँ।
1: अच्छा, सिलाई से संबंधित जो काम होता है वो आप बच्चों को सिखाते हैं। कितने बच्चे अभी आपसे सीख रहे हैं
6: यहाँ पे? आ रहे हैं 15-20 बच्चे आ रहे हैं।
1: 15-20 बच्चे अभी आ रहे हैं, तो उसमें आप पूरी सिलाई, जैसे जो हम कपड़े सिलवाते हैं तो उसमें जो जो चीज की आवश्यकता रहती है सब सिखाते हैं?
6: हाँ सब, जैसे काज बटन, तुरपाई करना, जैसे सिलना है, कटिंग करना, अखबार पे, सब सिखाती हूँ।
1: तो आप यहाँ पे सिर्फ महिलाओं के सिलना सिखाती हैं या लड़कों के कपड़े बारे में भी?
6: नहीं सर, लेडीज सिखाती हूँ बस।
1: अच्छा, सिर्फ आप लेडीज कपड़े सिखाती हैं, ठीक है। अभी ये आपकी स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका?
7: मेरा नाम है सबा।
1: सबा, क्या सीख रहे हो आप यहाँ पे?
7: मैं इधर सिलाई सीख रही हूँ, जैसे पैंट कुर्ते वगैरह सीख रही हूँ मैं।
1: कितने दिन से सीख रहे हो आप यहाँ पे?
7: मैं 18 तारीख से आ रही हूँ, सीख रही हूँ।
1: अभी तक क्या क्या सीख लिया?
7: मैंने कुर्ती बनाना सीख लिया, पैंट कुर्ता अभी कटा हुआ है, बना रही हूँ।
1: सबा, आपने ये सिलाई का ही क्यों चुना, और भी जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं तो इसी को ही क्यों चुना?
7: मेरे को सिलाई में इंटरेस्ट है।
1: किसी और ट्रेड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे या सिर्फ सिलाई ही सीख रहे हैं?
7: नहीं, मैं कर रही हूँ।

0: तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे कैंप अटेंड करके?
1: मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।
0: आप अपने दोस्तों को भी अगली बार यहाँ पे लाएंगे?
1: हाँ, मैं लेके आऊंगी।
0: आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम परी विश्वा है।
0: क्या सीख रहे हो आप यहाँ पे?
2: मैं यहाँ पे संगीत और इंग्लिश स्पोकन सीख रही हूँ।
0: कब से आ रहे हो यहाँ पे आप?
2: मैं यहाँ पर हो गए 15-20 दिन हो गए मुझे।
0: 15-20 दिन हो गए। अभी तक आपने क्या क्या सीखा?
2: हमको म्यूजिक में सर सिखाते हैं कैसे गाना है, वो सब कुछ सिखाते हैं, और इंग्लिश का भी सर अच्छे से सिखा रहे हैं हमको। बेसिक से स्टार्ट किया था।
0: जो आप सीख रहे हो तो उसमें आप सिर्फ गाना सीख रहे हैं या उसके साथ जैसे कोई म्यूजिक यंत्र वगैरह जो होते हैं वो भी आप बजाना सीख रहे हैं?
2: हाँ सर, गाना भी सिखा रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो भी बजाना सिखा रहे हैं हमको। 2-3 चीजें सिखाई है, गिटार हो गया, हारमोनियम वगैरह।
0: तो कैसा लग रहा है आपको इस शिविर में आके?
2: यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर्स वगैरह काफी अच्छे हैं और सब अच्छे से सिखाते हैं।
0: शिविर में आप इस साल ही आए हैं या पिछले साल भी आपने अटेंड किया था?
2: मैं इस साल ही आई हूँ, इससे पहले नहीं आई।
0: तो आपको इस शिविर के बारे में कहाँ से पता चला, मतलब कैसे जानकारी हुई इसके बारे में कि यहाँ पे ऐसा कोई शिविर चल रहा है?
2: हम स्काउट की तरफ से आए, उसकी वजह से हमको पता चला। मैं स्काउट में इस साल ज्वाइन हुई थी तो मैम ने बताया कि यहाँ पर कैंप लगता है और हमारे यहाँ पे सर्विस भी है और हम यहाँ सीखने भी आते हैं।
0: जो आप सीख रहे हैं, जैसे आपने जो कुछ भी सीखा, तो आप पहले से इसमें इंटरेस्ट था कि आपको यही सीखना है या यहाँ पे आपको गाइड किया आप ये सीखो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, या आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने खुद इसमें एडमिशन लिया?
2: इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मेरे पापा वगैरह भी संगीत वगैरह में थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया था संगीत वगैरह का।
0: तो आपके कोई दोस्त सहेलियाँ वगैरह भी यहाँ पे आती हैं?
2: हाँ, हमारी पूरी टीम है स्काउट की, वो सब फ्रेंड्स वगैरह है, सारे साथ में आते हैं।
0: तो अगली बार आप और भी लोगों को इस कैंप के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे?
2: हाँ बिल्कुल, और भी मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगी।
0: आइए हम बात करते हैं घनश्याम जी से, जो यहाँ पर बच्चों को म्यूजिक की ट्रेनिंग देते हैं। नमस्कार घनश्याम जी।
3: नमस्कार सर।
0: बताइए आप यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं बच्चों को?
3: मैं अभी बेसिकली म्यूजिक की क्लास दे रहा हूँ, और वैसे ये कैंप स्काउट के द्वारा राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में शुरू किया गया है। ग्रीष्मकालीन शिविर है और इसमें बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, जैसे म्यूजिक है, डांस है, स्पोकन इंग्लिश है, योगा है, बैडमिंटन है, और कशीदाकारी, सिलाई है, बहुत सारी एक्टिविटी बच्चों के लिए चल रही है। और मैं म्यूजिक से जुड़ा हूँ इसलिए मैं म्यूजिक क्लास ले रहा हूँ, और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम है, गिटार है, ढोलक है, सिंगिंग है, ये सब बच्चों को सिखा रहे हैं।
0: लगभग कितने बच्चे अभी सीख रहे हैं यहाँ पे?
3: मेरे पास मेरी क्लास में लगभग 20 बच्चे हैं जो सीख रहे हैं
0: आपकी क्लास में, और इसके अलावा कैंप में तो काफी सारे बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ही खुश और उत्साह से भरे हुए बच्चे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, सब अलग अलग पेट में ये सीख रहे हैं।
3: कैंप में लगभग 100 से ऊपर बच्चे हैं, अलग अलग क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
0: ठीक है घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। आपका क्या नाम है?
4: मेरा नाम कासम लाल।
0: कासम लाल जी, आप यहाँ क्या सीख रहे हैं?
4: सर हम सिंगिंग सीख रहे हैं। सर यहाँ
0: सिंगिंग सीख रहे हैं। सिंगिंग पहले आती थी या यहाँ आने के बाद ही आपने शुरू की है?
4: नहीं सर, यहाँ आने के बाद ही सर। सर अभी 15 दिन हुए सर, समथिंग 15 दिन में बहुत अच्छे सीख रहे हैं सर, अच्छे सर सिखा रहे हैं अच्छे से।
0: ठीक है, तो अभी आपको लगता है कि यहाँ पे जो आपका छुट्टियों का पूरा उपयोग हो रहा है?
4: जी सर, बहुत अच्छे से, क्योंकि छुट्टियाँ हो जाती है सर, घर पे वैसे ही बैठे रहते हैं, तो यहाँ कैंप लगते हैं तो इसमें सर हम सिंगिंग वगैरह हो गई, जैसे डांस वगैरह सर सब सीखते हैं हम यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है सर यहाँ। सर यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश क्लास भी होती है जो सर लेते हैं हमारे, और मैडम भी है जो डांस सिखाते हैं, कशीदाकारी भी है, और मेहंदी भी है जो मैडम हमारे सिखाते हैं बहुत अच्छे से।
0: आप सिर्फ संगीत ही सीख रहे हैं?
4: स्पोकन इंग्लिश है सर हमारे, स्पोकन इंग्लिश और संगीत का।
0: तो उसमें आपने क्या क्या सीखा अभी तक?
4: अभी टेंस सीख रहे सर, टेंस।
0: टेंस चल रहा है। तो इससे पहले आपने कोई कोर्स किया इंग्लिश का या यहीं पे आके किया?
4: पहले सर 12th में सर जो इंग्लिश होती थी वही,
0: उसमें आपको बोलना नहीं आता था, यहाँ पे आप बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कितना इम्प्रूवमेंट आपको अभी तक हुआ है?
4: हुआ है सर 10-11 दिन हुए, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है सर हमारे।
0: तो म्यूजिक जो आप ये गाना सीख रहे हैं, तो इसमें आप कोई वाद्य यंत्र भी बजाते हैं वो भी सीख रहे हैं या सिर्फ गाना ही सीख रहे हैं?
4: सर गिटार, सर गिटार सीख रहे हैं सर।
0: तो अच्छा सिखाते हैं सर। तो आप अपने दोस्तों को भी बोलेंगे यहाँ पे आने के लिए?
4: जी सर।
0: श्रोताओं, बच्चों से तो हमने बातचीत करी है, अभी हमारे साथ एक अभिभावक भी हैं, आइए इनसे भी इस शिविर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
5: नमस्कार, मधु।
0: मधु जी, तो आपके बच्चे इस शिविर में पार्ट लिए हैं?
5: हाँ, मेरी 2 लड़कियां हैं और एक भांजा है, तीनों आते हैं बच्चे मेरे यहाँ सीखने के लिए। मेरी बड़ी बच्ची है वो आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूजिक सीख रही है, और छोटी वाली बच्ची डांस और म्यूजिक सॉन्ग, और भांजा है वो भी म्यूजिक ड्राइंग ये सीख रहे हैं यहाँ पे, और सारे टीचर्स बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, बच्चे बहुत मन लगा के इंटरेस्ट से सीख रहे हैं। सुबह योग होता है तो बच्चे और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उससे शाम तक वो मतलब जिस टाइम तक यहाँ रहते हैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ सीखते हैं ये लोग, और टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इनको सिखाने के लिए।
0: तो आप खुद भी कुछ सीख रही हैं यहाँ पे या सिर्फ बच्चों को ही अपने यहाँ पे एडमिशन दिलवाया?
5: मैंने बच्चों को दिलाया, और उसके बाद जब मैंने यहाँ का माहौल देखा कि टीचर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना अच्छा सिखा रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे सीखने लग गई कसीदा।
0: अच्छा, तो आप कसीदा सीख रही हैं, तो उसमें आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे?
5: मैंने कुछ स्टिचेस सीखे, स्ट्रेट नॉट, फ्रेंच नॉट, और कुछ फ्लावर्स सीखे हैं उसके अंदर। अभी मेरे को थोड़ा ही टाइम हुआ है, 2-3 दिन ही हुए हैं आते हुए।
0: अच्छा अच्छा, तो दो तीन दिन में भी आपने काफी कुछ सीख लिया, इसका मतलब यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। तो आप अपने आसपास के जो भी दूसरे अभिभावक हैं उनको भी आप ये अगले वर्ष या इसी साल बच्चों को एडमिशन देने के लिए बोलेंगे?
5: बिल्कुल बोलूंगी, मैंने बोला भी है, मेरे कहने से मेरे दो तीन बच्चे आए भी है और जान पहचान वाले वो यहाँ आए, उनको भी सीख के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे।
0: बिल्कुल मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय जैसलमेर द्वारा आयोजित ये ग्रीष्मकालीन अभिरुचि एवं कौशल विकास शिविर बच्चों और युवाओं के व्यक्तित्व विकास की दिशा में एक सराहनीय पहल है। इस शिविर का उद्देश्य गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों और महिलाओं को नई नई कलाओं एवं कौशलों से जोड़ना है, ताकि वे अपने समय का सदुपयोग करते हुए आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता की ओर बढ़ सके। शिविर में प्रतिभागियों को कला, संगीत, योग, स्पोकन इंग्लिश, सिलाई, मेहंदी, डांस और स्काउटिंग जैसी उपयोगी गतिविधियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही वेस्ट टू बेस्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में चल रहे इस शिविर में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। शिविर पूर्ण होने पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनका उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो श्रोताओं, ये था राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय जैसलमेर द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि एवं कौशल विकास शिविर का विशेष परिचय। इस प्रकार के शिविर न केवल बच्चों की प्रतिभा को निखारते हैं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वासी, रचनात्मक और अनुशासित बनने की प्रेरणा भी देते हैं। हम आशा करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे और युवा ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों से जुड़कर अपने भविष्य को नई दिशा देंगे। नमस्कार।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट क्षितिज शंकर शर्मा के साथ श्री रामजी लाल मीणा के निर्देशन में। श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को जानने का स्रोत पर्यटन। जी हाँ दोस्तों, पर्यटन संस्कृति, इतिहास और परंपराओं, इनको जानने का एक जीवंत और सबसे बेहतरीन स्रोत है। जब हम किसी नए स्थान की यात्रा करते हैं तो हम केवल घूमते नहीं है, बल्कि वहाँ के अतीत, वहाँ की जीवन शैली, इन सब को हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, ये हमें वहाँ के इतिहास, संस्कृति को समझने में मदद करते हैं। तो श्रोताओं, ये जो पर्यटन है, पर्यटन से जैसे हम कहीं अगर किसी स्थान पर जा रहे हैं, वहाँ हमें एक जीवंत इतिहास है वो देखने को मिलता है। चाहे हम अपने जैसलमेर की बात करते हैं, तो हम अगर किले की तरफ देखते हैं जैसलमेर की, तो इस सोनार दुर्ग की तरफ अगर हम देखते हैं, तो हमें मन में एक विचार आता है कि इसको किसने बनाया है, कब बनाया है और कैसे है वो कारीगरों ने इसको अपनी कला के साथ है वो बनाया होगा। तो और राजा हो कैसे रहे होंगे, वहाँ की उस समय की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी और उनका रहन सहन क्या होगा, उनका खान पान क्या होगा। तो ऐसे इतने सारे जो विचार है, वो विचार सिर्फ हमें एक है वो हमारे जो फोर्ट को देखकर, एक किले को देखकर आते हैं। तो ऐसे में जब हम कहीं पर भी जाते हैं, जो पर्यटन स्थल को हम देखते हैं, तो हमारे मन में है वो ऐसे सवाल है वो उठते हैं। तो ये जो पर्यटन है, ये पर्यटन ही हमें जीवंत इतिहास से है वो रूबरू करवाता है। और अक्सर हम देखते हैं स्मारकों पर लिखे लेख और नक्काशी उस काल की भाषा, लिपि और सामाजिक स्थिति की जानकारी है वो हमें देती है। और साथ ही साथ जो किसी क्षेत्र के जो उत्सव है, जैसे राजस्थान का पुष्कर मेला है, असम का बिहू है, तो अगर हम वहाँ जाते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो हमें वहाँ के रीति रिवाज है वो करीब से देखने को मिलते हैं। और स्थानीय नृत्य है, संगीत है, नाटक जैसे कथकली है, यक्षगान है, तो ये सदियों पुरानी जो कहानियाँ हैं और परंपराएं हैं उनको जीवंत रखते हैं। और सिर्फ हमें इन नृत्य को देखकर, इस लोक कला को देखकर हम उस समय की है वो जो पुरानी कह सकते हैं इतिहास है या कहानियां हैं या परंपराएं हैं, उनको हम है वो उससे रूबरू होते हैं। और अक्सर हम अगर हम किसी पर्यटन स्थल पर जो म्यूजियम है यानी कि संग्रहालय में जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ के जो प्राचीन सिक्के हैं, हथियार हैं, बर्तन हैं या उस समय की जो पोशाकें हैं, उससे हम मानव विकास और विभिन्न जो कालखंड है उनके इतिहास को प्रामाणिक रूप से है वो देख सकते हैं कि हमारे सामने प्रमाण होते हैं कि उस समय में ये रहन सहन था, ये पोशाक है पहनी जाती थी, या जो प्राचीन काल में जो सिक्के थे वो इस प्रकार के सिक्के हैं वो लेन देन में उपयोग में आते थे। तो इस प्रकार से किसी जगह का व्यंजन, वहाँ के भूगोल, जलवायु, इतिहास, इन सबसे है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और पारंपरिक जो कपड़े होते हैं, आभूषण होते हैं, वहाँ की बुनाई कला है, सांस्कृतिक पहचान है, उनको प्रकट करते हैं। तो ऐसे में जब हम किसी भी पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो वो पर्यटन स्थल हमें उस स्थान की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को जानने में है वो मदद करता है। तो अभी जो गर्मी की छुट्टियां भी चल रही है तो हम सभी है या सभी लोग है वो कहीं ना कहीं है वो घूमने जा रहे हैं या गए भी होंगे। तो हम अगर सिर्फ घूमने जा रहे हैं तो हमें उस स्थान विशेष के बारे में जागरूकता होनी चाहिए कि वहाँ का जो इतिहास क्या है या वहाँ का रहन सहन क्या है, कैसे लोग है वो रहते हैं, क्या उनका खान पान है। तो ऐसी जो जानकारी है वो अगर हम है या हमारे साथ जो बच्चे चल रहे हैं जब वो जानते हैं तो उनके अंदर जो जागरूकता है वो बढ़ती है और उस स्थान विशेष की जो जानकारी है वो भी उनको मिलती है।

कहीं रंगिया चल आहा, कहीं होठ गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आँख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं नर्म निगाहें।

वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है।

0: जो सबसे अलग है,
1: वो लड़की
0: जो सबसे अलग है,
1: वो लड़की
0: जो सबसे अलग है,
1: वो लड़की
0: जो सबसे अलग है।

वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बादशाह से अभिजीत की आवाज में ये प्यारा संगीत। श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अपनी दोस्त अर्चना को दीजिए इजाजत।

युवा साथी अभी युवाणी कार्यक्रम सुन रही थी। यह है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारी आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

सबसे पहले एक नजर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। रात 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात 9 बजे न्यूज एट 9। 9:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम अनुगूंज। रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे संगीत का कार्यक्रम रविवासरीय संगीत सभा। समाचारों की कड़ी में मुख्य समाचार एक बार फिर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में 11 बजे, अंग्रेजी में मुख्य समाचार 11:05 पर।

अब एक नजर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 6:30 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। 6:45 पर आप फिर एक बार सुनेंगे प्रादेशिक समाचार राजस्थानी में।

आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 6:05 पर जी हाँ श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस गान पाठ। 6:15 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अनूप जलोटा और अनुराधा पौड़वाल के स्वर में गाई भक्ति रचनाएं। शाम 7 बजे हमारे श्रोता सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

7:30 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। रात 8 बजे आप हमारे स्टूडियो से सुन सकते हैं कार्यक्रम विकास यात्रा। 8:30 बजे होगा जय जवानों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय जवान। 9:15 बजे एक बार फिर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह है रेडियो गोल्डन सिटी FM बैंड 101.8 MHz पर।

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्री राम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले।

धनुमक हित भूमि बनाए, अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल बेदिका रुचिर सवार।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण के स्वर में गाई भक्ति रचना।

वंदना कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में आपने सुनी अनुराधा पौड़वाल के स्वर में गाई भक्ति रचना। यह है रेडियो गोल्डन सिटी FM बैंड 101.8 MHz पर।

0: अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: कौन पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से।
3: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुईं और IPL क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों के प्रयासों को पहचानें और उनकी सराहना करें जो कुछ नया कर सबको प्रेरणा देते हैं। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़ने का आग्रह किया।
1: साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
0: मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने को कहा। स्वदेशी पेय पदार्थों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने इन्हें अपनाने की अपील की।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने हाल ही की अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार द्वारा चोल काल की प्राचीनतम पट्टिकाओं को भारत को सौंपने पर इसे गर्व का क्षण बताया। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं के उत्साह का जिक्र करते हुए देश के युवा साथियों से इस विधा में पारंगत होने की अपील की। गर्मियों की छुट्टियों में एस्ट्रोनॉमी से जुड़े विषय पर क्लब बनाकर नया सीखने का सुझाव दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा करते हुए देश के विभिन्न अंचलों में हो रहे नवाचारों, राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियों तथा गांव कस्बों की बातों के साथ गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रेरणादायी कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने रांची में संपन्न राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के रिकॉर्ड धारी विजेताओं को बधाई देते हुए इसे देश के खेल भविष्य के लिए उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर राज्य भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर युवाओं के साथ कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ें

0: में उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को समय पर सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से करेंगे। अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। श्री सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों और अन्य जन प्रतिनिधियों से भी इस पहल में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडको की भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। रिडको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश ओला ने बताया कि प्रस्तावित नीति में सामान्यतः भूखंडों का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाएगा। वहीं फ्लैटेड फैक्ट्री, प्लग एंड प्ले, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए 33 से 66 वर्ष तक की लीज का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा नई नीति में फ्लैटेड फैक्ट्री, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित आवासीय तथा सामाजिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सुविधाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित नीति में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में रिडको द्वारा विकसित औद्योगिक टाउनशिप में अब भूखंड आवंटन, प्रबंधन तथा निस्तारण हो सकेगा। NICDC द्वारा जारी मॉडल फ्रेमवर्क पर आधारित ये नीति राजस्थान की स्थानीय आवश्यकताओं और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एक ऐसे पहल की शुरुआत करना है जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री टिफनी ट्रंप आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर की यात्रा पर रहीं। वे अपने पति माइकल बोलोस के साथ विशेष विमान से जैसलमेर पहुंची। जैसलमेर पहुंचने पर उनका पारंपरिक लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। टिफनी ट्रंप की जैसलमेर यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ विशेष सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहीं। टिफनी के जैसलमेर आगमन से इस पर्यटन नगरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रसिद्ध होने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। जिला मुख्यालयों पर साइकिल रैली निकालकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया गया। जालौर में निकाली गई रैली में बड़ी संख्याओं में युवाओं ने हिस्सा लिया। चूरू के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस मौके पर नाथो तालाब पर कार्यक्रम रख जल पूजन किया गया। सरहदी जिले जैसलमेर में अभियान के तहत भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को शरबत और नींबू पानी पिलाया गया। बालोतरा के जसोल में प्रभात फेरी निकालकर जागरूकता बढ़ाई गई। इसी तरह पाली के तखतगढ़ में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गंगा जल का पूजन कर आमजन को शपथ दिलाई। करौली के पांचना बांध पर आयोजित कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों के साथ आमजन ने वृक्षारोपण और जल पूजन किया। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां मुख्यमंत्री कार्यालय से पहुंची टीम ने अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
1: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान, जल शपथ, वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को PCD, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, MPT रिचार्ज साफ तथा CCT कार्यों का अवलोकन कराया गया। वही अभियान

0: तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
1: जोधपुर की बड़ली ग्राम पंचायत में संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जिलाधिकारियों के साथ बड़ली भैरूजी तालाब पर श्रमदान कर आम जन से सहभागिता निभाने का आह्वान किया। प्रदेश के कई भागों में बीते दो दिनों से बना हुआ आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। हालांकि कुछ जगहों पर आज भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में तेज हवाएं चलने और विभिन्न स्थानों पर बरसात के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर तथा डीडवाना, कुचामन के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, अजमेर और राजधानी जयपुर के लिए येलो अलर्ट बताया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के 19वें सीजन का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में दोनों टीमें चौथी बार एक दूसरे के सामने होंगी। पहले तीन मैचों में आरसीबी ने 2 में और गुजरात टाइटंस ने 1 में जीत हासिल की थी। दोनों ही टीमों ने लीग मुकाबलों में 9 जीत दर्ज की थी और समान अंक हासिल किए थे। गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स ने सीजन में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुई। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। झालावाड़ जिले के 3 पुलिस अधिकारियों को डीजीपी डेस्क से सम्मानित किया गया है। एसपी अमित कुमार, डीएसपी प्रेम कुमार और डीएसपी हर्षराज खरेड़ा को ये सम्मान दिया गया है। इन्हें विभिन्न अभियानों, जांच और कानून व्यवस्था में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। एसपी अमित कुमार को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए दूसरी बार डीजीपी डेस्क मिली है। इससे पहले प्रतापगढ़ जिले में एसपी रहते हुए भी उन्हें ये सम्मान मिल चुका है। वहीं हर्ष राज खरेड़ा को ऑपरेशन क्लीन राइड और प्रेम कुमार को ऑपरेशन शटर डाउन में प्रभावी रूप से काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर ने विभिन्न उपखंडों के राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि परिवादियों को त्वरित लाभ मिले। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जिले में कोई भी पुराना राजस्व मामला अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण द्वारा एक ही दिन में 237 मामलों की सुनवाई कर 175 का निस्तारण किए जाने की भी सराहना की। झालावाड़ पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विशेष जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके तहत झालावाड़ में मामा भांजा चौराहे से गावड़ी तालाब और भवानी मंडी रोड तक के मार्ग को आदर्श ट्रैफिक जोन घोषित किया गया है। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस मार्ग पर यातायात नियमों की 100% पालना सुनिश्चित की जाएगी। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले तथा ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करना है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा कैंपस प्लेसमेंट शिविर लगाया गया। जिला रोजगार अधिकारी अंकुर शर्मा ने बताया कि ये शिविर मिनी सचिवालय में लगाया गया। इसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान फील्ड ऑफिसर, सेल्स प्रतिनिधि, मशीन ऑपरेटर और सुरक्षा गार्ड के पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लिए गए। झालावाड़ में पिछले दिनों राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता रखी गई। इसमें उदयपुर के व्यांश भटनागर ने ओपन वर्ग का खिताब जीता, वहीं बालिका वर्ग में टीना ब्याडवाल चैंपियन बनी। जिला शतरंज संघ के सचिव महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि व्यांश ने सभी 6 मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया। झालावाड़ में जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत विकास परिषद की पहल पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम में महिलाओं को 3 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। जिले में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ है। 29 मई से शुरू हुआ यह अभियान 29 जून तक चलेगा। इस दौरान 9 महीने से 5 साल तक के लगभग 1,48,000 से अधिक बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। विटामिन ए की खुराक से रतौंधी और अंधता जैसी बीमारियों से बचाव होता है। इससे दस्त और निमोनिया के घातक प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। CMHO डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि ये खुराक आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों पर उपलब्ध करवाई गई है। झालावाड़ पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत ये गिरफ्तारी की गई। आरोपी साइबर अपराधों के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इनके बैंक खातों पर साइबर धोखाधड़ी की 36 शिकायतें दर्ज थी। जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों की संपत्ति पर पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई की। इसी कड़ी में पुलिस और प्रशासन की ओर से नशा माफिया से जुड़े अपराधियों पर एक्शन लिया गया। उनके द्वारा बनाई गई दुकानों और मकानों तथा अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके साथ ही झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रादेशिक समाचार।

0: पहले आज री खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों सू चौखे काम सू जुड़ने और कुछ नयो सीखने रो हेलो करो। आकाशवाणी रे मन की बात कार्यक्रम में आपका विचार साझा करया। उर्वरकों रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने सलाह देवन खातिर काले सू देश भर माए खेत बचाओ अभियान की शुरुआत वैली। प्रदेश भर माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी। और आईपीएल क्रिकेट रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स बीच वैली खिताबी भिड़ंत। समाचारों के साथ मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपील करी है कि वह ऐड़े लोगों रे प्रयासा ने पहचाने और वारी सराहना करे जगह कुछ नो कर सबने प्रेरणा देवे है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लोगों से खुद भी किनी चोखा काम से जुड़ने की अर्ज करी।
1: साथियों, भारत के हर गाँव में हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
0: मन की बात कार्यक्रम री 134वीं कड़ी माए प्रधानमंत्री लोगों सू गर्मी रा मौसम माए सावचेती बरतने और न्यारा न्यारा सरकारी महकमा कानी सू जारी गाइडलाइन री पालना करने रो कयो। देसी पेय पदार्थों रो जिक्र करता थका श्री मोदी आने अपनाने री अपील करी।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री हाल ही री आपरी नीदरलैंड यात्रा रे चालता वठेरी सरकार कानी सू चोल काल री प्राचीनतम पट्टिकावां ने भारत ने सौंपने

0: है इन्हें घणो गर्व रो बकत बतायो पण खगोल विज्ञान रे खेतर माए युवा माने उछास रो जिक्र करता थका देश रे युवा साथियां सु इन विद्या माए पारंगत होने री अरज करी गर्मिया री छुट्टियां माए एस्ट्रोनॉमी सु जुड़िया विषय माथे क्लब बना नुवो सीखने रो सुझाव दियो इन सु पहल्या प्रधानमंत्री आपरा विचार साझा करता थका देश रा न्यारा न्यारा आंचला माए हुवेरिया नवाचारा राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियां और गांव कस्बारी बातां रे साथ है गंगा डॉल्फिन ने बचावा खातिर प्रेरणादायी कामारो उल्लेख करियो वणा रांची माए संपन्न राष्ट्रीय एथलेटिक्स होड़ा रा रिकॉर्ड धारी विजेतावां ने बधाई देवता थका इन्हें देश रा खेल भविष्य खातिर उपलब्धि बतायो राज्य भर माए प्रधानमंत्री रे मन की बात कार्यक्रम ने सुनन ने लेर खासो उछास नजर आयो प्रदेश भाजपा री कानीसू कार्यक्रम रे सजीव प्रसारण री व्यवस्था करी जी पार्टी मुख्यालय माथे राखीजा कार्यक्रम माए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर समेत पदाधिकारी भीड़ाव्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपरे निवास माथे युवा वारे साथे इन कार्यक्रम ने सुन्यो इन मौके माथे मुख्यमंत्री कयो कि राष्ट्र निर्माण माए युवा वारी भूमिका खास है इन सारू वे सामाजिक सरोकार रे कामासू जुड़े और नवाचार अपनार आपरे कौशल माए बढ़ोतरी करे पणा कयो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा विचार युवा माने सकारात्मक बदलाव और विकसित भारत रे निर्माण खातिर प्रेरित करे है
1: चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं देश के हित में कर रहे हैं मेरे युवा साथियों देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं
0: खेती माए उर्वरका रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने बकत माथे सलाह देने रे खातिर कालेसू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली 30 जून ताई चालन वाला ई अभियान रो शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश रा रायसेन जिला सु करेला अभियान रे चालता पंचायत स्तर माथे सक्रिय भागीदारी और योजना वारो लाभ सीधे गांवा ताई पहुंचायो जावनो पक्को करियो जावेला कृषि मंत्री सगला राज्यां रा मुख्यमंत्रियां सु इन अभियान माए वारी भागीदारी री खातिर बात करी है श्री सिंह केंद्रीय मंत्रियां और दूजा जनप्रतिनिधियां सु भी इन पहल माए बेड़ा होने री अरज करी है माने कृषि विज्ञान केंद्र ICAR संस्थाना कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अहलकारा साथ है वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी रे साथ है इन अभियान ने आगे बधावन री अरज करी है राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी रिडकोरी भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति ने सरकार मंजूरी दे दी है रिडकोरा मुख्य कार्यकारी अहलकार सुरेश ओला बतायो कि प्रस्तावित नीति माए सामान्यतः भूखंडारो आवंटन 99 वर्ष की लीज माते करियो जावेला पठीने फ्लैटेड फैक्ट्री प्लग एंड प्ले वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक जड़ा विशेष खेतरा रे खातिर 33-66 वर्ष ताई रो एंड लीज रो प्रावधान राख्यो गयो है जल शक्ति मंत्रालय काले नवी दिल्ली माए जल अनुसंधान और विकास माथे राष्ट्रीय कार्यशाला रो आयोजन करेला इन रो लक्ष्य भारत रे जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ने मजबूत करनो है मंत्रालय कयो है कि इन कार्यक्रम रो खास आकर्षण एक एड़ी पहल री शुरुआत करनो है जिन रो लक्ष्य जल संसाधन प्रबंधन पेयजल और जलवायु परिवर्तन सु निपटनो है कार्यक्रम रे चालता जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रे बीच जल संसाधन आकलन निगरानी और प्रबंधन खातिर एक समझौता ज्ञापन माथे दस्तखत कराया जावन री आस है कार्यशाला रो उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेला ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रहा हो प्रदेश माए चलाया जा रिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत आज भी कई गतिविधियां राखी जी जिला मुख्यालय माते साइकिल रैली निकाल रहे लोगों ने पानी बचावन रो संदेश दियो गयो जालोर माए निकाली जी रैली माए बड़ी तादाद माए युवा मा हिस्सो लियो चुरूरा पुलिस लाइन मैदान माए राखी जा श्रम दान कार्यक्रम माए लोगा बढ़ चढ़ भागीदारी निभाई इन मौके माते नाथो तालाब माते कार्यक्रम राखर जल पूजन करो गयो सरहदी जिला जैसलमेर माए अभियान रे तहत भीषण गर्मी ने पीछे रागीरा ने शरबत और नींबू पानी पिलायो गयो बालोतरा रा जसोल माए प्रभात फेरी निकालर जागरूकता बढ़ाई जी इन तरह पाली रे तखतगढ़ माए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गंगा जल रो पूजन कर आम जन ने शपथ दिलाई करोली रा पांचना बांध माथे राखी जा कार्यक्रम माए जनप्रतिनिधिया रे साथ आम जन ने पौधारोपण और जल पूजन करियो शिरोई सु माणा खबर नवीस बतायो कि वठे मुख्यमंत्री कार्यालय सु पहुंची टीम अभियान री प्रगति री समीक्षा करी
2: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन

0: आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान, जल शपथ, वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को PCD रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, MPT रिचार्ज साफ तथा CCT कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
1: जोधपुर बड़ली ग्राम पंचायत में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जिला अहलकार साथ है बड़ली भैरूजी तालाब माथे श्रमदान कर आम जनसु सहभागिता निभाने रो हेलो करो। अभियान के तहत काले जिला माए कृषि संगोष्ठी वेला और नवाचार प्रदर्शनी लगाई जावेली। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनायो जा रही है और दिन तंबाकू रे उपयोग ने समाप्त करने रे लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन कानिसो शुरू करीजी महती वैश्विक पहल रो हिस्सो है। इन वर्ष रो विषय अपील का अनावरण निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना राख्यो गयो है। इन मौके माते प्रदेश भर माए भी न्यारा न्यारा जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया। और अब मौसम, प्रदेश का कई हिस्सा माए लाडला दो दिना सु बनेड़ो आंधी बारिश रो दौर धीमो पड़ गयो। हालांकि कुछ एक जगह माथे आज भी धूल भरी आंधी रे साथ बिरखारी गतिविधियां दर्ज करी जी। मौसम महकमो पश्चिमी जिला माए तेज हवा चालने और न्यारी न्यारी जगह चालने और न्यारी न्यारी जगह माथे बरसात रे साथ ओला पड़ने री चेतावनी जारी करी है। महकमा बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर और डीडवाना कुचामन रे खातिर आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट वठिने जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, अजमेर और राजधानी जयपुर रे खातिर येलो अलर्ट बतायो है। मौसम केंद्र जयपुर पश्चिमी विक्षोभ रे असर सु आज बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग रा कुछ एक थोड़ा माए तेज बादल गरजने रे साथ धूल भरी आंधी चालने री आस जताई है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट रा 19वां सीजन रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस रे बीच खेलो जावेला। अहमदाबाद रे नरेंद्र मोदी स्टेडियम माथे सिंजा 7:30 बजे सु शुरू वेला। इन सीजन माए दोनों टीमां चौथी बार एक दूजे रे सामने वेला। पहले तीन मैचा माए RCB 2 माए और गुजरात टाइटंस 1 माए जीत हासिल करी ही। दोनों ही टीमां लीग मुकाबले माए 9-9 जीत दर्ज करी ही और बरोबर अंक हासिल करया हा। ध्यान जोग है कि राजस्थान रॉयल्स सीजन में चोखो प्रदर्शन करता हुआ प्ले ऑफ ताइरो सफर तय करियो हो। इन खिताबी मुकाबले ने लेयर क्रिकेट प्रेमिया माए रोमांच बनियोड़ो है। और आखिर माए खास खास खबर एक कर फेरू सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों सु चोखे काम सु जुड़ने और कुछ नयो सीखने रो हेलो करियो। आकाशवाणी रे मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करिया। उर्वरका रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने सलाह देवन खातिर काले सु देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली। प्रदेश भर माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी। और IPL क्रिकेट रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस रे बीच वेली खिताबी भिड़ंत। इनरे साथ ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पुरोव्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दादी कौन सा प्लांट है?
7: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
8: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
8: क्यों?
6: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
8: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
9: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
10: आकाशवाणी जयपुर अजमेर।
11: यह है रेडियो गोल्डन सिटी FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रहा सैन ग्रामीण भाइयों ने कड़ा भाई रहा घना घना राम राम भाइयों। गर्मी इतनी पड़ी कि गर्मी रिसवाए बीजी कोई बात ये चर्चा रिसवाए कोई बात निकले को नहीं। और हर बार जो आप इस बात का ये समय में करनी जरूरी हो जाए कि भाई आप अपनों गर्मी से जो बचाव रखो ध्यान रखो। और आज अपने प्रधानमंत्री जी जो है मन री बात रुझको और कार्यक्रम होया करे आकाशवाणी में वो में भी वो एक संदेश दियो है। हालांकि इसमें पहले भी वो ये बात कही थी और आज मन री बात कार्यक्रम में कहे है तो आप इसमें थोड़ी और ये चर्चा में आगे बढ़ जाए। और अपना ध्यान तो अपन रखना ही जाए और आप हमेशा ये कार्यक्रम में कहें कि भाई आप बड़े बुजुर्गों रो और अपने छोटे बच्चों रो भी ये समय में आपनो ध्यान रखना पड़ सके वो खुद आप रो ध्यान कौन रख सके। पूरे साथ साथ में आप बात कर जी पशुधन रो ध्यान रखन दी तो आज पशुधन में भी विशेष रूप से आप जो है नवजात पशुओं रो ये समय में ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि उम्री रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होया करे वो बहुत कम होया करे। और ये समय में मतलब ये तेज गर्मी रे में उन्होंने लू है डिहाइड्रेशन है मतलब पानी की कमी और संक्रमण है उसमें बचावना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जावे और उन्होंने सीधी धूप से अपना दूर रखना जरूरी है। हवादार और छाया वाले स्थान में आप उन्होंने रखो साफ पानी उन्होंने उपलब्ध कराऊँ ताकि यह सुनिश्चित हुए कि भाई उन्होंने पानी की कमी नहीं हुए समय समय में तो आप ध्यान रखो। और अगर कोई कारण से पशु है अगर वो पानी न दूषित कर दे या उन्हें गंदो कर दे तो आप उन्हें पशु बदलो साफ पानी रखो। और जन्म रहे तुरंत बाद जो को है नवजात पशुओं ने आप खीस जरूर पिलाओ वे सुरी रोग प्रतिरोधक क्षमता मोह वृद्धि होया करे उम्र वास्ते बहुत आवश्यक होया करे। सीधी धूप से आप बात करी जाए ताकि उन्हें गर्म लू भी नहीं लगे और धूप भी नहीं लगे। और अगर पक्को शेड है तो ठीक है लेकिन नहीं तो पेड़ों की छाँव है या एड़ो को स्थान देखो जगह जगह उन्होंने छाया मिल सके और नहीं तो जो आप टाट रहा पर्दा भी आप लगा सकें और खसरा पर्दा अगर उपलब्ध है आप और ये तरीके से आप एड़े इलाके में हुआ के वो तो आपने ये उपलब्ध हुआ तो ज़्यादा बढ़िया रह सके। उधर में आप थोड़ा पानी रो भी छिड़काव कर दो तो उसमें ठंडी हवा मोह आया करे। और पशुशाला रे में जो है अपन ये तरीके से मतलब वो शेड बनाना है या वो में पर्दा लगाना है कि बिल्कुल घुटन नहीं हुए गर्मी तो नहीं आवे मतलब धूप और गर्म लू नहीं आवे लेकिन फिर भी जो है हवा रुई व्यवस्था अपन रखनी जरूरी है। बहुत ज़्यादा मतलब जो है हवा की कमी हो से तो भी ये भी नुकसानदायक है। और आहार में अपन जो पहले तो अगर नवजात तुरंत है तो उन्हें खीस पाना आवश्यक है और एक दो घंटे रे मोए मोए और उरे अलावा जो है तो कि सबसे पहले तो हमारे पेट में जो भी उस समय में कोई भी दूषित पदार्थ है उन्हें निकाले पेट में साफ करे उरे साथ साथ में उन्हें बीमारी से लड़ने ताकत दिया करे। पानी जो है दिन में आप कई बार है आप और ध्यान रखो कि भाई पानी देखता रहो और रखड़ो पानी अगर ज़्यादा गर्म हो जाओ उन्हें बदल और अब जरूर आप उन्हें कोई ठंडो फ्रीज रो या तो ज़्यादा ठंडो देव नहीं आवश्यकता को नहीं पर सामान्य जो तापमान अनुसार पानी है वो हमारे आगे रखना बहुत जरूरी है। और साफ सफाई रो ये तरीके से ध्यान रखो कि जो तो गंदगी हो जावे गीलो हो जावे तो उन्होंने जगह ना आप सूखी और साफ रखो ताकि गीला बंश जो कोई निमोनिया या त्वचा तो संक्रमण खतरो है वो नहीं रहे। और नाभि सफाई रो विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जन्म

बाद में जो है नाभि नसाप धागे सु जो है बंद और एंटी सेप्टिक दवाई है जो टिंसर है आयोडीन है ये अपन लगाए रखना चाहिए ताकि संक्रमण नहीं हो सके। और बाड़े रेम में अपन यह भी सुनिश्चित करना है कि वो मच्छर है मक्खियाँ हैं और पिस्सू जो को है वो ज़्यादा नहीं बढ़े ताकि वो नवजात न परेशान नहीं करे। अगर इतना सब ध्यान रखने बाद में भी कोई कारण से अगर लू उन्हें लग जावे तो वह लक्षण अपनों समझना चाहिए। अगर नवजात सुस्त दिखे और दूध नहीं पिए और आपन लगे और उन्हें दस्त हुए तो तुरंत अपन पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए या वह नवजात ना पशु चिकित्सक ले जाए और बताना चाहिए। और टीकाकरण विशेष ध्यान हमेशा अपन छोटे या बड़ा पशु कोई भी है वो ध्यान रखना आवश्यक है। स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क कर और नवजात ना जो समय समय में लगने वाला टीका है वो अपन लगाना चाहिए। ये मैं कोई कोताही नहीं बरता ताकि आने वाले समय में जो कोई भी बीमारियों है उसमें आना से बचाव हो सके। और ये अलावा जो को अपन ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो आप किसान कॉल सेंटर में भी फोन कर सको या आप निकटतम जो को पशु परीक्षक भी या पशु चिकित्सा अधिकारी भी उनसे आप बात कर सको और उसके अनुसार जो को है वो आप जो को जानकारी दे आप उसके अनुसार अगर आप पालन करो और बच्चा जो नवजात पशु है उन्होंने गर्मी में बचा सको। और ये कार्यक्रम जो का आप मुख्य हिस्सों है आप लोक संस्कृति तो आज अमर भोंगर खान की आवाज में एक बढ़िया लोक भजन सुनो जेकरा बोल है आज तो हमारे भाग भोले शंकर आवी है।

तो आप अमर भूंगर कौन आवाज में सुनियो बढ़िया लोक भजन जिक्र बोलता आज तो हमारे भाग भोले शंकर आए। भाइयों आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है।

एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि आप और भारत देश रे मोए अलग अलग रूपों रे मोए तंबाकू रोज को प्रचलन है। तंबाकू रो उपभोग है बहुत बड़ी मात्रा में है और ये सुन असामयिक मौतों की संख्या हीरो आंकड़ों भी बहुत बड़ो है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और उगरे कारण सुन जो को है सिर्फ और सिर्फ अकाल मृत्यु जो को नहीं, पहले जो को है लोगों ने कैंसर जड़ी खतरनाक बीमारियां और सामना करना पड़े और उनमें भी जो कोई कष्टदायक जो कोई निवारण प्रक्रिया है या वो जो कोई इलाज है जिसके में आपों रेडिएशन कीमोथेरेपी और दर्दनाक सर्जरी या शल्य चिकित्सा जिसके ना आपको है जिसके में जगह जगह शरीर सो चीरा लगाए और वे शल्य चिकित्सा की जावे, तो यह बहुत ही बड़ी जो कुछ चिंता और बात है। निश्चित रूप से पहले आप और ये तंबाकू प्रचलन है तो, पर फिर भी वो थोड़ा आप कह सकें कि कम मात्रा में, तो कुछ ग्रामीण भाई बीड़ी रो सेवन करता था पर वगैरह बाद में तो जो है चलन तो ज़्यादा बढ़तो गए वगैरह मोए अनेक रूप से अनेक मतलब प्रकार नशा है जैसे में खैनी भी है, जर्दा भी है, तंबाकू है, बीड़ी तो खैर तीज वगैरह, साथ साथ में युवाओं रे मोए बहुत ज़्यादा सिगरेट रो चलन भी मतलब बढ़ी हुआ है देखने न मिले। और उसे भी बढ़ के जो है गुटके रोज को प्रयोग हो रही है युवा पीढ़ी रे मोए, छोटे बच्चों रे मोए, महिलाओं रे मोए, तो वो जो को है एक बड़ी चिंता रो विषय है। सरकार आप रही जगह आपरा प्रयास करीज है और ये ना आप कह सकें कि हतोत्साहित करने वास्ते ये ना ये रोक लगाने वास्ते कई प्रकार री जो को चीज़ हो सके प्रयास हो सके ये मुझे जो को टैक्स या कर री दर न बढ़ाओ। कई राज्यों में गुटके नो निषेध भी करोड़ो है पर उरे बाद में भी जो को है जिद तक जन जागरूकता नहीं हो सके आप और खुद री समझ नहीं हो सके हुए बिना ये हमते रोक लगनी लगभग असंभव है। आप सरकार री तरफ से कुछ और भी प्रयास हुआ कि सिगरेट रे पैकेट मत है गुटके री पुड़ी और मत है जो को है खतरनाक जो को रूप से लोगों कैंसर की बीमारियां हुए और मोरे जबड़े रा जो को ऑपरेशन हो या उगया जो को एक आपको कह सकें कि भी डरावन वाला फोटो भी वम थे प्रिंट छपना छपावना जरूरी कर दिया गया, चेतावनी भी लिखोड़ी हुई वैधानिक चेतावनी के भाई तंबाकू सेवन जो को है स्वास्थ्य वास्ते हानिकारक हो सके, पर शायद लोग वो चीज़ ना नज़रअंदाज कर रहे हैं या वो ना अति गंभीरता से कौन ले रहा या जो को है एक उम्र है आत्मविश्वास री कमी है सोच री कमी है कि भाई हर एक आदमी ने थोड़ी हुई कहना हो सके या मनो कौन हो सके या जो को है मैं तो मैं खाना चालू कर लियो हूँ इन्हें छोड़ कौन सका मैं सो संभव को नहीं, पर प्रयास कौन कर रहा एक बारी कोशिश भी कर कौन देख रहा। कई उदाहरण है कि लोगों सालों साल खाने बाद में या सालों साल धूम्रपान करने बाद में अगर सोचियो तो वो छोड़ियो भी है, तो आवश्यकता ये चीज़ ही है कि भाई आप खुद ये दुष्प्रभावों ने समझो आप ये रे बारे में जागरूक हों और आप रा खुद रा प्रयास करो। 31 महीना दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जावे और ये रो उद्देश्य जो है तंबाकू सेवन रे व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव रे और ध्यान आकर्षित करना है जो को वर्तमान में दुनिया भर में हर साल 70 लाख से ज़्यादा मौतों का कारण बने जिसके में सो 8,90,000 गैर धूम्रपान करने वालों परिणाम दूसरे नंबर में थे। धूम्रपान जो है जो आंकड़ो डराने वालों है कि जो धूम्रपान करे वो सो मौतों का आंकड़ो तो सिर्फ 70 लाख है लेकिन 8,90,000 लोग जो को धूम्रपान कौन करे पर बीजों लोगों रे धूम्रपान करने की वजह से हुए रे चपेट में आए जावे धूम्रपान रे जो को दुष्प्रभाव है वगैरह जो को उमो मथे भी नुकसान करे हुआ ना क्योंकि आप ये आदमी आपरे कौम सु आपरे कार्य क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों में तो आवनो जावनो भेजे और निश्चित रूप से सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान में रोक तो लगी है पर उगरे बावजूद भी जो को है वो मैं पूरी तरह से आप नियंत्रण कौन कर पाया हूँ और इतनी ज़्यादा शक्ति को नहीं तो जो को

धूम्रपान नहीं करे वो भी जो को है ये चपेट में आ जावे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो को है वह सदस्य राज्यों 1987 में विश्व तंबाकू निषेध जो को है मनाना चालू की है। पिछले 21 वर्षों में दुनिया भर में सरकारों सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों धूम्रपान करने और उत्पादकों जो को है मौसम आपनों कुछ सहयोग जो को है उत्साहवर्धक भी मिली है। पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2007-08 में भारत रहे 21 राज्यों रहे 42 जिलों में पायलट परियोजना रूप में प्रारंभ किया गया। तो सर्वप्रथम राजस्थान रहे 2 जिलों जिसके में जयपुर और झुंझुनू शामिल है ये गतिविधियां प्रारंभ की गई। और ये बाद में जयपुर झुंझुनू और अतिरिक्त जो अजमेर टोंक चुरू उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़ कोटा झालावाड़ भरतपुर सवाई माधोपुर अलवर जैसलमेर पाली सिरोही श्रीगंगानगर जिला जो को है कुल 17 जिला है वो ये में सम्मिलित किया गया। ये रमो है कुछ चीज़ों है कि भाई स्कूलों रे आस पास नशेरी या मतलब आप कह सकें सिगरेट गुटखो मतलब को नहीं बिक सके। उसके अलावा खुली सिगरेट बेचन मत है पाबंदी है सिर्फ पैकेट दियो जा सके। और जो को है हर महीने री आखिरी तारीख ना कोटपा रहता है जो को है गुटकेरी दुकानों सिगरेट दुकानों ने बंद करना आवश्यक हुई। पर सब चीज़ों इतनी सख्ती से ये पालना को नहीं हो पा रही क्योंकि जितनी तक कोई भी चीज़ों में मतलब जन सहभागिता नहीं हो से आप और खुद ही जो कोई दुष्प्रभावों के प्रति आप और ध्यान नहीं जा से आप और समझ नहीं जा से आप ये नुकसान हो सू कौन बच सको और आप ये में आगे बढ़ और नशेरा जो को दुष्प्रभाव है ये बारे में आप जागरूक होना पड़ से जागरूकता फैलावनी पड़ से जद आप जो को ये सो निजात पा सको या ये रहे जो को लोग ये चपेट में आ रहे वे संख्या में कमी आ सके। तो आप सब न जो को आज ये दिन एक प्रकार से शपथ लेनी है और आज से आप प्रयास चालू करना है। और मैं एक लोकगीत और सुन लो जिक्र बोल जेडर और ये ना गायो है मुल्तान खा पार्टी।

0: 大家好嘞
1: ¡Ponera, ponera!

0: ग्रामीण भाई अभी सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। ये है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 MHz पर। अब आप सुनेंगे नशा मुक्ति एवं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव पुरोहित से तृप्ति भाटिया की बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी और मैं हूं तृप्ति भाटिया। आज 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे तंबाकू से होने वाले नुकसान, इसकी लत से छुटकारा पाने के उपाय और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नशा रोग और मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव पुरोहित जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार तृप्ति जी, नमस्कार और धन्यवाद आकाशवाणी जैसलमेर का कि मुझे इस चीज पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो पहले हम आपके बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराना चाहते हैं कि आप अपना परिचय दें।
2: मेरा नाम डॉक्टर गौरव पुरोहित है। हाल फिलहाल मैं जोधपुर के अंदर मरुधरा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के अंदर कार्यरत हूँ सहायक आचार्य की पोस्ट पर।
1: जी डॉक्टर साहब, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और इसके बारे में हमेशा चर्चाएं होती रहती हैं, चाहे तंबाकू निषेध दिवस हो या नहीं हो। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इस ये दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: तंबाकू एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे सबको समाप्त कर देता है। और बात यह है कि मतलब दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत के अंदर हर तीसरा व्यक्ति तंबाकू की लत से पीड़ित है, चाहे वो किसी प्रकार में हो, चाहे वो खैनी से हो, चाहे वो जर्दे से हो, चाहे सिगरेट से हो या बीड़ी से हो। तो और तंबाकू के कारण बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, तो उनको रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन दैट इज WHO उन्होंने इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस का स्थापना करी कि इस कारण ये दिवस मनाया जाता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये जो तंबाकू का सेवन है सभी को पता है नुकसानदेह है, लेकिन क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शरीर के किन किन अंगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है।
2: शुरुआत हम करते हैं एक्टिव स्मोकिंग से। एक्टिव स्मोकर्स वो होते हैं तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो ये हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, लकवा, मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर आदि चीजों को कर सकता है और साथ में नपुंसकता भी ला सकता है। दूसरी चीज है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग ऐसे है कि जैसे कोई परिवार वाला स्मोक कर रहा है, उसके आसपास में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है जो उस धुएं को ग्रहण कर रहा है, उसके कारण दूसरे व्यक्ति के अंदर भी ये सारी समस्याएं हो सकती है। फेफड़ों का कैंसर और फेफड़ों का रोग जैसे COPD, अस्थमा, ये सब चीजें हो सकती है। और साथ के साथ अगर कोई प्रेग्नेंट महिला आसपास में है तो उसके अंदर जो अजन्म बालक है उसमें भी विकृतियां ये प्रदान कर सकती है।
1: जी तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसानदेह सिगरेट है, कोई सोचते हैं बीड़ी है। तो आप एज अ डॉक्टर हमें बताएं कि गुटखा, खैनी, पान मसाला, हुक्का, सिगरेट, इनमें सबसे ज्यादा नुकसानदेह क्या चीज है और आप इन्हें क्रम से बताएं।
2: मेरे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि सांपों के अंदर है ना हम डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। सांप तो सांप, कोबरा काट रहा है या वाइपर काट रहा है, वो दोनों है तो जहरीले।
1: हाँ जी, मरना तो है,
2: मरना तो दोनों की है। तो ये एक गलत बात होगी, मैं कहूंगा कि ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज्यादा है। तो मेरी तरफ से ये हो जाएगा, आप ये लेंगे तो लेट मरेंगे, ये लेंगे तो जल्दी मरेंगे।
1: बिल्कुल,
2: बट मेन चीज क्या है कि गुटखा, खैनी, गुटखा खाओ, खैनी खाओ, जर्दा खाओ, सिगरेट पियो, बीड़ी पियो, मारना सबको ही है, तो सभी इक्वल रूप से ही हानिकारक है।
1: जी हम अपने आसपास के सिनेरियो में देखते हैं कि कहा जाता है ये चीजें नुकसानदेह है और इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है पैकेजिंग के ऊपर कि इसको स्वास्थ्य के जो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और ये भी गवर्नमेंट के द्वारा कई बार कहा जाता है कि स्कूल और कॉलेजेस से बहुत दूरी पर ये होने चाहिए, पर फिर भी हम देखते हैं कि या तो आम जनता इसके प्रति जागरूक नहीं है या वो इसके जो स्वास्थ्य

0: प्रॉब्लम ये है कि लोग छोड़ना भी चाहते हैं परंतु चिकित्सक के सलाह के बिना उनको छोड़ना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसकी जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। जैसे एक कुछ लोगों का होता है कि मैं तंबाकू नहीं पीता हूँ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जी रहती है, लेटेड आती है। कुछ लोग ये कहते हैं सिगरेट अगर मैं घंटे घंटे में सिगरेट नहीं पीऊँ तो उनको घबराहट बेचैनी हो जाती है, और उस चीज को है ना वापस, और ये लोग खुद को पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देते हैं कि ये तो हमको लेना ही नहीं, तो हम ढंग से काम कर ही नहीं पाएंगे। इस चक्कर में ये लोग जो है बार बार ये इस प्रकार के नशे करते हैं।
1: जी, तो ये भी सुना गया है कि अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो शुरुआत के कुछ दिन तक तो आपकी बॉडी खुद ही आपको सपोर्ट नहीं करती है।
0: हाँ, बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि आपको इस चीज का एडिक्शन हो गया। एडिक्शन मतलब इस चीज के दुष्प्रभाव में आप आ गए हो, इस चीज की लत लग गई है। तो बॉडी अब वही चीज है कि अगर हम लोग 10 दिन तक रात को 2-2 बजे सोए तो 11वें दिन हमको नींद भी रात को 2 बजे आएगी, हमें 10 बजे नींद नहीं आएगी। क्योंकि बॉडी का खालोगे वैसा बॉडी तैयार हो जाएगी। जैसे कोई एक्सरसाइज करने बंदा पहले दिन जिम जाता है उसके है ना मसल्स दुखती है, बट कोई 10 या 15 दिन जाएगा तो उसको वो चीज नॉर्मल लगने लग जाएगी। सिमिलरली अगर कोई पहले दिन छोड़ेगा तो पहले कुछ दिन उसके लिए थोड़े से भारी रहेंगे, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, उसको मन होगा कि मैं वापस ले लूं, वापस ये चीज से क्या है कि रिलैक्सेशन हो जाएगा, एंग्जायटी नहीं होगी, बट एक पर्टिकुलर समय निकलने के बाद ये चीजें छोड़ी जा सकती है। और चिकित्सक के सलाह में हाल फिलहाल तो दवाइयां इतनी उन्नत हो गई है कि जो विड्रॉल सिम्टम्स है उनको भी वो कंट्रोल कर देती है।
1: ना बिल्कुल, इसमें परिवार, घर और दोस्त हैं, इनकी भागीदारी को आप किस रूप में देखते हैं?
0: बहुत बड़ा रोल है, दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल है, परिवार का भी बहुत बड़ा रोल है, और जो जो इनके स्पाउसेस है उनका भी बहुत बड़ा रोल है।
1: जी,
0: एक हम बचपन कहते थे ना कि जिनके पिता माता पिता कोई नशा करते हैं उनके बच्चे को भी नशे की आदत पड़ती है। ये बहुत सही है, ये साइकेट्रिक ये क्या कहते हैं साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि आप जो बच्चा है वो देख के चीजों को समझता है, लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय सीइंग वाली चीज है ये, ठीक है। तो वो चीजों को देख रहा है, उसको देख के और वापस ये चीज चालू कर रहा है। पर अगर परिवार वाले ही इस चीज से एक निषेध रखे, इस चीज से दूर रहे और बच्चों को है ना समझाते रहे कि बेटा ये है ना बुरी चीज है, इसको हमको नहीं लेना है, और दूसरों को भी इसके लिए हमको प्रेरित करना है कि वो ना ले। बट अगर कोई कोई बच्चा अगर ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको डांटे मारे नहीं अपितु उसको प्यार से समझा के और सही तरीके से मनोचिकित्सक की सलाह के साथ उसको ये छुड़ाया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जो सिगरेट की जब हम स्पेशली बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ लोगों का जब सर्वे किया गया तो ये जानकारी आई कि ज्यादातर लोगों ने अपनी ग्रुपिंग की वजह से ही उसको पिया था, नहीं तो कॉलेजेस में या स्कूल्स में उनको अपने ग्रुप में एक वो दर्जा नहीं मिलता है। उन्होंने फैशन के नाम पे इसको स्टाइल मारने के तौर पे सोच समझ के पीना शुरू किया कि हम तो थोड़ा सा कर रहे हैं बाद में हम इसको छोड़ देंगे, और वो खुद कहते हैं कि अब हम इसकी भयंकर लत में पड़ चुके हैं।
0: नहीं, ये आपकी एकदम सही बात है, इसको हमारी भाषा में कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस क्या होता है कि शुरुआत में लगता है एक सिगरेट पियेंगे और ठीक रहेगा, धीरे धीरे वो एक सिगरेट से हाई आना बंद हो जाता है तो हम 2 सिगरेट ले लेते हैं, 2 सिगरेट से हाई आना बंद हो जाता है, 3 सिगरेट लेते हैं, तो वो छोड़ आपका जो दूसरा सवाल है उसका मैं पहले जवाब दे रहा हूँ, तो छोड़ना इसलिए उनको मुश्किल होता है। दूसरी चीज यंगस्टर्स में या फिर हमारी जनरेशन, अपन लोग भी जब कॉलेज में थे तो एक कूल दिखने की होड़ मची हुई थी।
1: जी हाँ।
0: कि आप सिगरेट पीते हो तो कूल हो, आप सिगरेट नहीं पीते हो तो फूल हो, आपको पता ही होगा ये चीज
1: बिल्कुल बिल्कुल होगी, सही है।
0: तो अगर कोई भी प्रकार का नशा करते हो तो कूल हो, और धीरे धीरे क्या ये पीयर प्रेशर मतलब आसपास के लोगों को देख के सीखने की जो प्रवृत्ति होती है या दूसरों की तरफ से जो दबाव आ रहा है उसको, उसके चक्कर में हम लोग ये चीजें चालू कर देते हैं, नशे इस प्रकार से चालू करते हैं। और शुरुआत में जब चालू करते हैं तो क्या है 2 साल लेंगे फिर अपना छोड़ देंगे, 3 साल लेंगे छोड़ देंगे, बट आपको ये नहीं पता है धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी बॉडी इस चीज के लिए टॉलरेंस डेवलप कर रही है और इस चीज के लिए एडिक्शन डेवलप कर रही है, उसका एडिक्शन भी हो रहा है, लत लग रही है बॉडी को उस चीज की।
1: जी हाँ।
0: तो जब आप छोड़ने के लिए जाते हैं तब आपको पता चलता है काफी देर हो चुकी है और आप बिना चिकित्सक के सलाह के उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि उस वक्त हमें ये लगता है कि जो हमारे ग्रुप वाले या हमारे दोस्त जो कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि आप जिन 5 लोगों के बीच घूमते हो एट द एंड आप उनका एवरेज होते हो। हम अपनी संगत से इन चीजों में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या समाज की और स्कूल की।

0: की भी इस दिशा में कुछ प्रयास ज्यादा होने चाहिए।
1: बिल्कुल होने चाहिए। स्कूलों के अंदर जो स्कूलों के अंदर टॉबेको सेल, एंटी टॉबेको सेल और वो सब होते हैं, उनका और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो टॉबेको ला रहा है या आसपास का टॉबेको बेच रहा है उसको कानूनन में आप है ना कानून के अंदर दे सकते हो, गिरफ्तार करवा सकते हो या उसके ऊपर जुर्माना लगवा सकते हो। क्योंकि एक दायरा होता है, उसके दायरे के बीच में जो गुटखा सिगरेट तंबाकू ये नहीं बेचने चाहिए। परंतु हाल फिलहाल में क्या है कि स्कूल वालों की तरफ से कोई गलती मैं नहीं कहूंगा, पर आसपास के लोग पास में छुपके और ब्लैक के अंदर भी है ना नशा बेचते हैं आसपास के
0: जी हाँ
1: अंदर। तो
0: जी हाँ। और परीक्षा के
1: स्कूल वालों
0: दिनों
1: के
0: में,
1: हाँ
0: परीक्षाओं के दिनों में ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं अपने
1: परीक्षा के दिनों
0: तनाव
1: में
0: को
1: और
0: कम
1: बिल्कुल
0: करने के लिए।
1: परीक्षा के दिनों में और चीजें बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने कहा ना कि पहले तो ये चीज कूलनेस से चालू होती है, लोगे तो कूल है। फिर एक सीनियर आएगा, वो बोलेगा भाई तू क्या टेंशन कर रहा है, एक पफ मार, एक सिगरेट का हो है ना वो सुट्टा मार, पफ मार, एकदम तेरा दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, तू पढ़ाई पे एकदम कंसंट्रेट कर पाएगा।
0: जी
1: बट
0: हाँ
1: बेसिकली क्या है कि यही एडिक्शन है कि आपको किसी भी चीज में कंसंट्रेट करने के लिए आपको नशा करना पड़ रहा है, दैट इज द एडिक्शन।
0: बिल्कुल। तो स्कूली टाइम से ही बच्चों में जो हम जिस चीज की हम लोग वैल्यू नहीं समझते हैं वो है नैतिक शिक्षा। हम हमारे एजुकेशन में नैतिक शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। संस्कार और नैतिक शिक्षा अगर बच्चों में शुरुआत से डाल दी जाए, क्योंकि अगर मार्केट में या रोड पे कहीं कांटे हैं तो हम पूरी जमीन को कहते हैं ना कंटक विहीन नहीं कर सकते। हमें तो पैरों को
1: बिल्कुल
0: इतना सुरक्षित करना पड़ेगा कि वो कांटे हमें ना चुभे। तो ऐसे लोग तो सब जगह होंगे। तो शायद स्कूल की एजुकेशन के दौरान ही बच्चों को नैतिक शिक्षा इतनी अच्छी दे देनी चाहिए कि जब उनके सामने ऐसी स्थितियां आए तो वे पहले से ही जबरदस्त मेंटली प्रिपेयर हो कि हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है, हम क्यों पढ़ के फिर इससे बाहर निकले। अच्छा है कि
1: बिल्कुल
0: हमारी
1: ये
0: युवा
1: तो
0: पीढ़ी इसमें पढ़े ही नहीं।
1: पढ़े नहीं, ये तो एक दलदल जैसा है। एक बार
0: जी
1: आप
0: हाँ
1: फंसोगे उसमें निकलना थोड़ा मुश्किल है, पर जो दलदल में फंस चुके हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी
0: जी
1: मनोचिकित्सक के पास मिलिए और उनसे उपयुक्त सलाह लीजिए, उपयुक्त दवाएं लीजिए और इस चीज से आप आराम से बाहर निकल सकते हैं। आजकल तो साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि आपको विड्रॉल सिम्टम्स भी ज्यादा फेस नहीं करने पड़ते हैं।
0: जी
1: 4-5 दिन का 4-5 दिन की जो आपकी परेशानी है वो आपको जीवन बचा सकती है आपके इसके अंदर।
0: जी आपका जीवन बचा सकती है और आपके अपनों का भी, क्योंकि आपको देखकर आप नहीं जानते कि कब कोई आसपास का लोग आपसे प्रभावित हो जाए, कब कोई फैमिली का छोटा भाई बहन आपकी चीजों के इस्तेमाल करने से वो भी इस लत में पड़ जाए। तो ये चीज
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छी आपने बताई। एक चीज मुझे और आपसे पूछनी थी कि कुछ समय पहले अगर हम जाएं, जैसे 80s और 90s के जो बच्चे हैं उनमें अगर हम जाते हैं या 2000 तक भी अगर हम चले जाते हैं तो लड़कों में ये चीज ज्यादा थी, पर आजकल ये चीजों में फीमेल में इन चीजों के इस्तेमाल का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत खराब ये बात है पर आश्चर्यजनक रूप से उनके ग्राफ में अभी वृद्धि हुई है।
1: एकदम सही आपने बोला है। लेकिन पहले क्या है कि ये जो कूल लगने की होड़ थी वो जो बॉयज हॉस्टल जैसे है वहां पे कूल लगने के लिए इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाता था। स्लोली स्लोली अब कुछ देखो क्या है, मॉडर्नाइजेशन के 80-90% चीजें अच्छी होती है, पर हर अच्छी चीज के साथ एक बुरी चीज आती है। तो ये जो नशे को कूल दिखाना है सबके बीच में, तो आजकल मेल के साथ साथ फीमेल रेशियो भी बढ़ने लग गया है। और
0: जी
1: यही यही कूलनेस के चक्कर में कि और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे इससे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। और लोगों के दिमाग में ये भ्रांति है कि स्ट्रेस कम करने के लिए हम सिगरेट लेंगे, कोई दूसरा नशा लेंगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा और हम चीजों पे फोकस कर पाएंगे। बट
0: जी हाँ
1: ये चीज क्या, इनिशियली तो आपको वो चीज दे देगी कि हाँ आपका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, बट बाय द पीरियड ऑफ टाइम आपका कंसेंट्रेशन भी लूज होने लगता है और आप धीरे धीरे एडिक्ट होने लग जाते हो। तो मैं यही है ना अपने युवा
0: युवा
1: पीढ़ी से
0: पीढ़ी
1: यही
0: से
1: कहूंगा, युवा पीढ़ी से यही कहूंगा कि इन चीजों से बच के रहे, क्योंकि एक बार
0: जी
1: आप इस दलदल में घुस गए इस दलदल से निकलना मुश्किल है, असंभव नहीं है।
0: जी हाँ। तो ये तो हम अभी बात करें सिगरेट की और इन चीजों की। एक जो बहुत प्रसिद्ध चीज है, प्रसिद्ध तो उसे नहीं कहने कहेंगे हम, बहुत फेमस है कि गुटखा। ये गुटखा और जो
1: हाँ
0: पान मसाला है ये आप देखिए कि सिगरेट तो कोई बंदा फिर भी चिपके पिएगा, वो पब्लिकली नहीं
1: हाँ
0: पिएगा अपने पेरेंट्स के सामने, लेकिन जो गुटखे का सेवन है वो बड़े भी बच्चों के सामने करते हैं, बच्चे भी मार्केट में पब्लिक प्लेस पे करते हैं और सभी इस अंदाज से उसको उसकी पी को थूकते हैं जैसे वो बहुत कोई बड़ा काम कर रहे हो। तो इसको लेकर अब शर्म संशय और संकोच बिल्कुल समाप्त हो चुका है और गुटके खाने वाले ये चीज कहते हैं कि वो इसके बिना फ्रेश नहीं हो सकते हैं, तो ये कितना सही है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: ये सारी निकोटिन की डिपेंडेंस है, जो कहते हैं ना कि फ्रेश नहीं हो सकते, दैट इज निकोटिन डिपेंडेंस। निकोटिन ने, टोबैको ने आपको इन चीजों के, तंबाकू ने आपको इन चीजों के, अपने को आपको गिरफ्त में कर दिया है इन सिम्टम्स के। तो ये जो फ्रेश नहीं होना है तो एकदम सही बात है, नहीं होते विड्रॉल सिम्टम्स है इनके, बट अगर आप चिकित्सक के सलाह लोगे तो आपको फ्रेश भी करवा देंगे, उसकी आप चिंता मत करिए। मैं तो युवाजनों से और इवन बड़े लोगों से भी यही कहूंगा कि, और गुटके के साथ उसके साथ जो है सिगरेट के साथ तो क्या केवल फेफड़ों का कैंसर है, गुटके के साथ तो बहुत सारी खराब चीजें भी साथ में जुड़ी हुई है, जैसे मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर, आपने फोटोज भी देखी होगी मुंह का हटा देते हैं। उसके अलावा जो मूवीज देखे जाते हैं तो जो कहानी आती है स्टार्टिंग में, मूवी स्टार्टिंग में, वो सारी जबड़े सारी जो है वो अपने क्या कहते हैं ये गुटके, गुटके के, तंबाकू के, खैनी के और जर्दे के ही उपयोग के कारण होता है। और आज कुछ औरतें जो है आपको पता हो तो मंजन के अंदर भी तंबाकू डाल के करती है, तो वो
0: हाँ,
1: वो भी जो है वो भी एक खराब चीज है, वो भी एक तरह से गुटके जैसा ही है।
0: वो ये भी कहते हैं क्योंकि हमने जैसे ग्रामीण अंचल है तो उसमें कई जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बोलती है कुछ नहीं होता, हम तो सालों से यही कर रहे हैं, और वो ये कहती है कि हमारे दांतों में दर्द था और इसको करने से हमारे बिना किसी दवाई के दांतों के दर्द, मसूड़ों के दर्द, जबड़ों के दर्द से हमको आराम मिल गया।
1: अब मैं उन ग्रामीण अंचल की महिलाओं को कहना चाहूंगा कि दर्द एक अच्छी चीज है जो आपको बता दी कि आपके दांत में कोई समस्या है।
0: जी हाँ,
1: आप इस मंजन को उपयोग करके क्या कर रहे हो, आप उस समस्या को नजरअंदाज कर रहे हो, आप दांतों के दर्द को बंद कर रहे हो, पर अंदर जो समस्या डेवलप हो रही है उसको तो बहना रोक नहीं रहे हो ना। अगर कोई आपके मुंह में कोचर हो रही है, कैविटीज हो रही है, या फिर दांत में कोई दूसरा इश्यू हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ के वो ऐसा हो जाएगा कि आपका दांत ही निकालना पड़ जाएगा, तो बेटर यही है कि जो मंजन डेंटिस्ट करते हैं प्रिस्क्राइब, या जो मंजन नॉर्मली चलते हैं या जो टूथपेस्ट चलते हैं वो उपयोग में करने चाहिए। निकोटिन वाले मंजन उपयोग करने का कोई फायदा नहीं है, वो केवल आपकी सेंसिटिविटी को, आपके नर्व एंडिंग्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या है कि आपको दर्द की अनुभूति नहीं होती है,
0: कर देते हैं,
1: पेन किलर की तरह काम कर रहे हैं बस उस टाइम पे।
0: जी हाँ, एक तरह से आपको सुन्न कर देते हैं, तो उस वक्त के लिए आप समस्या को फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन समस्याओं से समाप्त नहीं होती है।
1: जी
0: डॉक्टर साहब, हमने ये जो समस्याओं के बारे में बात की, तो कई हमारे श्रोता लोग हैं जो इस अभी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और निश्चित तौर पे इन समस्याओं से इत्तेफाक भी रखते हैं, तो आपने क्या कहना चाहेंगे कि शुरुआत इसका क्रम बताएं? जैसे कोई व्यक्ति गुटके की लत से सालों से पीड़ित है, अब वो चाहता है कि वो अंदर मन में चाहता है मैं छुटकारा पाऊं, पर किसी को बताए बिना, ये लोगों में बहुत होती है कि हमें किसी को बताना नहीं है, तो वो स्टेप बाय स्टेप वो क्या करे?
1: वो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले अपने मनोचिकित्सक से मिले,
0: जी,
1: नशा मुक्ति विशेषज्ञ जो होते हैं,
0: जी,
1: और एक पेशेंट रिलेशनशिप होता है जिसमें डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट की डिटेल किसी से भी साझा नहीं करता है।
0: ठीक है,
1: तो एक दिमाग से ये भ्रांति निकाल दे कि हमें कहीं जाऊंगा पता चल जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप वहां जाइए डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको जो है जो भी आपकी जांच करेगा, आपको देखेगा, आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपको उपयुक्त दवाई देके इस नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए आपके साथ रहेंगे। और सारे मनोचिकित्सक जो है वो इस चीज के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं कि है ना, जितना कम नशा हो दुनिया में उतना अच्छा है।
0: जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि कोई भी जो व्यक्ति अगर आता है, चाहे वो पुराना भी पेशेंट हो, लेकिन वो बिल्कुल भी मन में किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह को त्याग कर आराम से आए। अब जरा ये बताएं कि आपने तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे, तो इससे दलदल से निकलने में उन्हें कितना समय दवाइयां लेनी पड़ती है, ताकि हमारे श्रोतागण और अच्छे से इस बात को समझ पाए कि उन्हें इस चीज को कितना समय या कितना कष्ट क्या देना पड़ेगा?
1: देखिए क्या है, नॉर्मली जो हमारी किताब होती है DSM-5, उसके हिसाब से अगर आप एक साल तक सिगरेट नहीं पीते हैं तो हम आपको टोबैको फ्री, या मतलब गुटखा नहीं खाते तो टोबैको फ्री हम डिक्लेयर करते हैं आपको, पर दवाएं आपको 12 से 16 हफ्ते मतलब 3 से 4 महीने आपको इसके अंदर लेनी पड़ती है। साथ में साथ हम काउंसलिंग भी देते हैं जिससे आपका मोटिवेशन लेवल, मतलब मोटिवेशन लेवल जरूरी है कि आदमी, हम दवाएं देते हैं पर सामने वाले को मोटिवेशन ही नहीं है कि मेरे को छोड़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत भी किसी को कोई नशा नहीं छुड़वा सकती है।
0: जी हाँ, मन के जीते जीते, मन के हारे हार। जी,
1: तो बस वही है, मन का कच्चा नहीं होना है, मन पक्का रहेगा तो फिर आपका नशा भी छूट जाएगा, और जो पैसे एक्स्ट्रा आप नशे पे लगा रहे हो वो पैसे आप अपने क्या कहते हैं बच्चों की पढ़ाई पे और आगे की तरफ उपयोग में ले सकते हैं। तो वापस मैं टॉपिक पे आता हूँ, 12 हफ्ते जो है, 12 से 16 हफ्ते आपको दवाएं लेनी पड़ती है, साथ में कुछ काउंसलिंग्स होती है, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी होती है जिसमें आपका मोटिवेशन को बढ़ाया जाता है, और बाद में आपको कुछ टाइम बाद में दवाएं कम करके धीरे धीरे बंद करके आपको फॉलोअप पे बुला के हम देखते हैं कि आपका मोटिवेशन जस के तस है या नहीं है। जहां भी मनोचिकित्सक लगता है कि मोटिवेशन डोल रहा है वापस वहां से ट्रीटमेंट हम चालू कर देते हैं। और मेरी मानिए, अगर किसी व्यक्ति ने 1 वर्ष तक छोड़ दिया है तो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 60 से 70 लोग वापस चालू नहीं करते हैं। 20-30 लोगों में अगर संगत मिल गई या मोटिवेशन डगमगा गया या किसी ने मनवार कर दी तो वही काम खत्म हो जाता है।
0: जी हाँ, ये मनवार की बड़ी समस्या हमारे इधर के अंचल में पाई जाती है कि लोग दूसरों से प्रभावित होकर ही शुरू करते हैं और खुद छोड़ते हैं पर वापस भी शुरू प्रभाव में आकर कर देते हैं। जी हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर किसी की विल पावर स्ट्रांग है तो मेडिकल लाइन उसके साथ बिल्कुल खड़ी है तो हम उसको छुड़वा सकते हैं। अब ये बताएं कि जब कोई व्यक्ति इसको छोड़ रहा है तो क्या उसके शरीर पर उस समय के दौरान कोई नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं जनरली?
1: तोबे को छोड़ने में नकारात्मक प्रभाव तो मैंने बोला ना, जो एंग्जायटी सिम्टम्स आते हैं, बस
0: हाँ, वही आते, बस वही आते हैं और कुछ नहीं। जी
1: ये कहूंगा कि इवन इसको छोड़ने पे तो सकारात्मक प्रभाव आते हैं।
0: हाँ, छोड़ने के बाद तो आते हैं पर लोगों को लगता है कि हम अगर कुछ दिन छोड़ेंगे तो भले दवाइयां ले पर हम कमजोर हो जाएंगे, हम आलस से महसूस करेंगे, हमें चक्कर आ जाएंगे, हम शरीर की क्षमताओं को ऐसे जाता हुआ महसूस करेंगे, तो ये सब शायद भ्रांतियां हैं।
1: मैं आपको फायदे गिनाता हूँ छोड़ने के, मिनट बाय मिनट और घंटे बाय घंटे और साल बाय साल।
0: जी हाँ,
1: 20 मिनट के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट अगर बढ़ा हुआ है तो वो सामान्य हो जाता है तंबाकू छोड़ने के 20 मिनट में।
0: अच्छा,
1: 12 घंटे पे खून का जो स्तर है, खून में ऑक्सीजन का स्तर है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
0: जी।
1: और अगर कोई खांसी का मरीज है जिसको हल्की हल्की खांसी होती रहती है, 1 से 9 महीने के अंदर वो खांसी में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। 1 साल के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होना, हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है अगर कोई सिगरेट या तंबाकू या बीड़ी या खैनी या जर्दा गुटखा कुछ खा रहा है। 5 साल में छोड़ने के बाद कैंसर का भी खतरा कम हो जाता है अगर 5 साल तक उसने छोड़ दिया है, और 10 साल के बाद तो वापस शरीर सामान्य तरीके से काम करने लगता है जैसे एक जवान का शरीर काम करता है। तो ये तो दुष्प्रभाव नहीं, सुप्रभाव है ये तो सारे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुप्रभाव है। तो
1: जी
0: व्यक्ति को मतलब अगर अपनी जो युवावस्था है सबको प्यारी होती है और कई बार देखा गया है कि युवावस्था में ही इन पदार्थों के सेवन से वो अपने समय से पहले ही वृद्ध लगने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि मुंह का जो आकृति है बिगड़ जाती है, तो ये आपके मुंह को, दांतों को, आपकी गले को, इन चीजों को तो डायरेक्टली प्रभावित करता ही है, और इंटरनल ऑर्गन से वो तो अलग ही है, उसका तो हम क्या बताएं कि कहाँ कहाँ अपने इसके नुकसान जो बता दिए। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया तंबाकू को छोड़ना, खाने को छोड़ना सब कुछ आसान है, जरा बताएं कि इसके साथ जो हम खान पान करते हैं, क्योंकि कई लोग अभी ये प्रक्रियाओं में हैं कि हम छोड़ रहे हैं, तो उन्हें अपने या बिना मेडिकल सहायता के, कुछ लोग अपने विल पावर से भी छोड़ने का प्रयास करते हैं कि हम इसको नहीं खाएंगे, तो वो लोग अपने खान पान का क्या ध्यान रखें या अपने खान पान में किन चीजों को शामिल करें ताकि उनकी बैलेंसिंग बनी रहे?
1: खान पान में जो भी नेचुरल चीजें हैं, जो मौसमी सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं वो खाएं, जो नॉर्मल अपने घर पे खाना बनता है वो खाएं, जैसे अपने यहाँ बाजरे की रोटी बहुत अच्छी है तो बाजरे की रोटी खानी चाहिए, जो सोगरा है सोगरा खाना चाहिए, गेहूं की रोटी है वो खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, और जो भी चीज जो है जैसे जंक फूड है, जैसे ये पैकेज फूड है उसको नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पीनी है साथ।
0: जी, तो मतलब जब आप एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ते हैं तो फिर उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है,
1: और साथ में आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, माइल्ड एक्सरसाइज करिए, माइल्ड वॉकिंग करिए, और तो आपको ये सब चीजें और सपोर्ट करेगी। नशा करना है तो जीवन का नशा करिए, इस मृत्यु वाली देने वाली चीज का नशा ना करिए।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी लाइन आपने बोली कि नशा करना ही है तो अपने जीवन का नशा करिए, मृत्यु का नशा मत करिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो आप एक्सरसाइज करिए, उसका नशा करिए, शरीर को मजबूत करेगी वो।
0: जी हाँ, और इन चीजों से निकलने में आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको और बिल्डअप करेंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: डॉक्टर साहब आपने काफी अच्छी जानकारियां बताई। अगर कुछ टॉपिक हमसे छूट गए हो या कुछ जानकारी और आप अगर अपने श्रोताओं को देते हो, या एक और चीज मुझे जाननी थी कि क्या ये नशा मुक्ति केंद्र प्रत्येक जिले में है या गांव में है या कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है, तो हमारे श्रोतागण डायरेक्ट वहां जाकर संपर्क कर सके।
1: हर जिले के अंदर जहाँ मनोचिकित्सक है वहां पे नशा छोड़ने की सुविधा उपलब्ध है,
0: उसके लिए कहीं दूर वूर जाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: नहीं कोई जरूरत नहीं है
0: जी, तो ये तो पूरी एकदम आपने सब कुछ मुझे लगता है समेट दिया, आपने गागर में सागर भर दिया। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अगर आपने ऐसा कोई पेशेंट देखा हो जिसको आपने छुड़वाया हो, और उसके बाद उसके जो विचार हैं या वो कितना थैंकफुल है, तो कुछ ऐसी बात हमारे श्रोताओं से साझा कीजिए चलते चलते, ताकि श्रोता जो मोटिवेशन से लबरेज है उनका उत्साह एक लेवल और ऊपर चढ़ जाए।
1: मेरा एक मरीज है जो लगभग दिन के 20 पूड़ी के गुटके खाता था, 20 पूड़ी गुटके।
0: अच्छा जी।
1: और उसको मैंने 6 महीने के अंदर वो छुड़वाया
0: जी।
1: उसके बाद आज वो इतना खुश है, उस टाइम पे उसके मुंह के अंदर व्हाइट व्हाइट रैशेज होने लग गए थे। अगर उसको नहीं छुड़वाता, जो हमारी भाषा में ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, अगर मैं उसको नहीं छुड़वाता तो उसकी अगली फॉर्म होती इरिथ्रोप्लेकिया, जिसके बाद जबड़े का कैंसर और मुंह का कैंसर चालू होने की जो चीजें हैं वो चालू हो जाती है उसके बाद में। ल्यूकोप्लेकिया वो वाली स्टेज है जहां से वापस आप पीछे आ सकते हो, एक बार आपको अगले स्टेज में चले गए तो वापस वहां से पीछे आना मुश्किल है। उसके बाद उसका वापस वो चीज तो ठीक हुई है। और जो मेरे को कह रहा था कि मैं दिन के, और दिहाड़ी वाला मजदूर था जो बेचारा दिन के 500-600 रुपए कमाता था और 200-300 रुपए इसमें लगा रहा था। अभी वो अपने बच्चों को पढ़ा दिया है उसने, और 3 साल हुए बच्चों को पढ़ा रहा है आराम से, अपने जीवन यापन बहुत ढंग से कर रहा है। और मुझे ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब आपने जो ये चीज छुड़वाई है तो आप सबको ये सहायता दीजिए, सबको ये गुटखा छुड़वाइए कि नशा तो जीवन का नाश है, नशा सन्मूलन ही एक चीज है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति, मेरे को इतना अच्छा लगा कि उस व्यक्ति को कैंसर होने से बच गया, उसके 4-5 साल के बच्चे थे वो अनाथ होने से बच गए गुटखा छोड़ने से।
0: बिल्कुल, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम लेते वक्त भी हमारे होठ कांपते हैं, और एक मजदूर आदमी उसका ट्रीटमेंट लेना भी उसके लिए बहुत मुश्किल है।
1: हाँ जी
0: जी, ये बहुत ही बढ़िया, एकदम भावुक कर देने वाली, आंखें नम कर देने वाला वाकया आपने साझा किया। तो जरूर जो सभी लोग सुन रहे हैं वो सभी इस चीज से रिलेट करेंगे, और जिस किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है वो आराम से गुप्त तरह से भी सीधा डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और इस अवसर पर हर जगह पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो अंतिम सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये सतही होते हैं या वाकई में धरातल स्तर पर इनसे कुछ फर्क पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है। धरातल स्तर पे जो टीम लगी हुई है तंबाकू उन्मूलन के लिए, वो टीम अपने दिल से काम कर रही है, दिल से इस चीज को हटाने की कोशिश कर रही है, और काफी लोगों का ने इसका फायदा भी उठाया है। तो मैं यही कहूंगा कि सतही नहीं है, ये अंदरूनी कार्य है, उन्मूलन के ऊपर बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है।
0: डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी शुरुआत से लेकर एंड तक सारी बातों में सिर्फ सकारात्मकता थी, सिर्फ पॉजिटिविटी थी। तो जरूर श्रोतागण स्वयं जो इस चीज से पीड़ित हैं वो तो संकल्प ले ही चुके होंगे, साथ ही साथ जो लोग अपने आसपास महिलाएं या बच्चे देखते हैं कि कुछ लोग इन चीजों में आकंठ डूबे हुए हैं, उनको भी निकालने के लिए हमारे सभी श्रोता जरूर कटिबद्ध होंगे और एक दूसरे को जागरूक करेंगे। आप हमसे जुड़े इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
1: धन्यवाद तृप्ति जी।
0: जी,
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्ति व मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव पुरोहित से तृप्ति भाटिया की बातचीत। आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विकास यात्रा।

0: श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार द्वारा समय समय पर बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए कुछ योजनाएं विशेषकर बनाई जाती हैं और उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम हमारी विकास यात्रा करती है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जो कि हमारे खाद्य उद्योग उन्नयन से जुड़ी हुई है। देखने में अक्सर आता है कि खाद्य को लेकर हमारे देश में अब स्थितियां ऐसी हैं कि उत्पादन भी बढ़ गया है और उसका कह सकते हैं कि किस्में भी अच्छी होने लगी हैं, लेकिन इसमें केवल यही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज की विकास यात्रा में मैं हूं आपके साथ शरद शर्मा और मेरे साथ हैं
1: मैं हूं श्यामवीर सिंह। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
0: श्याम जी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पर आज हम बात करेंगे। दरअसल ये एक असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उन्नयन और उनके आधुनिकीकरण और उन्हें औपचारिक क्षेत्र में लाने की ये एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है।
1: बिल्कुल सरद जी, जो हमारे यूँ कहें कि छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग की बात करें तो ज़्यादातर इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार जो उपलब्ध कराती हैं उनमें इन जो इकाइयों का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। तो सरकार ने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के अगर हमें ज़रूरत है तो इन इकाइयों को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। और सपोर्ट भी ऐसा, ना सिर्फ उनके लिए हम धन उपलब्ध करा रही है हमारी सरकार बल्कि उनको सब्सिडी भी दी जा रही है। शरद जी, यहाँ सवाल ये होता है कि जो काम करने वाली इकाइयाँ हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसी इकाइयाँ भी हैं जो कि मात्र नाम मात्र के लिए चलती हैं और सब्सिडी के लिए वो अप्लाई करती हैं। तो कई बार देखा होगा आपने, जब बैंक वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ होता नहीं है और बस नाम की इकाई रह जाती है, काम भी कुछ नहीं हो रहा होता है, तब उन लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। तो उन लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए, इससे क्या है कि वो लोग वंचित रह जाते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो शरद जी, जो सरकार का जो फैसला है कि जो काम करेगा उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा और जो यूँ कहें कि सब्सिडी भी मिलेगी और मार्केट जो हमारे देश में इतना बड़ा है कि मुझे लग रहा है कि बाहर की कई ऐसी बहुत जो यूँ कहें बहुत बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं, उन्होंने भी यहाँ आकर के बहुत पैसे कमाए और पूरे भारत में मार्केटिंग करके उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्रांड बना दिया है।
0: बिल्कुल, इसमें दो तीन चीज़ें जरूरी है। ये किसी भी योजना के लिए बिल्कुल सही हो सकता है कि आप जब योजना से जुड़ना चाहते हैं और जब आप उसके द्वारा लोन या अन्य सब्सिडी की बात करते हैं तो इसमें जरूरी ये होता है कि पहले आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से स्टेब्लिश करिए और जब इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपको ये देखने वाली बात है कि जब आपका वो लोन देने वाली जो भी बैंक है वो आपका जब वेरिफिकेशन करती है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि जो लोग इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो उनकी वजह से जो काम करना चाहते हैं और जिनको सरकार आगे बढ़ाना चाहती है वो वंचित रह जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी ध्यान देने योग्य बात है। और जब हम आज प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की बात कर रहे हैं तो ये एक आत्मनिर्भर भारत अभियान है। श्याम जी, आप जानते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में? तो
1: बिल्कुल, और भारत सरकार ये चाह रही है कि जो प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं उनको हम बाहर से क्यों मंगाएं। अगर हमें आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे जो लोग हैं, हमारी इकाइयों के द्वारा अगर निर्माण किया जाएगा और उनका विपणन किया जाएगा तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। शरद जी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छोटी इकाइयां हैं हमारे देश के अंदर, उनमें सबसे ज़्यादा हम बात करें तो शहरों के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो ब्रेड बनाने वाली जो कंपनी होती है, ब्रेकरीज होती हैं, बिस्किट बनाने वाली होती है, ये बहुत ज़्यादा हैं। और ये छोटी इकाइयाँ ऐसी हैं कि मुझे लगता है, देखिए कि ये जो बाहर के वो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उनसे इनका सीधा मुकाबला होता है। तो अगर इनको सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो मुझे नहीं लगता कि उनके सामने ये खड़ी रहेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो हमारी छोटी इकाइयाँ हैं, गाँव ग्रामीण क्षेत्रों से ऑपरेट होती हैं, उनकी जो क्वालिटी है किसी भी मायने में यूँ कहें कि जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों के बराबर उनकी क्वालिटी है, बहुत अच्छा उनका रेस्पॉन्स मिलता है और जो इनका प्रोडक्ट्स है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और सबसे बड़ी बात कि शहर के आसपास होती हैं, फ्रेश मिल जाती हैं, यानी शाम को अगर वो जो ब्रेकरीम बनेगा सुबह तक 4 बजे तक तैयार हो जाता है, तो सुबह 6-7 बजे वो सप्लाई भी हो जाता है, इतना फ्रेश होता है।
0: हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उत्पाद हैं, वो कह सकते हैं कि उनकी पहुंच, अब ये तो नहीं है कि वो पूरे देश में अपने उत्पाद को पहुंचा सके, लेकिन उनका जो दायरा होता है वहां तक ये अपने उत्पादों को पहुंचा सकते हैं, और इसमें फ्रेशनेस बनी रहती है, तरोताजा होती है, और जो चीज़ें रात दिन के उपयोग में लाई जाती है, जिसके 1 से 2 दिन खराब होने की संभावना रहती है, तो ऐसे उत्पादों को सरकार द्वारा लघु उद्योग के रूप में बढ़ावा देकर उनके रोजगार को मजबूत करना है। अब कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें सिर्फ ब्रांड के पीछे भागते हैं, ऐसा नहीं है, ब्रांड नहीं है, आपको पहले क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी देखनी है, उसकी प्रोडक्ट डेट देखनी है, और उसके बाद हमें ये भी देखना है कि अगर क्वालिटी और इन सब में वो बराबर है, तो पहले हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने आसपास के छोटे से छोटे जो लघु उद्योग करने वाले व्यापारी वर्ग हैं, उनको प्रोत्साहन देने का काम करें, उनसे हम खरीदारी करें, ताकि उनका जो काम है वो आगे बढ़े, और उसमें हम उनको सीधे भी जुड़ सकते हैं। एक बात ये होती है कि अगर आप कोई ब्रांडेड चीज़ ले आ रहे हैं, तो उसमें कस्टमर का कंपनी के साथ जुड़ाव बहुत लंबा होता है, उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर आप इस तरह के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ावा देने वाले लोगों को साथ लेकर जोड़ना चाहते हैं, तो उनसे आप सीधी बात भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट में कमी लगती है, तो आप उनको बता सकते हैं कि भैया इस बार हमने ये खरीदा था आपका सामान, इस पर आपको थोड़ा सा ये सुधार करना है, तो ये भी होता है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात तो लंबे समय से चली आ रही है, उसमें एक जिला एक उत्पाद पर भी जोर दिया जा रहा है, तो ये अभियान ऐसा है कि जिसमें छोटे उद्यमियों, महिला समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जा रही। इस योजना में ये सारे चीजें हैं। और आपने जो बात की कि इसमें किस तरह के व्यवसाय हैं, तो आपने बेकरी की बात की, तो हम यहाँ पर बात करेंगे, बिल्कुल सही है कि बेकरी है, आटा चक्की है, तेल मिले हैं, और ये योजना ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को लेकर चल रहा है। और इसके लिए हमने जो उद्योगों की बात की, उसमें आटा चक्की है, तेल मिले हैं, मसाला पिसाई है, पापड़ अचार का काम भी है, नमकीन है, डेयरी उत्पाद है, आइसक्रीम है, मिठाई है, फल और सब्जी प्रसंस्करण, सूखे मेवे हैं, तो ये इतने सारे प्रोडक्ट इसमें आते हैं जो हमारे स्थानीय स्तर पर भी व्यापारी वर्ग इसके काम को शुरू कर सकते हैं, और आत्मनिर्भर अभियान के माध्यम से अपने उत्पाद को आसपास के क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आगे भी पहुंचा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो देश भर में भी सप्लाई के रूप में काम आ जाती है, और जो चीज़ें डेयरी या अन्य कोई हैं, पापड़ अचार मसाला वगैरह हैं, ये भी हम इसका भी सप्लाई चेन बना सकते हैं। और कई बार क्या होता है, इन्हीं उद्योगों में काम करने वालों के उत्पाद कई बार इतनी गुणवत्ता और टिकाऊ और स्वादिष्ट होते हैं कि जब एक बार ये चेन बन जाती है, तो पूरे देश भर में भी लोकप्रिय हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जहाँ की एक उसकी पहचान बन चुके हैं, और वो पहचान ऐसी है कि जब कोई व्यक्ति उस शहर विशेष में आता है, तो उस प्रोडक्ट को देखना चाहता है, खाना चाहता है, समझना चाहता है, तो वो उत्पाद एक जिले से पूरे एक विश्व में तक भी पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, और उसका जो प्रोडक्शन है उसमें सब चीज़ों पर फोकस करते हुए काम करना पड़ेगा। तो सरकार जो है आटा चक्की है, अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत दूर होता है शहर में, तो अगर आप कहीं अब गेहूँ पिसवाना चाहते हैं, तो आपके नज़दीक में आटा चक्की है, तो ये काम आपको हो जाएगा। घाणी है जो तेल निकालती हैं, मसाला पिसाई है, पापड़ है, ये तो रोज़मर्रा के हमारे उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, अचार है, और जैसे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, शाम जी आपने अचार तो खाया ही होगा।
1: बिल्कुल,
0: और देखो अचार भी कई तरह के होते हैं,
1: अचार का बहुत बड़ा मार्केट है, और जितना अचार हमारे गांव से आता है उसकी डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा, और वो पूरी नहीं हो पा रही है। और कारण ये है कि जो गांव में अचार बनता है, जैसे जो सीजनेबल होता है वो, क्योंकि वो ग्रामीण लोग जो अचार बनाते हैं वो ऐसा नहीं कि उनके पास कोई बहुत बड़ा स्टोरेज हो, और उसमें जैसे कि कैरी का अचार की बात करें तो अभी कैरी का सीजन है, तो इतनी सुविधाएँ उनके पास नहीं है कि वो पूरे वर्ष के लिए कैरी स्टोर कर सकें, तो वो क्या करते हैं, सीजनेबल जो अपना अचार बनाते हैं, कैरी का समय है तब कैरी बनाएंगे, गुंदा है तो गुंदा बनाएंगे, मिर्ची का समय मिर्ची बनेगा, तो जिस तरह से अपने यहाँ कुछ राजस्थान के अंदर जो यूं कहें के सांगरी और जो कैर का अचार बनता है वो हाँ। भी सीजनेबल गांव के लोग इकट्ठा सुखा लेते हैं उसको करते हैं, और यहाँ भी लोगों ने काम शुरू किया है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और मुझे लगता है कि सरकार इतना प्रोत्साहन राशि ना दे तो कम से कम ये व्यवस्था तो कर दे कि इनको जो कच्चे माल की जरूरत पड़ती है वो 12 महीने उपलब्ध हो सके, तो कच्चे माल के अभाव में इनकी इकाइयों पर फर्क ना पड़े, इनके उत्पादन कम ना हो, तो ये सुविधा अगर सरकार देगी तो जो रोजगार से जुड़े हुए लोग उनको 12 महीने ये रोजगार मिलता रहेगा।
0: इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम साल भर प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो इसके लिए वातानुकूल के भंडारण केंद्र भी बनाए जा रहे हैं और इसमें आप इनको चीज़ों को रख सकते हैं, और कुछ ऐसे नमकीन्स हैं जिसमें आप नित नया एक्सपेरिमेंट करके बाजार में लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो उसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो लगभग सब एक जैसा ही है। जहाँ तक आप नमकीन बात करते हैं तो तेल मिर्ची मसाले वगैरह एक ही है, उसका अन्य जो साधन है वो भी एक होता है, बस आपको थोड़ा सा अपना आइडिया और दिमाग लगाकर उसमें वैरायटी लाने का काम करना होता है। अगर ये वैरायटी में आप आगे बढ़ जाते हैं तो प्रोडक्ट बहुत लंबा आगे बढ़ सकता है। और डेयरी उत्पाद की बात करें तो डेयरी उत्पाद में भी हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। देखिए सुबह उठते ही चाय चाहिए आपको, चाय के बिना जीवन थोड़ा सा लगता है कि अधूरा सा है, तो डेयरी उत्पाद में अगर आपने गौपालन कर रखा है तो गायों के दूध से आप अपनी डेयरी फार्म बना सकते हैं। और डेयरी फार्म बनाने का मतलब केवल आप दूध बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, उससे आप दही है, छाछ है, लस्सी है, आप घी बना रहे हैं, आप उससे पनीर बना रहे हैं, तो आपका एक ही प्रोडक्ट से इतने सारे प्रोडक्टों की ओर बढ़ना, ये मैन्युफैक्चरिंग की तरह दृष्टि से देखा जाए तो अपने आप में बहुत बढ़िया है। बस इसमें जरूरत है कि थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा कि जहाँ पर आपने एक डेयरी लगाकर इतने सारे गायों को पाल करके इतना दूध इकट्ठा कर लिया कि उससे बहुत सारी सप्लाई होने के बाद बचे हुए दूध से आप अन्य प्रोडक्ट भी बना सकें, तो उसमें क्वालिटी भी होगी, शुद्धता भी होगी और आपकी पहुंच से वो कहीं अधिक जगहों तक भी पहुंच सकता है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा उसके लिए अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकें।
1: शरद जी, सबसे बड़ी समस्या इन इकाइयों को है पैकेजिंग की। देखिए पैकेजिंग मशीनें बहुत महंगी हैं और वो मशीनों के द्वारा अगर ये इनका जो प्रोडक्ट है पैक हो जाए तो कुछ लंबे समय तक शुद्ध और सही बना रह सकता है, लेकिन आजकल मार्केट पे आपने देखा होगा कि सामान अंदर भले ही कितना अच्छा ज़्यादा ना हो लेकिन अगर पैकेजिंग अच्छी है तो बिक जाता है, लेकिन जो हमारी छोटी और सूक्ष्म इकाइयाँ हैं इनके पैकेजिंग के अभाव में अच्छे प्रोडक्ट्स भी कम बिक पाते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वही खरीदते हैं कि जो एक बार यूज कर चुके होते हैं या रिकमेंडेड होते हैं कि भाई ये वहाँ का है बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी पैकेजिंग पर अगर सुधार किया जाए और इतनी सहायता राशि सरकार दे के पैकेजिंग मशीनें खरीद करके जो छोटी सूक्ष्म इकाइयाँ अच्छी पैकेजिंग में जो अपना प्रोडक्ट्स मार्केट में पेश कर सकें जिससे कि जो ग्राहक होता है वो आकर्षित इनकी तरफ हो सके।
0: हाँ, इसमें ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बाजार में जो चीज़ें देखने में आती हैं लोग थोड़ा सा पैकेजिंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और चीज़ों को खरीद लेते हैं, तो इससे इस स्तर के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है, लेकिन वो भी अगर मार्केटिंग को थोड़ा सा समझ लें तो अपने उत्पाद को भी इस तरह से पहुँचा सकते हैं कि वो प्रोडक्ट भी दूसरों के मुकाबले में बाज़ार में खड़ा रहकर आगे निकल सकता है। इसके लिए थोड़ा सा तकनीक और अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये प्रधानमंत्री की जो ये योजना है इसमें तकनीकी सहायता भी दी जाती है। और एक और बात कि हमने पहले भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो टाइम बाउंड यानी वेदर कंडीशंस या मौसम के हालात के अनुसार ही मिलती है। अब जैसे गर्मी के मौसम में आपको कैरी का अचार बनाना तो कैरियाँ आपको सिर्फ गर्मी के मौसम में मिलेगी, तो सरकार क्या कर रही है कि फल और सब्जी प्रसंस्करण और सूखे मेवे को सुरक्षित करने के लिए ऐसे वातानुकूलित कह सकते हैं जो एयर कंडीशनर भंडारण केंद्र होते हैं उस पर भी जोर दे रही है। और इसके अलावा एक इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्किंग कैपिटल भी है, यानी खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े स्वयं सहायता समूह बनेंगे और प्रत्येक सदस्य को छोटे औजार और पूंजी के लिए 40,000 रुपये की प्रारंभिक पूंजी भी सरकार द्वारा दी जाती है।
1: बिल्कुल। और ये पूंजी देखिए, भले ही हमको छोटी लग रही हो, लेकिन उन इकाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये इकाइयाँ यूँ कहें कि दो या तीन लोग मिलकर के चलाते हैं, कई बार तो एक ही व्यक्ति चला रहा होता है, और अपनी क्षमता के अनुसार उसको पूंजी जुटानी होती है। और यूँ कहें कि एक तो कैपिटल जो उसमें जितना पैसा लगा हुआ है, उसके अलावा एक वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, पैसा चाहिए, माल सामान लाना है। और फिर मार्केट में अगर मान लो 2-4 दिन से पैसा नहीं आता, तो उसका भी व्यवस्था उसी को करनी होती है। तो पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं जो छोटी इकाइयाँ हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। तो इसीलिए सरकार ने सोचा है कि इनको अगर पैसा मुहैया करा जाए, तो एक इकाई में जहाँ अभी 2-4 लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है 10-15-20 लोग काम करें और ज़्यादा विस्तार हो, तो सूक्ष्म इकाइयों में यही है कैपेसिटी के 10-15 लोग काम कर सकते हैं। और अगर पूरे देश के अंदर ऐसी मतलब लाखों की संख्या है इनकी, और जो कहें कि 2-4 लोग एक्स्ट्रा भी बढ़ेंगे ना, तो मुझे लगता है लाखों रोजगार ये सृजित करते हैं। और सर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा था कि ये ग्रामीण क्षेत्रों से संचालित होती हैं, तो गांव में जो लेबर होती है, जैसे कि खेती का काम खत्म हो गया, उसके बाद वो फ्री हो गए, तो इन इकाइयों में उनकी हेल्प कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम उनकी भी हो जाएगी और इन इकाइयों की भी हेल्प हो
0: हाँ,
1: जाएगी।
0: ये एक तरह से कह सकते हैं कि श्रम जो कह सकते हैं, मेहनत है ये, उसकी एक कड़ी के रूप में भी काम करते हैं, क्योंकि आपको लेबर के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेबर आपके ही आसपास के क्षेत्रों में मिल जाएगा, और आपका भी काम होगा, रोजगार भी बढ़ेगा, और आर्थिक जो हमारी विकास की दर है उसमें भी एक अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान भी होगा। तो ये रोजगार का एक कह सकते हैं कि उत्पादन केंद्र भी माना जा सकता है, कि इस तरह के छोटे उद्योग जो होते हैं वो केवल एक व्यक्ति के परिश्रम पर तो नहीं चलते, उसमें बहुत सारे लोगों को रखना पड़ता है। तो अगर स्थानीय स्तर पर इस तरह के काम होते हैं, तो इसमें आप लोगों को ये समझना चाहिए कि उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फायदा है, वो स्थानीय स्तर पे लोगों को मिलेगा, और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसमें एक और बात है, हम बात करते हैं कि बाजार में ब्रांडिंग और मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है चीजों को लोगों तक पहुंचाने में, तो सरकार ने इस पर भी फोकस किया। इस योजना में एक और चीज है कि उत्पादकों की पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। आज हम देखते हैं कि कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो ब्रांड नेम पहले हम दिमाग में रखकर जाते हैं, तो बाजार जो है उपभोक्ताओं की पूरी नब्ज को अच्छी तरह से समझता है कि व्यक्ति कौन सी चीज कब और कैसे खरीदेगा, और उसके लिए उस उत्पाद को किस तरह से उन तक पहुंचाना है, किस माध्यम से पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, तो ये सारी चीजें बाजार की जो कह सकते हैं कि उसको संचालित करने वाली इकाइयां होती हैं, वो पूरी तरह से उस नब्ज को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाती है। और यही वजह है कि हम भी अक्सर जब कभी बाजार में कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो हम सिर्फ ब्रांड नेम लेकर जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमें उसमें क्वालिटी क्या मिलेगी या क्वांटिटी क्या मिलेगी, प्रोडक्शन कब का होगा, रेट्स का क्या इश्यू रहेगा, ये इन सब बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो सरकार भी चाहती है कि इस तरह के जो लघु और कुटीर उद्योग वाले जो हैं व्यवसायी, उनको भी मार्केट में उतना ही वजूद मिलना चाहिए जितना अन्य कंपनियों को मिलता है। अब समस्या ये रहती है कि इनके पास उतने संसाधन नहीं है कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए अपनी तरफ से कुछ कर पाए, तो सरकार ऐसे लोगों को अपने स्तर पर ब्रांडिंग के लिए भी, पैकेजिंग के लिए भी और मार्केटिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, कि वहां से उस सहायता के माध्यम से इनके प्रोडक्ट भी लोगों तक पहुंचे और इनका उत्पाद भी बढ़े।
1: और माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर हमारे जो सूक्ष्म इकाइयों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूँ कहें कि बहुत सारा विज्ञापन करते रहते हैं। और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स इसी का हिस्सा है। अगर देखिए जो सूक्ष्म इकाइयों की, जैसे कि यहाँ हमारे जैसलमेर की कोई चीज़ बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, और अगर कोई व्यक्ति आता है यहाँ पर या इस नाम से, तो जैसलमेर मतलब अपने प्रोडक्ट्स में फेमस हो गया तो बिक ही जाएगा कि जैसलमेर का, हाँ वहाँ की ये चीज़ बहुत फेमस है। जैसे कई शहर बहुत फेमस हो चुके हैं, बीकानेर की भुजिया नाम से अगर किसी ने निकाल दी, चाहे कहीं बन रही वो बिक जाती है। आगरा का पेठा बहुत फेमस हो गया है ना।
0: जी
1: और ऐसे ही हमारे जो यूँ कहें कि भारत के अंदर जब व्यक्ति कहीं जाता है तो ये दिमाग में सोच के जाता है कि मैं वहां जा रहा हूँ आगरा, तो मैं वहां से पेठा तो ला नहीं लाना है। और ऐसे बहुत सारे जिले हैं
0: हाँ,
1: यहाँ
0: ये
1: के प्रोडक्ट।
0: बिल्कुल वो प्रोडक्ट वहाँ शायद

0: की एक पहचान बन जाते हैं। जैसलमेर में हमने देख लिया घोटवा है, इंदौर का लौंग का सेव है, बीकानेर की आपने बात करी, तो सरकार भी चाहती है कि ऐसे देश भर के जो छोटे लघु कुटीर उद्योग वाले लोग हैं वो भी अपना इस तरह के उत्पाद को इतना बढ़ाएं कि वही प्रसिद्धि प्राप्त करें जो अन्य प्राप्त कर चुके हैं। और अब इसमें आती है बात उद्योग लगाना, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, इसके अलावा होता है प्रशिक्षण। तो सरकार ने उद्यमियों को कौशल प्रशिक्षण, उद्योग आधार, जीएसटी पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करने में भी मार्गदर्शन दे रही है। अब दो चीजें इसमें श्याम जी हम विशेष रूप से बात करेंगे, एक तो है प्रशिक्षण, दूसरा है जीएसटी पंजीकरण और लाइसेंस, तीसरी बात भी इसमें मैं ऐड करूंगा। तो कौशल प्रशिक्षण तो बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल।
0: अगर मुझे मान लीजिए डेयरी फॉर्म खोलना है तो मुझे पता होना चाहिए कि गाय किस किस्म की होती है, कौन सी किस्म की दूध ज्यादा देती है, उनकी देखभाल कैसे करनी है, कितना दूध मिलेगा, कैसे मैं उसको फिर आगे सप्लाई चेन के रूप में बेचूंगा, और कई प्रोडक्ट इससे कैसे मैं बना सकता हूँ। तो ये कौशल प्रशिक्षण हुआ। अब कौशल प्रशिक्षण व्यवहारिक तौर पर भी होता है और तकनीकी तौर पर भी होता है। जैसा आपका व्यवसाय होगा वैसी आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, तो सरकार वो प्रशिक्षण भी आपको देती है। अब इसमें देखिए, आप सब चीजें योजनाओं के लिए जब पैसे खर्च करने की बात करते हैं तो सरकार पैसा कहाँ से लाती है? जो हम लोग उसका टैक्स भरते हैं। तो सरकार ने ऐसी तरह से उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ उनमें ये एक स्वभावगत आदत डालने की भी जो है कोशिश इस माध्यम से की है कि भाई आप अपने उत्पाद को पंजीकृत करवाएं, इसका लाइसेंस लें, जीएसटी पंजीकरण करवाएं, और इससे जो आपको आमदनी होती है उसका जो कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में अगर आता है तो वो भी सरकार को दें, ताकि वही पैसा आपके वापस पुनर्विकास में भी काम आएगा। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, और इससे लोगों के अंदर स्वतः ही जो हमारे विकसित भारत की हम जब कल्पना करते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस इकट्ठा करने की जब और भी बात आती है तो वो इन्हीं माध्यमों से धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है।
1: और सबसे बड़ी बात शरद जी, जो भी सरकार इन इकाइयों को मदद दे रही है, और वो कहीं ना कहीं इन इकाइयों से महिलाएं बहुत भारी संख्या में जुड़ी होती है, क्योंकि सूक्ष्म इकाइयों में महिलाओं के लिए काम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि प्रोडक्ट्स की छटाई है, उसकी धुलाई है और उसकी पैकेजिंग में, इसमें ज़्यादातर महिलाएँ काम करती हैं। तो अगर ऐसी इकाइयाँ आगे मतलब अपना रोजगार बढ़ाने का काम करेंगी तो ये हर परिवार को अतिरिक्त आमदनी के रूप में जो महिलाएं पैसा अपने घर पे ले जाएंगी, इससे भारत के विकास में बड़ी मदद मिलेगी। तो जिस तेजी से गति से भारत का विकास हो रहा है, कहीं कोई छोटा उद्योग सूक्ष्म इकाई हो, लघु उद्योग हो, वो भी पीछे ना रह जाए, इसलिए सरकार चाह रही है इन सब की मदद करके इनको भी विकास की इस दौड़ में शामिल करके और हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो कुल मिला के हम बात करें तो कि जो सरकार मदद दे रही है विकास में भारत के, तो ये उसमें भारत के विकास में ये सब इकाइयां मदद कर रही हैं। जैसे आपने कहा कि आत्मनिर्भरता की, तो अभी भी भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम खुद बना सकते हैं, वो बाहर से आ रहे हैं, बहुत सारी विदेशी मुद्रा हमारी बाहर चली जा रही है। वैसे भी हमारे देश के अंदर ऑयल रिजर्व कम है, तो ऑयल के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कम से कम हम जो चीज़ें बना सकते हैं उन चीज़ों को तो हम बनाएं और हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। तो कुल मिला के सर जी हम बात करें तो हमारे यहाँ देखो मार्केटिंग की कोई कमी नहीं, बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश में है, और हम अगर खुद का रोजगार शुरू करना चाहें तो सरकार प्रशिक्षण से लेकर यूँ कहें कि जैसे आपने सब कुछ बता दिया, पंजीयन करा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, जीएसटी नंबर ले लो और बैंक से लोन भी ले लो, और पैकेजिंग के लिए मशीनों के लिए पैसा बैंक से मिल ही जाएगा, बस आपको काम तो करना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई नौकरी ही रोजगार हो, स्वयं का रोजगार सबसे अच्छा होता है और उसमें जो प्रगति होती है इंसान की वो अनलिमिटेड होती है, कहाँ तक पहुँच सकता है इसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर आप कहीं नौकरी करते हो तो उसमें की लिमिट होती है। तो मुझे तो लगता है कि सरकार खुद चाह रही है कि लोग उद्यमिता की तरफ जाएं और देश के विकास में सहयोग करें।
0: हाँ, ये उद्यमिता ही व्यक्ति को उच्च स्तर पर ले जा सकती है, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में इतने बड़े देश के करोड़ों लोगों को इतनी सारी नौकरियाँ मिलना जब मुश्किल है, तो उस समय में हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हम अपने स्वरोजगार से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, और इससे आत्मनिर्भर हम ही नहीं बनेंगे और भी बहुत सारे लोगों को जोड़कर रोजगार देंगे, तो हम खुद रोजगार करें और रोजगार का माध्यम बने। और जो आज हम योजना की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, इसके लिए आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो और इसका जो लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने व्यवसाय हेतु आवेदन करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन से जुड़े हुए विशेष दिशा निर्देश जो है और जो पात्रता की जानकारी है वो आप वहां से प्राप्त करके अपना आवेदन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप वहां पर आवेदन करेंगे तो अगली प्रक्रिया के तहत आपको इन सब चीज़ों में सहायता मिलेगी और आप अपना रोजगार कर सकते हैं।
1: तो बिल्कुल शरद जी, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हमारा कार्यक्रम सुन करके इसका लाभ उठाएंगे और देश के विकास में भागीदारी जरूर करेंगे। तो इसके साथ ही आज की विकास यात्रा से मैं श्यामवीर सिंह
0: और मुझे शरद शर्मा को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।
2: आजादी का अमृत महोत्सव।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विकास यात्रा। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय जवान। श्रोताओं, हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे फौजी साथी जो हैं, जो सरहद पर देश की रक्षा में जुटे हैं, उनके लिए है। देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे वीर सैनिकों के साहस, त्याग और देशभक्ति को समर्पित है ये हमारा कार्यक्रम। बात कुछ यूं है कि बर्फ के तूफानों में जो चट्टान बन जाते हैं, मुस्कुराकर जो देश पर अपने प्राण लुटाते हैं, भूलकर घर परिवार जो सरहद पर डटे रहते हैं, वतन की आबरू के लिए वो फौजी कहलाते हैं। तो प्रस्तुत है ये गीत फिल्म बॉर्डर से। स्वर दिया है सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ ने।

ना होती है परवाह उन्हें अपनी जान की, बस धड़कन में गूंज होती है हिंदुस्तान की। रहते हैं दूर अपनों से ताकि हम महफूज रहें, यही तो असली पहचान है एक सच्चे वीर जवान की।

अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस।

के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे, अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे, अब के बरस।

मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने जानी है, सपने मन में ठानी है, हम

चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने, फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर, हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर, यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है बाजू भड़क उठे हैं, सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारों, देश के बेटे जाग उठे तुम अपनी मौत निहारो, अंगारों का जश्न बनेगा हर शोला जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा, हमने कसम निभानी है देनी हर कुर्बानी है, हमने कसम निभानी

0: ना कोई दर्द ना आराम, जिंदगी है बस देश के नाम। जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। यह कार्यक्रम समर्पित था हमारे देश के जवानों को। यह है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9।
1: बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल जी के, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर

0: दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीत कर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमा की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि AI तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए AI युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही।

0: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvic Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket's high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत

0: और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
1: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
2: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रही।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सही है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान, तो खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल। एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, दे तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती।
2: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
1: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है। यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
0: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
1: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहां तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
2: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने

0: एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्याल रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेष बदलकर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
2: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, कान लगे होते थे दिल लगा होता था, बस आवाज सुन भारत हंसता था रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में राग सिंधुरा में चतुरंग।
2: चतुरंग गावो भुवनेश्वर में रहता है।

0: ಜನರ ಆದತಾನ ಅನಾಪಕರಣ
1: फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत रामचंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

बताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

मसक मसक रहता मर्म स्थल मर्मर करते प्राण।

सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

0: हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं anugunj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugunj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादक। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटी आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुचरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्ले जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट कंसर्ट Sri Asanapurupu Yerraya and Party is accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri V.

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम यरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वी एन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदि ताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to निन्नु जेप्पा कारणमेनी, a composition of पठनम सुब्रमण्यम अय्यर in राग मंदारी, set to आदि ताल।

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: You are now listening to the saxophone recital by श्री असनापुर पियरैया in the रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एरैया next presents सामगान प्रियकरम, a composition of गुरु सुरजानंद in राग कीरवाणी set to मिश्र चापू ताल।

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है, राग है वृंदावन सारंग जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंग सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री अफनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: You have been listening to the saxophone recital by Sri Asnapurapu Yerraya and Party in the Ravi Vasari Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on special dolu by Sri V. N. Balachandar. This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। इस समय रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
3: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
2: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
3: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
2: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसएच डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय रात के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः आपसे 5:55 पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।
5: In his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani.